हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर नारायण पाठक का ध्रुपद गायन। आपने प्रस्तुत किया राग भैरव।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा

पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
1: अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गए। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वेराइटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेराइटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as the chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pabitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage

0: अभी आप कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे गीता में योग के बहुआयामी अर्थ। नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता। विषय है गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। वार्ताकार हैं श्याम शंकर शुक्ल।
1: गीता का योग आसनों की कोई सूची नहीं है, यह कोई ध्यान साधना की तकनीक नहीं है, यह है जीवन को जोड़ने की एक अद्भुत दिव्य कला। योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठ जाना नहीं, अपितु आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कर्म को समर्पण से जोड़ना, ज्ञान को विवेक से जोड़ना और भक्ति को निर्लेप प्रेम से जोड़ देना। यह जोड़ केवल शरीर और मन का नहीं, यह है अपने भीतर बैठे मैं को गलाकर किसी बड़े सत्य से जोड़ देना। पहले 6 अध्याय गीता के कर्म योग के बारे में है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, मन को योग में स्थित कर और निष्काम भाव से कर्म कर। कर्म तब तक बंधन है जब तक वह फल की इच्छा से और आसक्ति से किया जाता है, पर जब वही कर्म समर्पण भाव से किया जाता है तब वही मुक्ति का और परम कल्याण का माध्यम बन जाता है। जब कर्म शुद्ध हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है।

पूर्णतः मेरी शरण में आ जा। यह भक्ति केवल गीत या पूजा नहीं है, यह है अपनी सारी सिद्धियों को, यहां तक कि अपनी भक्ति को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अंत के 6 अध्याय में भगवान ज्ञान योग का परिचय देते हैं, जहां आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, जो शोक नहीं करता है, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं, वह सम है, शांत है, मुक्त है। गीता का योग कोई एक मार्ग नहीं, संपूर्ण जीवन की साधना है। जब कर्म तप बन जाए, ज्ञान सेवा में बदल जाए, भक्ति समर्पण में बह जाए और ध्यान प्रेम की गहराई में उतर जाए, तब प्रकट होता है गीता का बहुआयामी योग। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब सब मार्ग, सब प्रयास, सब मैं गल जाए तो केवल समर्पण शेष रह जाता है, योग पूर्ण हो जाता है। इसलिए योग कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन का सौंदर्य है, जहां कर्ता अकर्ता बन जाता है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। यही है गीता का योग, बहुआयामी, बहुगुणी और अनंत कल्याण।

अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस पाठ अयोध्या कांड भाग 10।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 25वें वर्षे अगस्त मासस्य सप्तमदिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिशशासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः पादोन चतुर्विंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां परिव्यय युतां राष्ट्रीय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मंत्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणं अनुमोदितम्। मंत्रिमंडलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदन विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति इति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री

0: निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं संबोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षणक्षेत्रात् मध्यमपरिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवाराज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचितजनजातीनां कृते विधानसभास्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीयराजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीयसमुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेशे राजस्थाने केरलराज्ये माहेप्रदेशे ओडिशाराज्ये तटीयदक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्डबातेन विद्युत्प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान्निकोबारद्वीपेषु झारखण्डप्रदेशे लक्षद्वीपे पश्चिमबङ्गप्रदेशे मध्यप्रदेशे तमिलनाडुप्रदेशे पुदुच्चेरिप्रदेशे कारैकलल् प्रदेशे उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांतचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर, आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
3: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Union Cabinet has approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. The centre has notified the implementation

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप स्नेहा चंद के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर सुबह हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सपने देखते रहें या उठकर उन्हें पूरा करने में लग जाएं। नई सुबह, नया दिन और नए से ख्वाब बुनते हैं। सफर मुश्किल ही सही, पर रास्ते हमको ही चुनने हैं। तो बस दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करें इस प्यारी सी स्माइल के साथ और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में।

दोस्तों, आज के समय में उठते ही आपने देखा होगा, हमारी सबसे पहली आदत होती है अपना फ़ोन चेक करने की, और ज़रूर आप सब भी ऐसा ही करते होंगे, जिससे कि क्या होता है कि आपका माइंड जो है अपने कार्य से भटक कर कहीं और चला जाता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अपने दिन का कंट्रोल पहले 1 घंटा जो है वो अपने पास रखें और केवल अपने आप को ही समय दें।

बिल्कुल दोस्तों, अपने दिल की रज़ा जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने दिल की पहले सुनेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, और जब आप ये सब अपने कार्य पूरी तन्मयता से करते हैं और पूरे ध्यान से अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं, तो आप देखोगे कि आप पूरा दिन अंदर से खुश रहोगे। और जब आप अंदर से दोस्तों खुश होंगे, तो वही खुशी आपके चेहरे पर बाहर भी नज़र आएगी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

दोस्तों, हमारी खुशी तो आप सबसे है और आपसे मिलते ही हमारे चेहरे पर अपने आप ही खुशी छा जाती है। ढूंढने से अक्सर मिलती नहीं खुशी, ढूंढने से अक्सर मिलती नहीं खुशी, ये तो छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। छोड़ दो कल की चिंता, आज में जी कर देखो, जिंदगी हर पल में कितनी हसीन होती है।

दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और हम छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
6: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

0: महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
4: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।

0: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कर गोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी,

0: आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6 August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असर नो तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफास को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय गजट में शाय करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हलके की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी ना इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निज़ाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के ज़राए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाज़त देने का अख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों अदायगी

0: फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निज़ाम कायम करना है ताकि डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को ख़त्म करना है जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के ज़राए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाकई मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल Agni-4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिज़ाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि ये कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और DRDO को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के अज़्म का एहदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज़ किया गया था और ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं।
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हो। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे।
0: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में एक कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबात की एक अहम खसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ़ में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के इतराफ़ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज़ के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फ़न, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक ख़ास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रांची में JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाजी मार्च किया।

0: बाद में रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए एसडीएम रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मधु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। 480 से ज़्यादा गांव सैलाब से मुतासर हैं, जबकि हज़ारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज़ से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेज़ी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निज़ाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाब्ता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया जिनमें रियासत भर में 70,00,000 कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुल वतनी के नज़रिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लूक गोह ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैनुल अक़वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे ख्वातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। ख्वातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले ख्वातीन T20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू

अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस्मत दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने आरबीआई के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली एनसीआर में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है।

0: की कमी पर जवाब तलब किया।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की है आशीष मिश्रा ने और हारमोनियम पर हैं जाकिर धौलपुरी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे राकेश पाठक का गायन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर थे आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर संगत की थी जाकिर धोलपुरी ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी से जुड़े विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं। आलेख एवं स्वर विजय किशोर तिवारी।
1: जब भी महात्मा गांधी की छवि हमारे सामने आती है तो हमें ये एहसास होने लगता है कि उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश के समान है। महात्मा गांधी एक नेता, समाज सुधारक होने के साथ एक संत भी थे। वैश्विक राजनीति में उनके जैसा चमत्कारी नेता का उदाहरण हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। बापू पत्रकार, दूरदर्शी, संस्थान निर्माता भी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि समाज बदलने के लिए विचारों का आदान प्रदान तथा व्यवहारिक स्तर पे उसका प्रयोग जरूरी है। महात्मा गांधी के ऐसे ही दो हथियार, पहला पत्र पत्रिकाएं तथा दूसरा संस्थाओं ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा स्वदेशी आत्मनिर्भरता की नींव रखी। इन दोनों साधनों के माध्यम से गांधी जी ने न केवल देश को जागरूक किया बल्कि पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं को समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम के रूप में भी प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही भारतीय पत्रकारिता जगत में नव चेतना एवं उत्साह का संचार हुआ। ये कहना अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद पाकर पत्रकारिता जगत पुलकित, रोमांचित होकर अब अपनी निर्भीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने लगा था। महात्मा गांधी के लेखों में जहां भारतीय संस्कृति, धर्म एवं नैतिकता के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण स्वरों की झंकार गुंजायमान होती है, वहीं समय समय पर रस्किन जैसे दार्शनिकों एवं चिंतकों के विचार भी छपते थे, जिससे आम भारतीयों में वैचारिक राष्ट्रवाद तथा सत्याग्रह साधनों का विकास हुआ। महात्मा गांधी से जुड़े पत्र पत्रिकाओं ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं से देश में जन जागृति तथा समाज सुधार के विभिन्न प्रयास किए। इन पत्रिकाओं आदि में छपे विचारों से देश के राजनीति में महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता से जन नेता के रूप में स्थापित हुए। गांधी जी की पत्रकारिता कोई व्यवसाय या आर्थिक साधन नहीं था, बल्कि ये उनके लिए जनता की सेवा, संवाद, सत्याग्रह आदि का एक माध्यम था। इन पत्रिकाओं में किसी भी तरह का विज्ञापन दिखाई नहीं देता था। महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत 4 जून 1903 को दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर से की गई। ये मुख्य रूप से रंगभेद के खिलाफ

0: खिलाफ लड़ने और भारतीय समुदाय के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया था। नवजीवन पत्रिका। नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा 7 सितंबर 1919 को शुरू किया गया। यह एक प्रमुख गुजराती साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका उद्देश्य अहिंसा, स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करना था। इस पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन तक बापू के विचारों और सत्याग्रह के संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इंडिया। ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। इसमें गांधी जी के प्रभावशाली और ओजस्वी लेख होते थे। इसमें क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला। यंग इंडिया पत्रिका से पढ़े लिखे वर्ग को व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। पत्रिकाओं का महत्व। इन पत्रिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये रही थी, इन पत्रिकाओं के माध्यम की भाषा काफी सरल और सहज स्पष्ट थी और आम लोगों के समझने के लायक थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से महात्मा गांधी ने जमीनी स्तर के ग्रामीण व शहरी समस्याओं को उठाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि सामाजिक न्याय के तहत अपने लेखों से सामाजिक समानता पर भी जोर दिया। गांधी जी ने एक तरह से इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। बापू ने सिर्फ अपने विचारों को जनमानस के सामने ही नहीं रखा, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें से कई संस्थाओं का स्वतंत्रता संग्राम तथा समाज सुधार में अहम योगदान रहा। इनमें से कई संस्थाओं की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख संस्थाएं फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास स्थापित किया गया। गांधी जी और उनका परिवार 1914 में भारत लौटने तक इसी आश्रम में रहे। ये आश्रम आत्मनिर्भरता, सादगी, सत्य तथा अहिंसा का प्रमुख केंद्र था। साबरमती आश्रम। 1917 में स्थापित गुजरात में साबरमती आश्रम केवल महात्मा गांधी के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि सत्याग्रह और आजादी के पावर हाउस भी थे। यहीं से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम आगे चल के आजादी का केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हुआ। गुजरात और बिहार विद्यापीठ। गुजरात और बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान की गई। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन विद्यापीठों की स्थापना की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ। देश में स्वदेशी खादी को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 1925 में महात्मा गांधी ने इसका गठन किया था। सेवाग्राम आश्रम। महात्मा गांधी ने 1936 में इस आश्रम की स्थापना वर्धा में की थी। ये साबरमती के बाद दूसरा आश्रम था जो महात्मा गांधी का प्रमुख निवास स्थान बना। इस आश्रम से भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी। गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति, जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए। इसी संस्थान से उनके विचारों का प्रसार और प्रचार हुआ और गांधी सम्मेलनों का आयोजन व्यापक तौर से देखने को इस संस्थान से मिला। इन संस्थाओं का महत्व। महात्मा गांधी से जुड़े संस्थाओं का अपना खास महत्व रहा है। इन संस्थाओं में महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों के चिन्ह हमें आज भी दिखाई देते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से देश में जन जागृति जगी तथा देश के साथ वैश्विक राजनीति और इतिहास में भी महात्मा गांधी का नाम अमर हो गया।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी से जुड़े विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं। आलेख एवं स्वर विजय किशोर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके तुहाडी सेवा च हाजर है हरजीत कौर। अज असीं तुहानूं डॉक्टर कमलजीत सिंह दी कहानी सुनवावांगे, सफलता दा सुफना ते शब्द सरवण करांगे। सब तो पहला तो साढ़े सारे सुनने वालियां नूं श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। आओ पहला गुरु साहब बारे गल करते हाँ। अज अठवीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है। बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय जी के ग्रह विखे 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब विखे होया। बचपन में ही आप जी गुरबाणी का पाठ बड़े अंतर ध्यान होकर सुनते अते करते। 5 साल 3 महीने की छोटी जी उम्र में ही गुरु हरकृष्ण साहिब जी को गुरगद्दी की जिम्मेवारी सौंप दी गई। संगतां दूरों दूरों कीरतपुर साहिब पुज के गुरु जी के दर्शन कर आउंदियां सन। इस गल तो नाराज होकर गुरु साहिब के वड्डे भरा राम राय ने औरंगजेब नूं शिकायत की। औरंगजेब ने राजा जय सिंह नूं कह के गुरु साहब नूं दिल्ली आउण दा खत राही सद्दा भेज दिता। चिट्ठी पढ़ के गुरु साहब दिल्ली वल नूं तुर पए। रस्ते विच बाला प्रीतम संगतां नूं थां थां ते संबोधित करदे ते सतनाम का उपदेश देंदे होए आए। एक थां ते पिंड पंजोखड़ा विखे लाल चंद नां दा हंकारी पंडित सी। उसने गुरु साहिब दी प्रसिद्धि सुनी। ओ भी इन्नी छोटी जी उम्र विच तां उस तों बर्दाश्त ना होया। उसने आख्या जे गुरु साहिब इन्ने विद्वान ने तां गीता दे अर्थ करके विखाउण। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने इस चुनौती नूं स्वीकार किया ते पिंड चों छज्जू चूर जो अनपढ़ भी सी ते गूंगा भी उस नूं गीता दे अर्थ करन लई बुलाया गया। गुरु साहिब ने छज्जू चूर दे सिर ते अपनी छड़ी रखी तां छज्जू दे ज्ञान दे कपाट खुल गए। तां उसने गीता दे श्लोकां दे वेरवे नाल अर्थ करके समझाया जदों कि पंडित कोलों श्लोकां दे अर्थ ना होए। इस तरह पंडित दा हंकार टुटा। जदों गुरु हरकृष्ण साहिब दिल्ली पुजे तां राजा जय सिंह दे बंगले विच ठहराव कीता जिथे अजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब है। इत्थे भी ओ संगतां नूं अध्यात्मक सिक्ख्या देंदे। बालक दे ज्ञान दी परीक्षा लैण लई राजा जय सिंह ने अपनी एक राणी नूं दासी दे वेस विच दूजियां दासियां नाल बिठा दिता। गुरु हरकृष्ण साहिब फौरन राणी नूं पछाण गए ते उन्हां दी गोदी विच जा बैठे। कुछ समय बाद दिल्ली विच हैजे वर्गी महामारी फैल गई। मुगल राजा नूं जनता दे दुखां दी परवाह नहीं सी, पर गुरु साहिब जात पात ते उच्चे नीवें दा वितकरा ना करदे होए आप रोगियां दे दुख दूर करदे रहे। अज भी उन्हां दी चरण छो प्राप्त पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे संगतां शरीरिक रोगां तों मुक्ति प्राप्त करदियां हन। आप जी दी इस उपमा करके ही दसवें पातशाह ने रोजाना अरदास

0: शब्द तुसी भाई चमनजीत सिंह ते साथियां दियां आवासां विच सरवण कर रहे सी। ते हुण असी तुहानू सुनवा रहे हां एक कहानी जिसका सिरलेख है सफलता दा सुफना। कहानीकार ने डॉक्टर कमलजीत सिंह।
1: बुद्धू पिंड दा सब तो वेलड़ रतनी दा इको एक पुत्तर सी। दुनिया विच आलस दी सब तो वड्डी डिग्री तां जिवें उसने ही हासिल कीती होई सी। सारा दिन सौना, रात भर जाग के तारे गिणदिया ख्याली महल खड़े करने ते किसी काम धंधे नूं हाथ ना लाउणा उसका असल काम सी। पिंड दा सब तो वड्डा वेलड़ ते आलसी होण करके पिंड विच उसका कोई बेली भी नहीं सी। समा बिताउण लई उसका सब तो वड्डा बेली एक छोटा जिहा रेडियो सी, जिस उत्ते वह अपना मन पसंदीदा गाना साला मैं तो साहब बन गया सुनदा ते मुड़ उस गाने दे आउण दी उड़ीक करदा रहिंदा। यह गाना उसका इसलिए भी पसंदीदा सी क्योंकि यह गाना उसके सुभा दे ऐन ढुकदा सी। वो आप चाहुंदा कि वह उसनू भी कम करते ना जाना पे ते वह रातों रात

अमीर बन जाए, जिस नाल वो लोगों नू कह सके अरे मैं तो साहब बन गया। उसके अजिहे कार्यां करके रत्नी भी बुद्धू दुआले गाला दी पंड लैके उस ते चढ़ी रहिंदी। बुद्धू कुछ चिर अपनी माँ दियां गाला सुन छड़दा ते उन्हां गाला नू एक कन तो सुन के दूजे विचों कढ़ छड़दा। वो अक्सर इन्हां ख्यालां विच उलझा रहिंदा कि एक दिन वह बहुत वड्डा आदमी बनेगा। एक रात बुद्धू सौण दी पुरजोर कोशिश करता है पर नींद उस दियां अखां विच आ के ही राजी नहीं हो सक रही सी। इसका मुख कारण अजे ताईं रेडियो उत्ते उसका पसंदीदा गाना अरे मैं तो साहब बन गया नहीं सी आया। इस गाने की उड़ीक विच उह तारे गिनना शुरू कर दिंदा है। लंबे समय के इंतजार पिछों अद्धी रात उसका गाना रेडियो ते आ ही जाता है। हुण मोए हुए बुद्धू नूं जिवें किसी ने संजीवनी बूटी सुंगा दित्ती होवे, अपने पसंदीदा गाने नूं सुण दिया ते अपने ख्याली ताने बाने विच उलझा उह सौ जाता है। बुद्धू जंगल पानी जाण वेले रेडियो नूं परने नाल अपने लक दुआले बन के नाल ही लै तुरिया ते तुरद्या तुरद्या अपने पसंदीदा गाने की उड़ीक करन लगा। जंगल पानी तो बाद वह नहर के कंढे कंढे तुरद्या अंबा दे बागा कोल पहुँच गया। वह इत्थे क्यों आया है इस बारे उसनू भी नहीं सी पता, बस वह आ गया। अंबा दे बाग विच उसनू एक अजिहा दरख्त दिखाई दिता जिस उत्ते लाल अंब लगे हुए सन। इस दरख्त नू वेख के वह बड़ा हैरान होया। उसने सोचा कि क्यों ना पहला इस दरख्त के अंबा का स्वाद लिया जाए, इसलिए वह इन्हां अंबा उत्ते निशाना ला के पत्थर मारन लगा। निशाना सही थां ते ना लगन करके कोई अंब उसके हाथ ना लगा। वह फिर पत्थर नाल निशाना लाउन लगा। कई निशाने लाउन तो बाद भी उसके हाथ कोई भी अंब ना आया। लाल अंबा लई उसकी तांग होर बदन लग पई पर अंब उसके हत्थे चढ़ ही नहीं रहे सन। वह जुगत लड़ा के दरखत उत्ते चढ़न का जतन करन लगा। रेडियो नूं एक पासे रख के वह साहोसाई होया किसी तरह नाल दरख्त उत्ते चढ़ ही गया। अंबा नूं अपने नेड़े वेख के उसके मूँह विचों लारा डिगण लग पईआं। उसने अंबा नूं तोड़न लई हथ अगे वधाया। अंब उसके हथ विच आ भी गए पर वह दरख्त नाल टुट्टण दा ना नहीं सी लै रहे। बुद्धू नूं लगा कि ये अंब हत्थां नाल तां टुटदे नहीं, इसलिए तां दाती जां करद नाल लियाउणी चाहीदी सी। रुस्से जे मूँह नाल ओह कदे जमीन वल वेखदा, कदे अंबा वल ते कदे आसमान वल। आसमान वल तकदे उसका ध्यान दरखत की उपरली टहणियों विच फसे हुए एक चिट्टे रंग दे वड्डे बोरे ते जा टिकिया। उसने सोचा कि जरूर किसी ने इस बोरे विच अंब तोड़ के लकोए हुए आ। वह किसी तरह नाल मशक्कत करके उस बोरे कोल पहुँच गया। बोरा डोरी नाल सीता होया सी। वह उस बोरे नूं नाल लैके दरख्त तो हेठां उतर आया। अंबा की बेसबरी ने उसनूं होर उतावला कर दिता। बोरे की डोर नूं वह दंदां नाल कट्टण वड्डण लग पिया। अखीर बोरे का मूँह खुल गया। बोरे अंदर तकते बुद्धू हक्का बक्का रह गया। वह बोरा नोटां नाल भरिया होया सी। नोटां वल नज़र जांदिआं ही रेडियो उत्ते अरे मैं तो साहब बन गया गाणा वज्जण लगा। गाणा सुणदे ही बुद्धू नूं लगा कि वह सचमुच ही अरे मैं तो साहब बन गया। हुण उह गरीब बुद्धू नहीं सगो अमीर बुद्धू शाह हो गया सी। इस तो पहला कि उसनू इस अंबा दे बाग विच नोटां दे बोरे नाल कोई वेखदा, वह उत्थों बोरा चुकी तुरदा बनया। उसने सोचा जेकर वह इस बोरे नू घर लै गया तां पिंड वालियां नू शक पै जाणा है, ते उसदी अपनी माँ ने तां सारे पैसे उस कोलों खोह के उसनू फिर तो कंगला बना देना है। राह तुरद्या उसने लोड़ मुताबक पैसे कढ के नोटां वाला बोरा एक तूड़ी दी कुप्पी विच लुको दिता। बुद्धू ने हुण अपना रहन सहन वधिया कर लिया। नोटां दे सेक ने उसकी घर दे पिंड विच पैंठ बना दित्ती। इह सब वेख वह हर वेले अपना पसंदीदा गाना अरे मैं तो साहब बन गया गुणगुणाउंदा रहिंदा। वह सोचदा कि इह उही पिंड वाले लोग हन जिहड़े उस वल कदे मूँह नहीं सी करदे ते अज उसकी बुत्तियां करदे फिरदे हन। करन भी क्यों ना, जिस दे पल्ले दाणे उस दे कमले भी सियाणे। बुद्धू आए दिन सोची पिया रहिंदा कि वह इन्हां पैसों का की करे जिस नाल वह होर वड्डा आदमी बन सके। नाले वह बाला समा नोटा की बोरी ने तूड़ी की कुप्पी वेच लको के रखण का जोखम भी नहीं सी लैना चाहुंदा। एक दिन बुद्धू नूं पता चलता है कि लागले पिंड किसी फिल्म की शूटिंग होनी है, तो इस फिल्म की शूटिंग लई हीरो बलवंत नूं लिया गया है। बलवंत फिल्मी जगत का एक बहुत ही वड्डा ते मशहूर नाँ सी। बुद्धू भी शूटिंग वेखन उत्थे चला गया। पिंड दा सरपंच बुद्धू नूं आया वेख अपने लागे दी कुर्सी ते उसनूं बैठन लई इशारा करदा है। शूटिंग हाले शुरू नहीं सी होई।

शूटिंग शुरू होने का समा सवेरे 9 बजे का सी, पर फिल्म के हीरो बलवंत के ना आन करके शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही सी। अद्धी दुनिया तो उचेचे फिल्म के हीरो बलवंत नूं ही वेखण आई हुई सी। बलवंत फिल्मी जगत में एक बहुत वड्डा नाम सी। उस दियां कई फिल्मों ने बहुत ही नामना खट्टिया सी। लगभग 11 बजे पता चलिया कि बलवंत शूटिंग लई नहीं आ रहा है। मसला पैसों के देण लैण नूं लै के सी। बलवंत इस फिल्म लई वध पैसे की मंग कर रहा सी, जिस दी पूर्ति ना होण करके उसने शूटिंग ही रद्द कर दित्ती। यह खबर सुन फिल्म के डायरैक्टर नूं तां जिवें हत्था पैरां दी पै गई। वह सारे ताम झाम नाल उत्थे पहुंचा होया सी। जेकर शूटिंग ना हुई तो पैसे पक्खों बहुत ही नुकसान होना सी, ते नाली बेइज्जती वधे दी। हीरो दे ना आण करके बुद्धू सरपंच दे कन्नी फूक मारदिआं खुद हीरो दे रोल दी गल करन लई कह दिंदा है। अगों सरपंच भी बिना कुछ सोचा डायरैक्टर कोल बुद्धू दी सिफारिश कर दिंदा है। डायरैक्टर ने बुद्धू पसंद तां बड़ा आया सी, पर उह इन्ना वड्डा जोखम चुकना नहीं चाहुंदा सी। किन्ना सोचा विच पै गए डायरैक्टर साहब, बाला ना सोचो, बुद्धू डायरैक्टर नूं हौसला दिंदिआं कह रहा सी। बुद्धू शाह जी, यह बहुत वड्डा रिस्क होवेगा, जेकर साडा नुकसान होया तो उसकी भरपाई असी किवें करांगे। डायरैक्टर बेइतबारी नाल बुद्धू वल तकदिआं बोली जा रहा सी। नुकसान कहदा जनाब, जेकर तुसीं मैनूं मौका दिंदे हो तो मैं अपने वल्लों तुहानूं 1 लाख रुपया देण नूं तैयार हाँ। नाले तुहाडे कोल बलवंत वाले पैसे भी तां बच जाणगे। हुण दसो नुकसान किस गल दा होया। यह सब सुन डायरैक्टर तां जिवें आसमान विच छाला ही मारन लग पिया। उसने बुद्धू नूं हाँ कर दित्ती। शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म लगभग 6 महीनों में तैयार होकर सिनेमा उत्ते लग गई। फिल्म सुपरहिट हो गई। इत्थों दी बुद्धू दी किस्मत बुलंदियां नूं छूण लग पई। हुण उह सुपरस्टार बन गया सी। लोक उस नूं वेखण ते उस दे हस्ताक्षर लैण लई तरसदे। उस अगों होरना फिल्मां दी वी झड़ी लग गई। इन्हां फिल्मां तों उह करोड़ां विच खेडण लग पिया। कामयाबी दीआं बुलंदियां नूं छूंदा होया उह मन ही मन अपना पसंदीदा गाणा अरे मैं तो साहब बन गया गुणगुणाउंदा रहिंदा। एक दिन किसी महफिल विच बुद्धू दी मुलाकात राज दे सब तो अमीर वलैती राम भी बुद्धू तो बहुत प्रभावित सी। उसने गल्लां-गल्लां विच बुद्धू नूं अपने घर रोटी ते आण लई सद्दा दे दित्ता, जिस नूं बुद्धू ने स्वीकार कर लिया। मिथे समय ते बुद्धू वलैती राम दे घर खाने ते पहुँच गया। खाणा खांद्यां वलैती राम अपने दिल दीआं गल्लां बुद्धू नाल सांझीआं करन लग पिया। बुद्धू शाह जी, इस बार मैनूं नहीं लगदा कि आण वाले वरे विच असीं दोबारा नंबर 1 ते रहांगे। तुसीं इस तरह क्यों सोचदे हो जनाब, वेखणा इस बार भी नंबर 1 तुहाडी कंपनी ही होवेगी। नहीं बुद्धू शाह जी, इस बार बाजार भी साडे वल दी गल नहीं कर रहा, बस साडी हार तय ही समझो। इस दा मुख कारण साडी कंपनी उत्ते लगे भ्रष्टाचार दे इल्जाम भी हन, पर हाली एक उम्मीद दी किरण बाकी है जे सानू दोबारा नंबर 1 कंपनी बना सकती है। जनाब, वह कड़ी उम्मीद की किरण है जो तुहानू दोबारा नंबर 1 बना सकती है? वह उम्मीद की किरण तुसी हो बुद्धू शाह जी। हैं, मैं? ये तुसी किवें कह सकते हो जनाब, मैं तुहाडी उम्मीद की किरण किस तरह हो सकदा? बुद्धू वलैती राम की इस गल तो एक तो बहुत ही हैरान ते परेशान सी, तो दूजा वह की कही जा रहा सी उसनू कुछ भी समझ नहीं सी आ रहा। हाँ, तुसी जेकर तुसी साडी कंपनी में शामिल हो जाओ तो साडी कंपनी लई स्टार प्रचारक बन जाओ ते साडा नंबर 1 होना पक्का तय ही समझो। सीईओ साहब, तुसी मेरे उपर इन्नी वड्डी टेक ना रखो, वेख्यो किते धोखा ना वापर जाए। नहीं नहीं बुद्धू शाह जी, सारा सूबा तुहाडा बहुत वड्डा कदरदान है, तुसी जिस पासे वल नूं भी खड़े हो जाओ गाहकां दा मूंह तां उसे वल ही हो जाणा है। साडी गल नूं मन लवो, असीं तुहानूं कंपनी विच 40% शेयर दा ऑफर दिंदे आ ते तुसी उस दे हिस्सेदार होवोगे, इस गल दा मैं तुहानूं भरोसा दिवांदा। वलैती राम दीआं गल्लां सुण के बुद्धू दे अंदर अरे मैं तो साहब बन गया गाणा गूंजण लग पिया। उस दे सूबे दा सब तो अमीर आदमी उसकी मिन्नता कर रहा सी ते नाले उस नूं 40% शेयर दा मालक बना दी ऑफर दे रहा सी। हुण ओह बहुता अमीर आदमी भी बन जाएगा, ये सोच के ओह भब्बा पार सी। बुद्धू वलैती राम दी कंपनी विच शामिल हो गया। बुद्धू दे आण नाल वलैती राम दी कंपनी विच एक नवीं जान पै गई। बुद्धू दे आण नाल वलैती राम एक बारी फिर नंबर 1 दे उत्ते आ गया। हुण तां जिवें बुद्धू दा मनपसंद गाणा मैं तो साहब बन गया उस दे कोल आ के मस्खरियां कर रहा सी। कुछ समय बाद वलैती राम दी कंपनी उपर बहुत ही भ्रष्टाचार दे मामले उजागर होण लग पए। वलैती राम भ्रष्टाचार दे मामले विच बुरी तरह नाल फस गया।

0: उस उपर सीईओ दी कुर्सी छड्डण दा मामला तूल फड़न लगा। मजबूरन वलैती राम ने सीईओ दे अहुदे तो इस्तीफा दे दिता, पर ओह अपनी थां बुद्धू नूं सीईओ बनाउण लई सब नूं रजामंद कर लैंदा है। वलैती राम नूं लगदा है कि बुद्धू उसका सब तो वफादार बंदा है, तो केवल एक बुद्धू ही है जो उसनों इन्ह सारे मामलों तो बचा सकता है। इसलिए वलैती राम अपनी थां बुद्धू नूं अगे कर दिंदा है। बुद्धू हुण कंपनी का सीईओ बन गया। उसकी खुशी उसके मूँह तो डुल डुल पैंदी सी। सीईओ बनदिया सारी उसनों पहली बार कंपनी नूं संबोधन किया। कंपनी ने संबोधन करदिया सारी भाषण की शुरुआत करदिया बुद्धू अरे मैं तो साहब बन गया गाने नाल करन लगा। सारी कंपनी के इंपलॉई ठाकियां दे ताड़ियां नाल गूंजन लग पे। अज बुद्धू नूं अपना आप मुकम्मल जापया। उसनूं लगा कि इस तो वड्डा साहब बनन लई हुण की बाकी रह गया है। वह हुण सचमुच ही संपूर्ण साहब बन गया सी। सीईओ बनदिया ही बुद्धू ने रुझेवे विच वध गए। एक दिन वह मुख मेहमान के तौर पर सूबे की एक नहर नूं साफ करन वाले प्लांट का मुआयना करन लई चलिया गया। मुआयना करन मौके उसका पैर फिसल गया ते वह नहर विच डिग पिया। वह घबरा के अपनी अखा पूंझदा होया आसे पासे वल वेखण लग पिया। उसके सारे कपड़े भिजे हुए सन ते उसका मंजा भी पानी नाल भिजा पिया सी। उसनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी। जदों उसने चंगी तरह नाल अखा खोल के सामने वेख्या तो उसकी माँ उसनू गालां कढ रही सी। उसकी माँ ने ही उसनू नींद तो जगाउण लई उसके उत्ते पानी की बाल्टी भर के सुट्टी सी। खुरत उत्या कंजरा दुपहरा दिन का आ गया, तू बोक बन के हाली ताईं मंजा भन्नी जा, मर जा टुट पैणिया, उठ के किते होर जा के खे खा। बुद्धू ने घड़ी वल तकिया तो दोपहर का एक बज गया सी। उसका अरे मैं तो साहब बन गया गाना वाला सुपना भी टुट चुकया सी। ते हुण ओह मुड़ तो असल दुनिया विच पिंड दा एक वेलड़ बंदा सी। अखा मलदा होया ओह उठ बैठा। हाली ओह अपने आप नूं कैम ही कर रहा सी कि उसकी बेबे उसनूं बाहर खड़े सब्जी वाले कोलों आलू फड़न लई कह दिंदी है, आ लै जा पंजा दा नोट ते बाहरों भाई कोलों किलो आलू फड़ लिया। अखा पूंझ दवाया बुद्धू बाहर खड़े सब्जी वाले कोल आलू लैण लई चलिया गया। सब्जी वाले ने भी अपनी रेहड़ी उत्ते उच्ची देना रेडियो चलाया होया सी। इस वेले रेडियो ते खबरां आ रही सन ते खबरां विच सूबे दे सब तो अमीर आदमी वलैती राम दे भ्रष्टाचार विच फसे होण करके इस्तीफे दी खबर चल रही सी। खबरां खत्म हो गई सार ही मैं तो साहब बन गया वाला गाना गूंजन लग पिया। बुद्धू बौंदलिया होया कदे हाथ च फड़े आलूआं नूं वेखी जावे, कदे सब्जी वाले नूं, कदे रेडियो नूं ते कदे अंदर गाला कढ़दी अपनी बेबे नूं। वे बुद्धुआ फेर तां नहीं सौं गया मोए उत्थे ही, हायो रब्बा कदों अकल आओ इस बोक नूं जिन्हें मेरा लहू पीता होया है। रेडियो ते अरे मैं तो साहब बन गया गाना भी कदों दा खत्म हो गया सी, पर बेबे दा गाना हाले भी चालू सी।
1: सफलता दा सुफना। हुणे तुसीं डॉक्टर कमलजीत सिंह दी एक कहानी सुन रहे सी। आओ एक होर शब्द सरवण करिए। सतगुर आयो सरण तुहारी, मिले सुख नाम और शोभा, चिंता लाहे हमारी। शब्द गायन कर रहे ने भाई रविंदर सिंह रागी ते साथी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को, बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर

0: millions of countrymen even today. Indian Grandmaster R. Pragananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javakir Sindorov in the penultimate round. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 10:10:15 और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का, कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी श्रोताओं का। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सुन लेते हैं सबसे पहले ये संदेश।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं कुसुम पवार, आप सभी के संग, और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। और श्रोताओं, आपके ढेरों मेल आते हैं हमें और हम आपके पसंदीदा गीत सुनवाते हैं। आपके पसंद के गीत होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ आप बात करते हैं, कुछ हम आपसे बातें करते हैं, और अक्सर हम कुछ विषय देते हैं ताकि हमारा जो ये कार्यक्रम है और रोचक रहे और आप भी अपने विचार हमसे साझा करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कुछ बातों का जवाब आपकी खामोशी भी दे देती है दोस्तों। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और आप भी बताइएगा क्या वाकई ये सही है या आपके क्या विचार हैं।

जी हाँ श्रोताओं और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज की कि हर सवाल का जवाब देना क्या ज़रूरी है। कुछ बातों का जवाब आपकी खामोशी भी दे देती है। जीवन में कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं दोस्तों की, जिन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है लेकिन कई बार नहीं करता। लेकिन हर बात का जवाब देना, हर बहस में शामिल होना और हर किसी को अपनी बात समझाना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है, क्योंकि सुकून हमेशा आपकी बात साबित करने में नहीं बल्कि सही जगह पर अपनी ऊर्जा बचाने से मिलता है। तो हमें आपके विचार इस चाहिए, और जो हमने बोला है आप अपने विचार भेजिए, साथ ही अपनी फरमाइश के गीत भी भेजिए, हम उसे शामिल करेंगे। तो हमारा सवाल एक बार से फिर सुन लीजिए, क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है या कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है?

श्रोताओं, जल्दी जल्दी से अपने जवाब भेजिए और अपने पसंदीदा गीत भी भेजिए। और साथ में एक गुजारिश है आपसे कि आप अपने जो मैसेजेस हैं, अपने मेल हैं, वो एक टाइम पर एक ही भेजिए, क्योंकि आपकी ही तरह बाकी दोस्त भी अपना नाम, अपने पसंदीदा गीत सुनने का इंतज़ार करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप अपने बाकी दोस्तों का भी ख्याल ज़रूर रखेंगे।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। दोस्तों, हमने बात करी थी, हमने सवाल किया था कि क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है या कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। तो हमें आप सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों के ढेरों मैसेजेस आए हैं, और नीचे सबसे पहले मैसेज हम देते हैं, ये आया है जाफराबाद से, मुकाम पोस्ट कालेगांव, सुधाकर राजे और समस्त परिवार का। ये कहते हैं, सामने वाले इंसान का हर सवाल का जवाब देने से तकरार बढ़ती है, चुप से ना ही ठीक रहता है। बिल्कुल, देखिए, जो सबके अपने अपने विचार होते हैं, और हम आपके जो विचार हैं उसको साझा कर रहे हैं। हमने जो प्रश्न किया था, आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। ये आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से, और ये कहते हैं कि अगर हर सवाल का जवाब देने लगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये मैसेज आया है हमें शमसुल कमर राही जी और समस्त परिवार का, गंज डुडवारा से। इसके अलावा हमें मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल और समस्त परिवार का। ये कहते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी

नहीं, जो काम खामोशी से हो जाए उससे अच्छा और क्या चाहिए, मौका देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये मैसेज आया है हमें बोधरा जी के, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, तो कृपया करके एक टाइम पे एक ही मैसेज आप शामिल कीजिए, आपसे ये गुजारिश है। और ये मैसेज आया है हमें औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार, वैशाली, वैष्णवी और समस्त परिवार का। इन्होंने गीत की फरमाइश की है, वो हम सुनवाएंगे। साथ ही संदीप मकर जी का मैसेज आया है जालंधर से, पिंग वाला चौक से। इसके अलावा हमें हरजीतन सिंह भाटिया जी का भी मैसेज आया है, कह रहे हैं ऑलवेज बी हैप्पी, कुछ बातों का जवाब देना मुमकिन नहीं, खामोश रहकर ही भी हम जवाब दे सकते हैं। ये मैसेज आया है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। और इसके अलावा हमें मैसेज करा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा और समस्त परिवार का। कह रहे हैं कि हमें हर बात के रिप्लाई करना करना लाजमी है, वरना लोग हमें नज़रअंदाज ही करेंगे। इसके अलावा हमें मैसेज आया है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश बन्ने बुजुर्ग हिंदुस्तान रेडियो मित्र का और समस्त परिवार का। और ये मैसेज आया है प्रकाश गोगे जी का दिल्ली से, जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करना हो तो कुछ बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, इसी विचार को लेकर और इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम सुनेंगे, और आपके पसंद के गीत ही हम सुनवाते हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्णजीत सिंह, स्वर्ण सिंह गिल और समस्त गिल परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ये मैसेज आया है राजेश जैन, बिट्टू जैन और समस्त जैन परिवार का, मुल्लापुर दाखा से। इसके अलावा ये मैसेज हमें आया है अलिंका डबवाली से, बसंत सिंह चंद्र राजकुमार कुलदीप गांधी जी का। और ये मैसेज आया है किशन वजनानी जी का और उनके समस्त परिवार का। साथ ही ये मैसेज आया कस्बा बिलराम से, इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और समस्त परिवार का। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, हमने बात करी थी कि क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है या कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। तो आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और ये मैसेज आया है सहारनपुर जनकपुरी से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा और समस्त परिवार का। साथ ही ये मैसेज आया है हमें व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और समस्त परिवार का। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, ये कहते हैं कभी कभी मौन भी उत्तर देता है, मौन से बेहतर उत्तर और कोई नहीं। और इसके अलावा हमें मारहरा दरवाज़ा एटा से भी मैसेज आया है नबी हसन अब्बासी और समस्त परिवार का। और आगे चलते हैं, यह है किशन विजनानी जी का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, हमें तो सावन के महीने में प्रभु आराधना करना और सावन के झूले झूलना अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है कि सुबह का कार्यक्रम जो वंदना होता है वो सारा डिवोशनल होता है, वो शायद आपने नहीं सुना होगा। और हम बात कर रहे हैं ये आपकी पसंद के गीतों की, और हम आपके पसंद के गीत शामिल कर रहे हैं, और हमने एक प्रश्न भी किया था, उसके उत्तर हमारे आप सभी श्रोता हमें दे रहे हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी का मैसेज आया है, ये सही है कि बात का जवाब बोलकर ही दिया जाए, खामोशी खुद ब खुद बयां कर देती है, आपका चेहरा, आपकी आंखें आपके दर्द को गहराई से जाहिर कर देता है, समझने वाली बात समझ जाते हैं और जो और वो खामोशी को भी अपना लेते हैं। तो जी, आपके बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और ये मैसेज आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन का। ये कहते हैं कि जीवन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि समय और व्यवहार से दिया जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमत्ता नहीं होती, कई बार मौन रहना ही सही रहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुकेश भट्ट जी का मैसेज है और समस्त परिवार का, हमें मुकेश बाटा जी का मैसेज है ये, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और इसके अलावा हरजिंदर सिंह भाटिया जी का भी मैसेज है जो हमने आपको पढ़ के बता दिया था। इसके अलावा ये मैसेज आया है संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव और समस्त परिवार का, इन्होंने अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश की है। लीजिए, सुनवाते हैं आपको अपनी आपकी पसंद का ये गीत।

और हमें ये मैसेज आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और समस्त गगनेजा परिवार का। और आगे ये मैसेज आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और समस्त परिवार का। ये कह रहे हैं कि आप अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार का भी हमें मैसेज आया है। ये कह रहे हैं कि हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप नियमित श्रोता हैं। गुजारिश है कि आपसे अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। देखिए, आप सभी हमें याद रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। और यूं ही अपनी पसंदीदा गीत हमारे साथ शामिल करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हरजिंदर सिंह भाटे जी का भी दोबारा मैसेज आ गया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। इसके अलावा चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी का भी मैसेज आया है हमें, और इंद्रजीत सिंह छाबड़ा जी का भी मैसेज आया है। मंगेश नरवाड़ा घनौरा विटाली तहसील नांदड़ा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भी हमें मैसेज आ रहे हैं।

श्रोताओं, आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ये मैसेज आया है हमें कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और समस्त चौहान परिवार का। साथ ही ये मैसेज आया है, ये मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन और समस्त परिवार का।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और समस्त अरोड़ा परिवार का। इसके अलावा ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का मैसेज आया है। शमसुल हसन कमर राही और समस्त परिवार का गंज डुडवारा से भी हमें मैसेज आया है। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है एडवोकेट गुंजन सिंह और समस्त परिवार का। ये कह रहे हैं कि कई बार चुप रहने में ज्यादा अच्छा होता है, कई बार मतलब किसी भी मूर्खों से यूं अपनों से बहस करना बेकार होता है, जो रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो सही बात है कि जहां पे आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो वहां चुप रहना ही बेहतर है। इसके अलावा हमें मैसेज आया है ये मधु किरण जी का, कह रहे हैं मैं गृहिणी हूँ, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभी कुछ बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। फिर अपनी पर फरमाइश की है कि इन्हें गीत सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो हमें टॉपिक दिया है उसके, आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं हमें और हम आपके मैसेजेस पर गौर फरमा रहे हैं और आपके पसंदीदा गीत भी सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है समस्त राधे जाधव देशमुक्त वायरल परिवार का मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। आपने भी अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से भी। मैसेज आया है बोधराज खोरवाल जी, आपने बहुत सारे मैसेजेस कर दिए हैं, कृपया करके आपके बाकी दोस्तों के लिए भी मैसेज करने के लिए छोड़ दीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके सभी मैसेजेस शामिल कर रहे हैं।

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं, आपको एक प्रश्न दिया था और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं happyradiodelhi@gmail.com पर। और हमने आपसे एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर हमें मिल रहा है और बहुत सारे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं। SP गोयल जी का कहना है, ये सत्यप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, विदित गोयल और दिल्ली रोहिणी से भेज रहे हैं, अपनी आंखों में बसाकर ये इन्होंने फरमाइश की है। इसके अलावा जो हमने प्रश्न किया था आपसे, उसका जवाब भी हम आपसे चाहते हैं। आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिले हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमें स्वर्णजीत सिंह गिल और समस्त गिल परिवार का मैसेज आया है। इसके अलावा ओम प्रकाश राय जी का मैसेज आया है और समस्त परिवार का। ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत बेहद कर्णप्रिय लगे, कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए हमें कम है और आपके पसंदीदा गीत हम सुनवा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ये कह रहे हैं, अपनी फरमाइश भेजी है आर्य नगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज और समस्त परिवार का। इसके अलावा भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और समस्त छिपा परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आप हमारा मैसेज नहीं शामिल कर रहे, बल्कि आपके हमने बहुत सारे मैसेजेस शामिल करे हैं, कि कह रहे हैं कि समय बहुत कीमती होता है और इसलिए आप हमारा फरमाइश भी शामिल कीजिए। तो हमने आप सभी की फरमाइश की है, शामिल की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार में एक ही मैसेजेस हम तक पहुंचाएं। इसके अलावा आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं और ये मैसेज आया है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का। ये कह रहे हैं गुलाब दास मनिकपुर से, कह रहे हैं कि खामोशी भी जवाब बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, हमने प्रश्न किया था उसका जवाब आपने दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप भी जो हमने प्रश्न किया है उसका जवाब ज़रूर दें और साथ में हम आपके फरमाइशी

श्रोताओं, हमने बात की थी कि हमने आपसे प्रश्न किया था कि क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है या बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया। इसके अलावा अहमद फूलवाले का भी मैसेज आया है। ये कह रहे हैं कि तुरंत जवाब दिया जाए ये ज़रूरी नहीं। और इसके अलावा हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन और समस्त परिवार का भी मैसेज आया है। छोटा बलिया फिल्म नगरी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले और समस्त परिवार का मैसेज आया है। कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत दे दिया जाए ज़रूरी नहीं, उचित समय पर जवाब दिया जाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा पंकज शर्मा का भी मैसेजेस हमें मिले हैं और आप सभी दोस्तों के हमें मैसेज आ रहे हैं। जगदीश जी का भी मैसेज हमें आया है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से, और भी ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं और हम सुनवा रहे हैं आपके पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिले और हमने आपके पसंदीदा गीत शामिल किए और जो हमने प्रश्न किया था उसके आपके उत्तर भी हमें आए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मुझे यानी कुसुम पवार को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सुनिए ये आपका पसंद का गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 11 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हुआ। इससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आंदोलनरत छात्रों ने कल शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे भी विद्यार्थी की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इससे पहले जून में प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, and we extend our heartiest greetings on the 12th National Handloom Day. The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom awardees and National Handloom awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता

0: प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down from

0: generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देश भर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

0: बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President, and in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: नमस्कार, माननीय राष्ट्रपति जी एवं मंच पर विराजे विशिष्ट अतिथिगण, आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, deviyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hu. main swagat karti hu desh ke sabhi बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage,

0: ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की द्विपक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल।
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the Future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress. With technology as an enabler, and weavers at the heart of journey, it is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है। आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे। थैंक यू। जय हिंद।
3: थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। I request the Honorable Minister, Shri Giriraj Singh, to kindly felicitate the Honorable President.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं, तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
3: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल हैं, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल हैं, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें।
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
3: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
2: माननीय राष्ट्रपति
3: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।

0: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
1: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
2: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right,
0: Assam.
1: Time to get and one NRI task done. What?
0: And,
1: you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat sari. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Jamalani sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi.
2: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905, when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle barsh Rashtriya Hastshilp Puraskar Samaroh के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards. Through your craftsmanship, innovation, and dedication, you continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. अंततः आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमारे बुनकरों को सम्मान, पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें।

0: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
2: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
1: जब 10 साल बाद आता तो 43 लाख और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख। आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों

लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने, विभाग ने, हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभड़ भाई अपने बच्चों को IISTE में दें,

0: लिफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करे। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCHC के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए हैं, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीवर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आपको बता दें 12वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठे
3: मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूचे विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजी आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कही छंती बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है। इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहाँ से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद

0: माता बहनों, आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, फिर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तोहफे, तो यहीं पे तो शौक है, हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी नहीं, आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले 1 दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है, इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सद्भाव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवा एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हस्तकर्ता प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक टेक्निकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
1: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: हर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, सावन की भीनी भीनी फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली से सजा प्रकृति का आंगन, ऐसा है मनभावन मौसम। और आज का दिन बहुत ही खास है। हम नमन करते हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिनकी लेखनी ने प्रेम, प्रकृति, मानवता और राष्ट्र भावना को शब्दों की अमर धरोहर दी। उनके विचार आज भी हमें संवेदनशील, सृजनशील और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। और आज ही है राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस। यह दिन उन अनगिनत बुनकरों, कारीगरों को समर्पित है जिनके कुशल हाथ केवल कपड़े नहीं बुनते दोस्तों, बल्कि भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत के हर धागे को पिरोते हैं। हमारी साड़ियों की खूबसूरती, दुपट्टे की रंगत और हस्त निर्मित वस्त्रों की पहचान इन्हीं कलाकारों की मेहनत का परिणाम है। तो मुस्कुराइए, चाय की प्याली थामिए और हमारे साथ इस सुरीले सफर का आनंद लीजिए।

और बादल पे चलकर तो अभी हम नहीं आए हैं, लेकिन आसमान में बहुत सारे बादल हैं। और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म विजय से। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका मोबाइल, इंटरनेट, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी सब छिन जाए तो कैसा लगेगा। हमारी नई पीढ़ी आज़ादी को जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और मानना भी चाहिए, लेकिन शायद उन्हें यह भी जानना ज़रूरी है कि ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे लाखों लोगों ने अपने सपनों और ज़िंदगी देकर कमाया है। नई पीढ़ी को आज़ादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त की छुट्टी या तिरंगा लहराना नहीं सिखाना है, उन्हें बताइए कि आज़ादी का मतलब है बिना डर अपनी बात कह पाना, अपने सपने चुन पाना, पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना, अपने देश को बेहतर बनाना। और ये सीख किताबों से कम, घर से ज्यादा मिलती है। कभी परिवार के साथ किसी शहीद स्मारक जाइए, दादा दादी या नाना नानी, उनके समय की कहानियां सुनिए, देशभक्ति पर बनी फिल्में साथ बैठकर देखिए, और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को सिर्फ देश से प्यार करना नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी सिखाइए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने वालों की नहीं होती है दोस्तों। ईमानदारी से काम करने वाला हर नागरिक, नियमों का पालन करने वाला हर व्यक्ति और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य

निभाने वाला हर इंसान देश को मजबूत बनाता है। याद रखिए, जिस पीढ़ी को आज़ादी की कीमत पता होती है वही उसकी सबसे अच्छी रखवाली भी करती है। तो चलो युवा शक्ति, इस आज़ादी को सिर्फ उत्सव नहीं संकल्प बनाएं, अपने कर्मों से अपने विचारों से भारत का भविष्य सजाएं। और हाँ, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। आज हैंडलूम डे है तो हमारा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। कौन से हाथ के बने हुए कपड़े पहनना आपको सबसे अच्छा लगता है? चुनरी, दुपट्टा, साड़ी या कुर्ता या कोई भी ट्रेडिशनल कपड़ा? हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म थी बहारों के सपने। और दोस्तों, सावन की फुहारें मन को जितने सुकून देती है उतनी ही हमारी त्वचा और बालों की परीक्षा भी लेती है। इस मौसम में नमी बढ़ने वाले जो उससे रीज़न होता है कि त्वचा चिपचिपी हो जाती है, मुहासे, फंगल इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। वहीं हमारे स्कैल्प में रूसी, खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी आम हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जिसका असर त्वचा और बालों पर भी दिखाई देता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। चेहरे को दिन में दो बार साफ करें, लेकिन बार बार नहीं। बारिश के मौसम में भी बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, क्योंकि बादलों के पीछे जो छिपी हुई सूर्य की किरणें होती है वो भी त्वचा को नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आप घर पर एक आसान सा आयुर्वेदिक फेस पैक बनाना चाहें तो एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसमें आधा आधा चम्मच चंदन और नीम पाउडर मिलाइए। इसमें गुड़हल के फूल का जो पानी होता है वो ठंडा करके उसमें मिला दीजिए, या फिर आप ग्रीन टी भी मिला सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। इसे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर धो लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कम करने, त्वचा को ठंडक देने और मुहासों की समस्या में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं बालों की। बारिश में अगर बाल भींग जाएं तो उन्हें देर तक गीला ना रहने दें। सप्ताह में एक या दो बार गुनगुने भृंगराज, ब्राह्मणी या आंवला युक्त तेल से हल्की सी मालिश करें और एक बेहतरीन आयुर्वेदिक हेयर पैक भी आजमाइए। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1-1 चम्मच नीम पाउडर और करी पत्ते का पाउडर मिलाइए। इसमें ठंडी ग्रीन टी डालकर पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसे बालों की जड़ों में लगभग 20 मिनट तक लगाकर धो लीजिए। इससे स्कैल्प की अतिरिक्त चिकनाई कम होगी, रूसी कम होंगे, बालों को ताजगी देने में मदद मिलती है। और दोस्तों, सिर्फ बाहरी देखभाल ही नहीं, इस मौसम में हल्का, ताज़ा और गर्म खाना खाएं। हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे मसाले पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। साथ ही गीले कपड़े या गीले जूते अधिक देर तक ना पहनें, क्योंकि यही फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। और हाँ, कोई भी नया फेस पैक या हेयर पैक लगाने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। याद रखिए, आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि ऋतु के अनुसार दिनचर्या, मौसम के साथ अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके आप पूरे सावन अपनी त्वचा को दमकता और बालों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म में प्यासा सावन से। और दोस्तों, सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। रिमझिम फुहारे, मिट्टी की सोंधी, महक झूलों की रौनक और लोक गीतों की मधुर धुन, ये मौसम केवल वर्षा का नहीं बल्कि हमारी परंपराओं और लोक संस्कृति का भी उत्सव है। इन्हीं सुंदर परंपराओं में से एक है मिथिला का बहुत ही प्राचीन और भावनाओं से भरा लोक पर्व मधुश्रावणी। मधुश्रावणी केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि नवविवाहित बेटियों के नए जीवन के लिए आशीर्वाद, विश्वास और प्रेम का उत्सव है। विवाह के बाद पहले श्रावण मास में नवविवाहित महिलाएं इस पर्व को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर लगभग 15 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव नव दंपति के सुखी, समृद्ध और दीर्घ वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, इस पर्व की सबसे सुंदर बात यह है कि ये केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार को स्नेह के एक धागे में पिरो देता है। मायके और ससुराल के बीच प्रेम, अपनापन और परंपराओं का जो सेतु बनता है वही जो है मधुश्रावणी की सबसे बड़ी पहचान है। इस दौरान मिथिला के घरों में लोकगीत गूंजते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनते हैं और नए बहू को परिवार के रीति रिवाजों से परिचित कराया जाता है। मधुश्रावणी की एक विशेष परंपरा है नाग नागिन अर्थात विषहरा और विषहरी की पूजा। मिथिला की लोक मान्यता के अनुसार नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक और जीवन के संरक्षक है। यह पूजा हमें संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध सम्मान और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति का मूल भाव है, प्रकृति की रक्षा तभी जीवन की रक्षा। और मधुश्रावणी हमें यह भी सिखाती है कि भारतीय लोक पर्व केवल रीति रिवाज नहीं होते बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। परिवार का साथ, प्रकृति के प्रति सम्मान, रिश्तों की मधुरता और नए जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन की सुहानी बेला में यदि कभी मिथिला की धरती पर मधुश्रावणी के लोकगीत सुनने का अवसर मिले तो दोस्तों महसूस होगा कि ये पर्व केवल मनाया नहीं जलता बल्कि पूरे मन से जिया जाता है। इसी मंगल कामना के साथ कि सावन का यह पावन महीना आपके जीवन में भी प्रेम, विश्वास, हरियाली और खुशियों की फुहार लेकर आए।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म उसने कहा था। और दोस्तों, जरा सा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपके घर में भी कोई पुराना संदूक है जिसमें दादी की साड़ी, नाना जी का चश्मा, माँ की शादी का एल्बम या पिताजी के पुराने खत आज भी संभाल कर रखे हैं? क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का इतिहास है, हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है? आज मोबाइल में हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन अफसोस, उनमें से कितनी तस्वीरें हम 10 साल बाद ढूंढ पाएंगे और कितनी कहानियां उनके साथ जिंदा रहेंगी? पहले दादा दादी या नाना नानी जो भी होते हैं, उनके रात को बच्चों को, परिवार को, जो भी होते रात बच्चे घर में, उनको कहानियां सुनाती थी कि कैसे दादाजी ने संघर्ष करके घर बनाया, कैसे बाढ़ या सूखे के दिनों में पूरा परिवार एकजुट रहा, कैसे छोटी सी

खुशियां भी त्योहार बन जाती थी और वही कहानियां बच्चों को साहस, संस्कार और परिवार का महत्व सिखाती थी। तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें, अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी बातें रिकॉर्ड कीजिए, पुरानी तस्वीरों के पीछे तारीख और उनसे जुड़ी यादें लिखिए, परिवार का एक छोटा सा वंश वृक्ष बनाइए, बच्चों को बताइए कि उनके नाम किसके नाम पर रखे गए, उनके पूर्वज कहाँ से आए और किन मूल्यों से इस परिवार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। यकीन मानिए, आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ी विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपने संस्कार, अपने परिवार की कहानी मिलेगी। और हाँ, आज घर पहुंचकर एक काम जरूर कीजिएगा, किसी पुराने एल्बम को निकालिए, पूरा परिवार साथ बैठकर देखिए और हर तस्वीर के पीछे कहानी सुनिए, देखिएगा तस्वीरों से ज़्यादा मुस्कुराहट खिलेंगी। और अभी कुछ मेल्स भी आए हैं, खुशबू कश्यप लिखती हैं कि कीप बूस्टिंग भारत का जो भी होता है, भारत देश के बारे में उसकी तारीफ करना और मुझे कॉटन कुर्ती पहनना अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी कहते हैं सूती के खादी और खादी के कुर्ता पजामा उनको बहुत पसंद है। सुदर्शन मुखी जी ने भी कार्यक्रम की तारीफ की है और बहुत सारी बधाई दी है। कामानी लिखती है कि उन्हें रंग बिरंगे दुपट्टे और भारतीय वस्त्र पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप सबका मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हम सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन को फिल्म क्या कहना। और बारिश में आपको एक ऐसे ट्रेन की जर्नी करनी चाहिए जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बारिश यानी मिट्टी की बीनी बीनी खुशबू, पहाड़ों पर तैरते बादल, हरियाली का चादर और सफर का ही बिल्कुल नया एहसास। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी रेल यात्रा भी है जहाँ ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बादलों और घने जंगलों को चीरते हुए किसी छिपी हुई जन्नत की ओर बढ़ रही हो, तो जी हाँ, बात कर रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की। यह रेलगाड़ी उत्तर पूर्व भारत के उन मनमोहक इलाकों से होकर गुजरती है जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। और ये रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के सियालदह से चलकर त्रिपुरा के सबरूम तक पहुंचती है। लगभग 1600 किलोमीटर का ये सफर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और त्रिपुरा की धरती को जोड़ते हुए उत्तर पूर्व भारत की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से आपका परिचय कराता है। लेकिन दोस्तों, असली जादू शुरू होता है मानसून में। जैसे जैसे ट्रेन त्रिपुरा की लॉन्ग थराई पहाड़ियों की ओर बढ़ती है, खिड़की से बाहर का हर दृश्य किसी चलचित्र का जीवंत दृश्य बन जाता है। घने बांस के

जंगल बादलों में खोई हुई पहाड़ियां, छोटी छोटी जल धाराएं और एक के बाद एक आती हुई सुरंगें। कई बार तो ऐसा लगता है मानो ट्रेन बादलों को चीरती हुई किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रही हो।

अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को फिल्म दोस्त में, और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में समय 1:10.15 हो चुके हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से का।

नमस्कार, कार्यक्रम एक ही फिल्म से के आज के सफर की साथी हूँ मैं यानी मनीषा बोस और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज एक ही फिल्म से के सफर में हम उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जहाँ फिल्मी अदालत के कटघरे में हैं और हमारे सामने है 1958 की रिलीज फिल्म अदालत, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं नरगिस, प्रदीप कुमार और प्राण।

0: निर्देशक कालिदास की फिल्म क्लासिक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म अदालत। इसमें मुख्य भूमिकाओं में नरगिस और प्रदीप कुमार नजर आते हैं और ये फिल्म अपनी बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है। साथ ही इसके जो बेहतरीन संगीत हैं वो तो इसकी खास बात है ही दोस्तों, क्योंकि 1958 की ये फिल्म मदन मोहन के सदाबहार संगीत के साथ सजी हुई और नरगिस के सशक्त अभिनय से सजी हुई है, जहां नरगिस त्याग और सामाजिक संघर्ष की एक मार्मिक दास्तान अपने अभिनय से पेश करती हैं। कालिदास द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक माँ के जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी को दर्शाती है दोस्तों, जिससे उसका बेटा अनजाने में ही अदालत में उसकी मामले की पैरवी करता है। आगे करेंगे फिल्म की और भी बातें, फिलहाल सुनते हैं इसे फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा।
1: जब दिन हसी
0: दिल हो जवान,
1: क्यों ना मनाए पिकनिक। जब दिन

1958 की फिल्म अदालत है आज हमारी एक ही फिल्म की कहानी में, और इस सफ़र में आज आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा है, जो आपको लेकर चल रही है इस सफ़र के साथ, गाते गुनगुनाते।

1958 की फिल्म अदालत है आज हमारी एक ही फिल्म की कहानी में, और इस सफर में आज आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा है, जो आपको लेकर चल रही है इस सफर के साथ, गाते गुनगुनाते और इस फिल्म की बहुत सी बातें बताते। हम बातें करेंगे आगे और भी इस फिल्म से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक संदेश।

साथियों, निर्देशक कालिदास की फिल्म अदालत के लिए संगीत मदन मोहन ने तैयार किया था और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। इसके कई गीत गजलनुमा और मधुर गीत बहुत लोकप्रिय आज भी होते हैं, जैसे आप अभी इस गीत में खो गए थे। और हमने आपको कहा था कि आप हमें संदेश लिखकर भेजिए, बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। इस संदर्भ में हमारे सामने बहुत सारे संदेश हैं कि पहला मेल है राधे श्याम देवांगन जी का, ये हैं इंदिरा नगर भंवरपुर से और इनके साथ चंपा देवांगन जुड़ी हुई हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुदर्शन मुखी हैं हमारे नियमित श्रोता साथी और उनका जो संदेश है वो हमारे पास आ चुका है, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। उनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ी हुई हैं शांति नगर सोनीपत से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को इसी तरीके से सराहने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा हैं और उनके साथ पूनम गंगनेजा हैं जो कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। और उसी तरह एक ही फिल्म से अदालत फिल्म की ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है और ये लग रही है अच्छी जिन्हें, वो हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और हैं हमारे श्रोता साथी गांव फरासी ज़िला हसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ये फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। जी हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि आज आपकी पसंद की फिल्म की बात हो रही है। उसी तरह हमारे पास है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का संदेश, ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र छीपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका दोबारा संदेश हमारे पास आया है। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, उन्हें भी जानकारी अच्छी लग रही है और इस फिल्म के गीत उन्हें बहुत पसंद हैं। जी बहुत शुक्रिया। और संदीप मक्कर हैं, ये हैं संदीप मक्कर हैं और इनके साथ ज्योति हैं, मन्नत हैं, भारत हैं, कमल हैं और ये जुड़े हुए हैं पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इतनी दूर दूर से जब आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं तो सच में हमारा हौसला और बढ़ जाता है। संजय साहू पोटिया कला से हैं और इन्हें फिल्म अदालत की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, ये उनकी पसंदीदा फिल्म भी है। जी बहुत शुक्रिया। वनिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस हैं, पिंकी लवली आरती अरोड़ा हैं और दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा हैं, जानकारी अच्छी लग रही है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान असरार और नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ये दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें लिख के भेजते हैं। जी आपके संदेश मिलने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। लेकिन हम अब बात करते हैं अपनी फिल्मों की। आप गौर से सुनते रहिए इस फिल्म की जानकारी जो है।

1958 की अदालत फिल्म। और चलिए अभी सुनते हैं हम इस फिल्म का एक वो गीत जो आप सबको बहुत ही पसंद होगा और इसे हम सभी अक्सर अपने गमगीनी के समय में गुनगुनाते ही हैं, तो सुनिए और लुत्फ लीजिए।

ये फिल्म प्रेम, विश्वासघात, भाग्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों को सामने दर्शाती है और इस तरह इन मनोभावों को छूते हुए एक मकाम पे पहुंचती है। अभिनय और निर्देशन, जो निर्गिस ने निर्मला के किरदार में बेहद भावुक और शक्तिशाली अभिनय दर्शाया है, उसे हमारे फिल्म के चहेते कभी भूल नहीं सकते। और आलोचकों और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत सराहा था दोस्तों। प्रदीप कुमार ने भी एक बैरिस्टर के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी इस फिल्म में, और जो निर्देशक कालिदास हैं, उन्होंने समाज के संघर्ष को पर्दे पर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर किया था इस फिल्म के ज़रिए। और इस फिल्म का संगीत जो मदन मोहन का था, वो तो एक से बढ़ के एक संगीत है जिसे हम ऐसे ही गुनगुनाते हैं। तो चलिए एक और मधुर सा ये संगीत हम गुनगुनाते हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ।

भाई अंत में हम तो आपको यही कहेंगे दोस्तों कि 1958 की अदालत सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि इंसाफ की, रिश्तों की और जिद की कहानी है। देखिएगा जरूर, फिर मिलेंगे किसी नए सफर में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। संसद ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 पास कीता। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई नीट समेत वक् वक् मुद्दयां ते विरोधी धिर वल्लों कीते गए हंगामे कारण दिन भर लई मुलतवी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा हथखड़ी खेत्र समावेशी विकास लई इक शक्तिशाली माध्यम है। उन्हां साल 2025 लई संत कबीर हथखड़ी पुरस्कार ते राष्ट्रीय हथखड़ी पुरस्कार प्रदान कीते। मिजोरम दे मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने अज नवी दिल्ली च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करके वख वख मुद्दयां ते चर्चा कीती। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका च ग्रैंड चैस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड बिल्ड दा खिताब जित्तिया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। संसद ने लोक सभा की मंजूरी तो बाद आज सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 पास कर दिता है। राज सभा ने यह बिल सोमवार नूं पास कीता सी। पहली बार मुलतवी तो बाद जदों सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे मुड़ शुरू हुई तां सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां बारे मंत्री जतन राम मांझी ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास एक्ट 2006 विच होर सोध करने लई बिल पेश कीता। इस बिल का उद्देश अदायगी च देरी नूं हल करना ते विवाद

0: हल नूं सरल बनाउणा ए। बिल विच ए व्यवस्था कीती गई है कि जेकर कोई मामला 6 महीनियां तों वध समय तों बकाया पिआ तां दित्ती गई रकम दा घट्टो घट 50% सप्लायर नूं अदा कीता जाणा चाहीदा। बिल पास होण तों बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप सैकिया ने सदन की कार्रवाई चलाउण की कोशिश कीती, पर प्रदर्शन कर रहे मैंबरां नूं सदन नूं काम करन देण की अपील भी कीती। उन्हां ने कार्रवाई च पाए जा रहे विघन ते नाराजगी जाहर करदिआं कहा कि अजिहा विरोध देश दे लोकतंत्री ढांचे लई उचित नहीं है। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी धिर दे विहार ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इजलास दौरान हमेशा संसद विच आउंदे ने ते देर रात तक उथे मौजूद रहिंदे ने। हंगामा जारी रहण कारण प्रिजाइडिंग अफसर ने सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दित्ती। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विरोध विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दों ते विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। सदन की अगली बैठक हुण सोमवार नूं सवेरे 11 बजे होगी। पहली बार मुलतवी होने बाद जदों दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तां सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विरोधी धिर के हंगामे दौरान प्रश्नकाल की शुरूआत की। हंगामे दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कवच ते सिग्नलिंग प्रणालियां दी स्थापना नाल जुड़े एक सवाल का जवाब देना शुरू किया, पर रौले रप्पे कारण वह अपना जवाब पूरा नहीं कर सके। इस दौरान विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह तो नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई बारे सदन च बयान की मांग की। हंगामा जारी रहने कारण सभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी। इस तों पहलां जदों सदन की कार्रवाई शुरू हुई तां सभापति सीवी राधाकृष्णन ने दस्या कि 9 अगस्त नूं भारत छड्डो अंदोलन की 84 वरेगंढ है, जिस की शुरूआत महात्मा गांधी की दूरअंदेशी अगवाई हेठ की गई सी। सभापति ने आजादी संघर्ष के शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकड़ी खेतर न सिर्फ रोजी रोटी का साधन है सगों समावेशी विकास लिए एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आज नवी दिल्ली च 12वें राष्ट्रीय हथकड़ी दिवस समारोह नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि हथकड़ी हजारां सालां तों भारत दे सभ्याचार ते सभ्यता का एक अनिखड़वा अंग है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकड़ी खेतर विशाल रोजगार के मौके प्रदान करता है। उन्होंने दस्या कि देश के हथकड़ी खेतर च 35 लाख तो वध लोग लगे हुए ने, जिन्हां विचों करीब 25 लाख औरतां ने। उन्होंने कहा कि हथकड़ी भारत के आजादी संग्राम ते स्वय निर्भरता की भावना नाल टुकाई नाल जुड़िया हुआ है।
1: हजारों वर्ष से हथकर्ता भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकड़ा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने देश के बुनकरा डिजाइनर विद्यार्थियों के हथकड़ी क्षेत्र नाल जुड़े सारे लोगों को बधाई दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकड़ा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस मौके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकड़ी नूं एक पायदार ते वातावरण अनुकूल कपड़ा उत्साहित करने लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालां च हथकड़ी उत्पादों की मांग वधन की उम्मीद है। समागम दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2025 लई संत कबीर हथकड़ी पुरस्कार ते राष्ट्रीय हथकड़ी पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके देश दीआं अमीर ते वख-वख हथकड़ी बुनाई रवायतां नूं समर्पित 4 यादगारी डाक टिकटां भी जारी कीतियां गईआं। इस मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस दिन देश अपनी अमीर ते जीवंत हथकड़ी विरासत का जश्न मनाउंदा है। देश के बुनकरां ते कारीगरां दे हुनर रचनात्मकता ते समर्पण नूं सलाम करदिआं श्री मोदी ने अपील की।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: ए खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @ERIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @ERIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज अपने रिहायश ते राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ विच हाल ही च शामिल होए वख-वख संसद मैंबरां नाल मुलाकात कीती। इन्हां विच नैशनल सिटीजनस पार्टी आफ इंडिया NCPI ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀ ਸਵਿਤਰੀ ਨਾਗਨਾਥ ਵਾਕਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़े हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तश्वीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आलेकार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमरीका में सेंट लुइस रैपिड और ब्रिड्स का अपना पहला खिताब जीता है। और रक्षिता राम राज और अश्मिता चालिहा आसान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की के तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी है। अलबत्ता राज्यसभा ने इसे पीर को मंजूरी दे दी थी। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा

0: शुरू हुई तो एमएसएमई के वजीर जीतन राम मांझी ने बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुतालिक 2006 के कानून में मजीद तरमीम का यह बिल पेश किया। इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर को खत्म करना और मुतनाज़ हल को सहूलत आमेज बनाना है। बिल में कहा गया कि सरकारी शोबे के हर मरकजी कारोबार के तहत रियायत के निजाम के तहत एमएसएमई की अशिया या खिदमात की खरीदारी के लिए बिल लाजमी तौर पर पेश करे। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की कोशिश की और एहतजाज करने वाले अरकान से अपील की कि वो ये कार्रवाई जारी रहने दें। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजू ने अपोजिशन के इस रवैये पर तश्वीश जाहिर की है और कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हमेशा इजलास के दौरान आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहा। प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अब यह कार्रवाई पीर को दिन में 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आजादी और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: राज्यसभा ने भी नीट के मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद आज दिनभर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वक्फे सवाल उठाया। शोरगुल के दौरान रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कवच और सिग्नल निजाम की तंसीब से मुतालिक एक सवाल देने की कोशिश की, लेकिन वो अपना जवाब मुकम्मल नहीं दे सके क्योंकि शोरगुल जारी रहा, जिस पर चेयरमैन ने दिनभर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर के रोज दिन में 11 बजे शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहायशगाह पर नाश्ते के दौरान एनडीए में शामिल होने वाले नए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इनमें एनसीपीआई और शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए शिवसेना की अरकान पार्लियामेंट ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार रखना डालने पर तश्वीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम समझते हैं कि बार बार रखना डालने की वजह से ऐवान में नौमंतखब और बासलाहियत अरकान पार्लियामेंट को अपने ख्यालात पेश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एनसीपीआई की मेंबर पार्लियामेंट शताब्दी रॉय ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने एनडीए से वाबस्ता हर एक मेंबर का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया है कि क्या करने की जरूरत है और किस तरह अरकान पार्लियामेंट मुल्क की तामीर में मौसर तरीके से अपना ताउन दे सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी की 57वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आजम तकरीब के दौरान 3,000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 पीएचडी स्कॉलर से भी जिन्हें डिग्रियां अता की जाएंगी खिताब करेंगी। जनाब मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार एजाजात भी नवाजेंगे। भारत और चीन के दरमियान कल नई दिल्ली में मुनाकिदा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WWCC की 36वीं मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरतेहाल का जायजा लिया गया और खुलकर बातचीत की गई। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि दोनों फरीकों ने सरहद की हदबंदी, सरहदी इंतजाम, निजाम साजी और सरहदी ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज संत कबीर हथकरघा अवार्ड और 2025 के हथकरघे के कौमी अवार्ड अता किए। 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स समेत कुल 22 अवार्ड्स हथकरघे के बुनकरों को उनकी कारीगरी, इख्तरा और भारत के हथकरघे की रवायत को जारी रखने पर दिए गए हैं। आज नई दिल्ली में हैंडलूम के 12वें कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों साल से हथकरघा भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा रहा है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश हुई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए औसत दर्जे से लेकर शदीद बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इम्कान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इस माह की 12 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीत लिया है। 20 साला भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाहिर सिंदारूफ के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंदा ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। बैडमिंटन में आज आसान में भारत के रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रक्षिता ने अपनी हमवतन साथी खिलाड़ी तन्वी शर्मा को क्वार्टर फाइनल में 21-18, 19-21 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक और भारतीय खिलाड़ी अश्मिता चालिहा से होगा। अश्मिता ने नंबर एक खिलाड़ी जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णा, मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद ग्रागार की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मानवी चोंग और सो वोल ईक की मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखिर को खत्म करने और मुतनाज़ा हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघे का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आलेकार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमरीका में सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का अपना पहला खिताब जीत लिया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes across several parts of northern India. In chess, Grandmaster R. Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States, and Rakshita Ramraj and Ashmita Chalihiha enter women's singles semi-finals of Korea Masters Badminton Tournament in Asan. Parliament has passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. More from our correspondent.
4: The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute,

0: 6.56 meters against the danger level of 6.50 meters. Inundating low-lying agricultural land in Basta and nearby areas. Authorities are monitoring vulnerable embankments and remain prepared for evacuation if required. Meanwhile, the IMD has forecast widespread rain, thunderstorms and lightning across Odisha for the next 5 days, with an orange warning for Mayurbhanj and yellow warnings for several other districts. Another cyclonic circulation is likely to develop over the northwest Bay of Bengal around 12th of this month. The state government has already released 110 crore rupees as preliminary assistance for 22 flood-affected districts, with the highest allocations going to Baleswar, Jajpur and Bhadrak districts. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Kerala, IMD has predicted heavy rainfall across the state. More from our correspondent.
2: IMD's heavy rain alert is continuing in Kerala for the third consecutive day. 8 of the 14 districts are under orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall. The remaining 6 districts are under yellow alert, with a chance of isolated heavy rain. The high range areas have not received heavy rain today, bringing some relief. At the same time, parts of Kozhikode and Wayanad are experiencing heavy rainfall, while other districts are witnessing moderate rain. The ban on fishing activities continues along the coastal areas. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: In sports, Indian Grandmaster R. Pragyananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javohir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Asan today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster R. Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इससे पहले पहले सघन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
5: वेलकम के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
6: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25

0: लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवाज से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में

0: प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं, उस शख्सियत के लिए मैं कुछ लाइनें कहूँगी। न शब्दों की बंदिश न सुरों का गुमान, जब भी वो गाते हैं थम जाता है ज़माना और खिल उठता है आसमान। जी हाँ, इन लाइनों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किसी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति को, किसी उस शख्सियत को लेके आए हैं जो कि संगीत से जुड़ी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बेहद ही खास दिन है। जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है।

क्योंकि आज उस आवाज़ का जन्मदिन है जिसने बनारस के घाटों की शांति अपनी आवाज़ में ली। सावन की पहली बारिश की जो मिठास है वो भी उसकी आवाज़ में है। और अगर हम बात करें भारतीय संगीत की सादगी या शास्त्रीय संगीत की गहराई की, तो सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो नाम वही है, यानी कि सुरेश वाडकर जी। जी दोस्तों, आज का हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो समर्पित है सुरेश जी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और ये वो सुरेश वाडकर जी हैं जिनकी आवाज़ ने 4 दशकों से भी ज़्यादा वक्त से हमारे दिलों को छुआ है अपने सुरों के ज़रिए। तो लीजिए, करते हैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के खूबसूरत से इस तराने के साथ।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडकर जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1955 को। सुरेश जी जो हैं वो बहुत ही कम उम्र के थे जब उन्होंने अपनी संगीत की जो तालीम थी वो शुरू की। संगीत की जो शिक्षा दीक्षा है उन्होंने ली आचार्य जियालाल बसंत जी से, और उन्होंने संगीत की बारीकियों को सीखा उनसे, और पंडित जसराज जी के साथ उनके सानिध्य में उन्होंने अपने सुरों को और भी ज़्यादा निखारा। आचार्य जियालाल बसंत जी का जो मानना था, उन्होंने जो देखा कि सुरेश जी के अंदर बहुत प्रतिभा है, और यही देखते हुए उन्होंने सुरेश वाडकर जी से कोई फीस भी नहीं ली। बहुत कड़ा रियाज किया, सुबह तड़के उठकर वो घंटों रियाज किया करते थे, और कई बार तो उनके खाने पीने या रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थीं उनके लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संगीत की जो शिक्षा दीक्षा थी उसको उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह थी कि जब थोड़ा बड़े होने पर उन्होंने एक प्रतियोगिता सुर सिंगर सम्मेलन जीती, और उसमें जीतने के बाद उनको उम्मीद थी कि शायद उनको बहुत सी फिल्में मिलेंगी, तुरंत उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्टूडियो के इधर उधर चक्कर काटते रहते थे, संगीतकारों को ऑडिशन देते रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि वो दौर था किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश साहब जैसे दिग्गजों का। ऐसे टाइम में किसी एक नए गायक को अपनी जगह बनाना वाकई में बहुत ही मुश्किल, मतलब आप कह सकते हैं कि एक असंभव सा काम था। लेकिन जयदेव जी ने अपने मौका दिया अपनी फिल्म गमन में, जो कि 1978 में आई, और इस फिल्म का जो एक गीत है उन्होंने गाया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। लेकिन इस गीत को गाने के बाद में, गाने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो जयदेव जी थे वो चाहते थे कि सुरेश जी अपनी गज़ल की जो हर बारीकी है उसके दर्द को पूरी तरह से महसूस करें, और यही वजह थी कि रिकॉर्डिंग से पहले जयदेव जी उनको अपने घर बुलाया करते थे, उनको बुला करके घंटों शास्त्रीय संगीत के रियाज, शेर व शायरी के मिजाज पर चर्चा करते थे, और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो इसकी सादगी और इसकी गहराई ने रातों रात सुरेश जी को संगीत प्रेमियों का एकदम फेवरेट बना दिया, और यही वो गाना है जिसके बाद सुरेश जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही उनकी चाल थोड़ी स्लो थी, लेकिन पहुंचे वो एकदम ऊंचाइयों तक। तो लीजिए सुनते हैं वही नायाब सा गीत फिल्म गमन से।

बात है, क्या आवाज़, क्या गहराई है इस आवाज़ में। वाकई में दोस्तों, गमन फिल्म के बाद सुरेश वाडकर जी की जो आवाज़ का जादू है वो ऐसा चला कि उस दौर के हर बड़ा संगीतकार, चाहे वो आर डी बर्मन साहब हों, शिव हरी हों या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हों, सब ने, जी हाँ सब ने सुरेश जी को अपनी आवाज़ कि उनकी जो आवाज़ थी उनको अपनी धुनों का हिस्सा बनाना शुरू किया। ख़ासकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो जोड़ी है उनके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। चाहे फिल्म क्रोध हो, प्रेम रोग हो, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के गाने सुरेश जी को हर घर की आवाज़ बना दिया। वैसे आपको मालूम है राज कपूर साहब जो हैं वो अपनी फिल्मों में संगीत को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, और फिल्म प्रेम रोग के लिए जब सुरेश वाडकर जी ने गानों की रिकॉर्डिंग की तो राज कपूर साहब उनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की जो पकड़ थी, जो पहुंच थी, उसको देखकर हैरान रह गए। और उन्होंने गाने की जो रिकॉर्डिंग की उसके बाद राज कपूर साहब इतने ज़्यादा इमोशनल हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने सुरेश जी को अपने गले लगाया और कहा कि भाई तुम्हारी आवाज़ में वो मासूमियत है जो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर देती है। तो लीजिए सुनते हैं सुरेश जी की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत फिल्म प्रेम रोग से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

तो आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडकर जी के बारे में। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव जानवी और दर्श राजपूत, गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। शाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, इनके साथ हैं खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, और वडिंग खेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू, थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े। मेराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेराज के साथ, शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान, उत्तम जमदाड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।

फरासी जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतिनगर सोनीपत से, बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया। और ये अगला संदेश छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से जुड़े हैं आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग जी के साथ में। और दोस्तों ये जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ये भेजा है संदेश पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज अहमद और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलौद छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, जयदेव पोता मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। और मेहरहारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये जो अगला संदेश है इसको एक बार फिर से भेजा है स्वर्ण सिंह जी ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और लीजिए सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेंद्र जी और सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने बात की सुरेश वाडकर जी के बारे में। उन्होंने न जाने कितने अनमोल नगमों को जिया, लेकिन सुरेश जी के लिए हम यही कहेंगे कि वो एक सिर्फ गायक नहीं है बल्कि भारतीय संगीत के वो पिलर हैं जो कि इस शास्त्रीय परंपरा को सुगम संगीत के साथ, सादगी के साथ जोड़ते हैं। और अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों के बारे में, उन्हें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, क्या क्या पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर भारत सरकार के द्वारा सम्मानित पद्मश्री तक हर पुरस्कार उनकी साधना के आगे छोटा नज़र आता है। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार हो या फिर संगीत नाटक एकेडमी सम्मान, मतलब अगर हम देखें तो सम्मान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो उनको प्राप्त है। और उन्होंने अब एक आजीवासन के नाम से एक संस्थान शुरू किया है जहां पर वो पिछले कई दशकों से अपनी इस गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको जीवित रखे हैं और हज़ारों

कलाकारों के सुरों को तराश रहे हैं, संगीत की नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आवाज़ का ये जो मीठा सा जादू है, यूं ही सालों साल हमारे दिलों पर राज करता रहे। उन्हें जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। और अब ये सफ़र यहीं तक, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि 3 बजे एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़ लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ ये खूबसूरत सा गीत। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और वक्त हुआ है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का। आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति, कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ में स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है मैटिनी मेलोडीज़ और अभी जो हमारे पहले कार्यक्रम की जो क्लोजिंग हुई है, जो समाप्ति हुई है, जो एंडिंग हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत से इस प्यारे से गीत के साथ हुई है, सावन के इस खूबसूरत से गीत के साथ हुई है। और वाकई में आज तो सब तरफ हर जगह पर बारिश की वो फुहारें चल रही है ना, कि हर तरफ बारिश ही बारिश है। शायद ही आज कोई देश का कोई हिस्सा ऐसा अछूता होगा जहाँ बारिश नहीं हुई है। तो आज इस मौसम की जब अगर हम बात कर रहे हैं, सावन की बात हो रही है, तो क्यों ना आज हम अपने इस मैटिनी मेलोडीज़ को भी सावन के और बरसात के रूप में लें। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। भाई खासकर हम अगर बात करेंगे बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में बारिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम ये कहेंगे कि वो एक पूरी फिल्म का हिस्सा होती है। वो प्यार के रूप में आती है, वो बिछड़ने में आती है, वो मस्ती में आती है, या फिर अगर कुछ चीज़ बहुत ही दर्दनाक या कुछ यथार्थ दिखाना होता है, तो उसमें भी बारिश का बहुत ज़्यादा अहम किरदार आप मान सकते हैं। और जब पानी की बूंद ज़मीन से टकराती है, तो जो संगीत पैदा होता है ना, तो वही संगीत हम भारतीय सिनेमा के

पर्दे पर भी आता है और हमारे दिलों के तार छेड़ जाता है ये पानी की जो बूंदों के पानी की बूंदों का जो संगीत है। तो करते हैं आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे खूबसूरत से गीत के साथ भाई, जिसके बारे में अगर हम बात ना करें तो हम बारिश के बारे में बात कर ही नहीं रहे। जी हाँ, 1950 के दशक में बारिश को दिखाया गया था दो ही रूप में, एक प्रेमी के रूप में और एक समाज पे आई विपदा संघर्ष को दिखाते हुए। तो हम करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से प्यार के साथ, लता जी और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म श्री 420 से इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, प्यार का गीत हो और ये गीत ना हो ही नहीं सकता। एक काले से छाते के नीचे राज कपूर साहब और नरगिस का ये गाना। भारतीय सिनेमा में बारिश के अगर रोमांटिक सॉन्ग की बात की जाए ना, तो ये गाना नंबर वन पर होगा। और हम अगर बारिश के बारे में बात कर रहे हैं और इस गाने के बारे में बात ना हो ही नहीं सकता भाई। वैसे हम अगर देखेंगे तो 60 का दशक आते आते जब ये रोमांटिक सॉन्ग्स थे, इनमें थोड़ा सा चुलबुलापन भी आना शुरू हुआ, थोड़ा सा चाम और आना शुरू हुआ, और थोड़ी सी उसमें जो वेस्टर्न धुनें थी वो भी डालनी शुरू हुई। लेकिन वैसे ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है इस खूबसूरत से गीत के साथ में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी हमारे सभी श्रोताओं के साथ कि भाई, बारिश का मौसम है, आप लोग भी बारिश का आनंद ले रहे हैं, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए कि बारिश का वो कौन सा गीत है जो कि आपको आज भी एकदम बच्चों की तरह शैतानी करने के लिए, या फिर उसको सुनकर आपके अंदर कुछ एक अलग एहसास आता है, कोई एहसास जागता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। और भेजने का तरीका आपको मालूम ही है। जी हाँ, आप हमारे पास भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी indraprastha@gmail.com पर हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार। और कुछ संदेश हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो उन

0: काली रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागे से होती रातों में।
1: जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत, किशोर कुमार और मधु बालाजी के ऊपर पिक्चराइज ये गीत, जो कि एक मैकेनिक के यहाँ गैराज में ये जो गीत है वो शूट किया गया था, और इसमें औजार, ग्रीस, पानी, हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया इस गाने को एकदम नेचुरल बनाने के लिए। एस डी बर्मन साहब चाहते थे कि गाना जो है वो एकदम ऐसा लगे कि जैसे कि एक मैकेनिक के मिजाज का है, और वो थोड़ा सा बेफिक्र हो, थोड़ा सा चिढ़ाने वाला हो और अपनी ही धुन में मस्त हो। बस किशोर कुमार साहब ने तो इस रिकॉर्डिंग के दौरान जो बीच बीच में आपने आवाज़ें सुनी भी होंगी, ओहो, या फिर औजारों की जो खटपट उन्होंने की है इस गीत में, वो एकदम नेचुरल लगी है इस गीत के अंदर। और मधुबाला, वाह, शी इज़ लुकिंग सो ग्रेट। इतनी खूबसूरत जो एक्ट्रेस हैं, शायद ही आज तक भी कोई और रही है उनके अलावा। और मधुबाला जी ने बेहद ही एक नेचुरली वो जो पूरा सीन है उसको शूट किया, ठंडे पानी में भीगते हुए जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो एकदम ही लाजवाब थे। और बारिश के इस मौसम में ये गीत तो वाकई में सुनना अपने आप में एक अलग ही चाम है। और दोस्तों, हमारे साथ हमारे कुछ श्रोता जुड़े हैं जो कि अपनी कुछ बातें हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहर जी के साथ, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्य दिवांगन, हेमलता डिम्पल दिवांगन जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशव रिधान खुराना जी, और लिखते हैं कि मैटनी मेलोडीज़ में एक से बढ़कर एक दिलकश पुराने गीतों का जवाब नहीं। भाई गीत तो ठीक है, लेकिन आप ज़रूर हमें बताइए कि बारिश का ऐसा वो कौन सा गीत है जो आपके दिल को छू जाता है। अगला संदेश हम तक आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी का, और लिखते हैं कि गानों की आवाज़ तो ठीक आ रही है लेकिन आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। चलिए कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़

और ज़्यादा पहुँचे, और लिखते हैं कि दिल को छूने वाले गाने बहुत सुकून दे रहे हैं, और जो अगला संदेश हम तक आया उसको हम तक पहुँचाया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी ने, और लिखते हैं कि इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। डी बी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, और लिखते हैं कि गर्मी की तपिश के बाद सावन की बारिश पेड़ पौधे धरती को जल से तृप्त करते हैं, और लिखते हैं कि भारतीय फिल्मों में भी वर्षा पर आधारित फिल्म में आया सावन झूम के गाना बेहद पसंद है लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में उनको, तो बहुत खूब और बिल्कुल सही कहा आपने राणा जी। और दोस्तों संगीत की दुनिया में अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश को हर तरह के जो इमोशंस हैं उनके साथ जोड़ के देखा गया, एक रोमांटिक उसमें भी देखा, चुलबुलेपन में भी देखा, लेकिन जो जिंदगी में जब कोई बिछड़ना होता है, कोई विरह होता है, तो उसमें भी बरसात को एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, और इसी पर आधारित है हमारा ये अगला गीत फिल्म बरसात की एक रात से। तो लीजिए सुनते हैं लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ और हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम और फिल्मी संगीत का क्या ही कनेक्शन है। भाई, एक तरफ जहाँ पर 1950 और 60 के दशक में श्री 420 और बरसात के रात जैसी जो फिल्में थी जिसका गीत अभी आपने सुना, जिसमें विरह को दिखाया गया या

बहुत एकदम मासूम सा प्यार दिखाया गया छाते के नीचे, जो राज कपूर साहब और नरगिस जी का प्यार। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और 70 के दशक में जैसे हम पहुँचे, तो बदलाव ऐसा आया कि बारिश में पूरा एक चेंज ही, जो पूरा सिनेरियो था वो पूरा चेंज हुआ और उसकी जगह ले ली एकदम मॉडर्न रोमांस ने। और वही की तब हम आपको सुनवाने वाले हैं जिसने कि उस टाइम पर आकर एकदम मतलब कहेंगे कि राजेश खन्ना साहब की नेचुरल चार्मिंग अदाई थी और इस गीत में जीने तमान का ग्लैमर था और ऊपर से आर डी बर्मन साहब का जादुई संगीत, वाह वाह वाह, और किशोर कुमार की आवाज़, वाकई में गीत में 4 चांद लग गए। और इस गीत से जो पूरा एक कह सकते हैं कि बदलाव का एक ये सिंबल बना, और इसके साथ ही जो फिल्में थी उसमें बरसात को लेकर के और नए एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अजनबी से लता जी और किशोर की आवाज़ में।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज़ के साथ और आज हम बात कर रहे हैं बारिश के बारे में। बारिश जिसको हम कह सकते हैं कि फिल्मों में बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया गया और कई बार होता था कहानी में, अगर कुछ आपको खुशी दिखानी है या फिर बहुत गहरे दर्द को दिखाना है, अकेलेपन को दिखाना है, तो भी आप बरसात का यूज़ किया जाता था, या फिर एक चुलबुलापन दिखाना है तो भी उसको यूज़ किया जाता था। और सिर्फ आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल सिनेमा में इनको सिर्फ रोमांस, प्यार या फिर विरह को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक पैरेलल सिनेमा था उसमें भी बारिश को जीवन के कड़वे सच के रूप में भी दिखाया गया। चाहे वो फिल्म 2 बीघा ज़मीन हो या मदर इंडिया जैसी फिल्म हो, जिसमें उन फिल्मों में बारिश, खेती, सूखा और भोजन को लेकर के, बहुत सी उम्मीदों को लेकर के उस फिल्म में दिखाया गया, यानी कि उस फिल्म में भी बारिश को एक अलग तरह से दिखाया गया। या फिर हम बात कर सकते हैं गाइड फिल्म की, जिसका वो खूबसूरत सा गीत अल्लाह हमें एक दे पानी दे, उसमें भी दिखाया गया है कि बारिश किस तरह से जीवन दान देती है हम सभी को। बारिश का एक अलग रूप उसमें दिखाया गया। दो अनजान लोगों को किसी शेड, गैरेज या पेड़ के नीचे मिलना या मुलाकात का जो ज़रिया होता है वो भी दिखाया गया है बारिश के बीच में। बहुत सी जगहों पर यूज़ किया गया इस बारिश को, और आप ये नहीं कह सकते कि बारिश को सिर्फ सिर्फ बारिश के रूप में दिखाया, बल्कि बारिश ने बहुत कुछ अपने, इस बारिश का जो बरसना है उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि छिपी हुई हैं। तो दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम की अगली पेशकश हम लेकर आए हैं खूबसूरत संगीत फिल्म मंजिल से, किशोर कुमार की आवाज़ में। ये भी रिमझिम का एक बहुत ही प्यारा सा गीत है।

दोस्तों, बदलते दौर के साथ साथ भले ही हमारे सिनेमा के रंग, टेक्नोलॉजी और गानों के मिजाज बदले हों, लेकिन जब भी खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हमारा मन अपने आप वो 50 और 60 के दशक में या 70 के दशक के उन सुनहरे दौर में लौट जाता है, जहां बारिश का मतलब सिर्फ भीगना नहीं बल्कि किसी की याद में मुस्कुराना, किसी के इंतज़ार में गुनगुनाना और ज़िंदगी को खुलकर जीना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी बारिश हो, रिमझिम की बारिश हो, तो एक कप चाय के साथ इस सुनहरे दौर में लौट जाइए और हमारे इस मैटिनी मेलोडीज के साथ जुड़ जाइए। तो लीजिए दोस्तों, अब करते हैं हम इस कार्यक्रम की समाप्ति।

अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, लेकिन जाने से पहले बोलूंगी सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी के साथ शांतिनगर सोनीपत से, और हमारे साथ जुड़े हैं भाई मूसा शेख जी। तो दोस्तों अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, लेकिन छोड़े जाती हूँ रिमझिम के तरानों के साथ में, मुझे यानी प्रीति को अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामईन, गज़ल जज्बात का वो पैकर है जिसकी तड़प रूह तक उतर जाती है। मोहब्बत का ऐसा बयान है जो दिल को बहुत धीरे से छू लेता है, जो ऐसा साथ हमारे दिल के किसी गोशे में खामोश बैठे होते हैं। गज़ल उनको हम ज़बान बनकर हमारी रूह को मुअत्तर कर देती है।

0: सामईन, अभी आप आशा भोसले की आवाज़ में यह गज़ल सुन रहे थे।
1: सामईन, गज़ल वो सिनफ़ सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है और हमें अपने इर्द गिर्द कौसे कज़ा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि गज़ल राहत बख्श और रूह को सकून देने वाली सिनफ़ है। ये जहाँ जहन और दिल को शादमानी अता करती है, वहीं एहसासात का खूबसूरत इजहार भी है।
0: आइए सामाइन सुनते हैं हरी हरन की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: सामईन, अभी आप हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। सामईन, गज़ल अपने खूबसूरत और जज्बाती अंदाज़े बयान के लिए मशहूर है। गज़ल में शायर जो कहता है, सुनने वाले को मानो अपने ही दिल की आवाज़ मालूम होती है। गज़ल के अल्फाज ऐसे रूह में पेवस्त हो जाते हैं कि सुनने वाले की रूह तक झूम उठती है। आइए सामईन सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।
1: हुजूर आपका भी

सामिन, अभी आप जगजीत सिंह की मखमली आवाज़ में यह गज़ल सुन रहे थे। सामिन, इस तरह से लोगों के जहन और दिल पर गज़ल ने असर किया कि लोग इसके सुरूर में मानो डूब से गए। आइए सामिन सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में यह खूबसूरत गज़ल।

सामईन, अभी आप मेहदी हसन की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे। गज़ल के अल्फाज ऐसे रूह में पेवस्त हो जाते हैं कि सुनने वाले की रूह तक झूम उठती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक़ आजमाती है। आइए सामईन सुनते हैं ग़ुलाम अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

सामईन, अभी आप ग़ुलाम अली की आवाज़ में यह गज़ल सुन रहे थे। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशार ग़ज़ल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:49:46 हुए हैं। कुछ ही समय में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया और शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नव निर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लचीली, इनोवेटिव और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी को पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य

0: सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने माना कि छात्रों के लिए स्कूल पहुंचने के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था न होना उनके गरिमापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में ये समीक्षा की गई।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम में सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक जाएंगे। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश की संभावना है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: held in New Delhi yesterday. The External Affairs Ministry said in a statement that both sides held detailed exchanges on issues related to boundary delimitation, border management, mechanism building, and trans-border cooperation. It was underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. The Indian Cybercrime Coordination Center has cautioned corporates and finance professionals against boss scam or CEO impersonation fraud. Home Ministry said in a statement that there has been a sharp rise in complaints on the National Cybercrime Reporting Portal relating to the takeover of WhatsApp accounts of professionals and business persons through malicious files circulated in the guise of account statements and regulatory communications. In the reported incidents, victims receive a compressed zip file over WhatsApp, SMS or email bearing names such as statement of account.zip, RBI.zip or MCA.zip. When the file is extracted and opened on a Windows desktop or laptop, a Trojan is installed which compromises the device and hijacks the victim's active WhatsApp web session. Red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for four northern districts of Keralam, Kozhikode, Kannur, Wayanad and Kasaragod, which were under orange alert until the afternoon, have now been upgraded to a red alert. Orange alert predicting isolated very heavy rainfall remains in force for four other districts. Yellow alert forecasting isolated heavy rainfall has been declared for the remaining six districts. And that is the end of this news bulletin.
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़ी हुई सूचना। गुमशुदगी में ये पहला नाम है दिशा का, जो डॉटर ऑफ हरपाल हैं। ये 13 जून 2026 से ग्राम छपरौली सेक्टर 168 गली नंबर 8 नोएडा से लापता हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण, ये 18 वर्ष की हैं, महिला हैं, शरीर की बनावट औसतन है और इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। इनका रंग गोरा है। जिस समय ये लापता हुई थी उस दौरान इन्होंने सफ़ेद रंग की कुर्ती, ट्राउज़र और सफ़ेद स्कार्फ पहना हुआ था। इनसे संबंधित सूचना प्राप्त होने पर आप एक नंबर है जिस पर इत्तला कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 8595902533, हिंदी में नंबर 8595902533। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप थाना एक्सप्रेसवे नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। इसी दिशा में अगली सूचना है अंजलि की, जो डॉटर हैं स्वर्गीय जगदीश की। ये इन्हें अंतिम बार चौगातपुर में देखा गया था। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है, उम्र 18 वर्ष है, ये महिला हैं, आंख नाक कान औसत है, इनकी ऊंचाई 5 फीट है। ये ग्राम चौगानपुर थाना इलेक्ट्रोटेक 3 गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं। घर से बिना बताए ये कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में इत्तला कर सकते हैं। अगला नाम है गुमशुदगी का रागिनी का। ये हैं पुत्री ऑफ बाबू, ये भी चौगातपुर की ही रहने वाली हैं और इनकी उम्र 18 वर्ष है। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, इनके आँख नाक कान औसत हैं और इनकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच है। इन्हें अंतिम बार गांव चौगातपुर थाना इकोटेक 3 में देखा गया था। ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में इत्तला कर सकते हैं। अगली सूचना है चरणजीत सिंह की, जो वाइफ ऑफ जरविंदर हैं। ये 11 जून 2026 से अपने घर से लापता है। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है, इनकी उम्र 69 वर्ष है और ये पुरुष हैं। इनका जो शरीर है वो सामान्य है, रंग गोरा है, ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है, चेहरे पर

तिल का निशान है और ये पगड़ी धारण किए हुए थे जिस दौरान ये घर से लापता हुए। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर है जिस पर आप इत्तला कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9560342414। नंबर एक बार फिर से अंग्रेजी में सुनिए 9560342414। अगली सूचना है अनुष्का की, जो लापता हैं और ये पुत्री हैं नगीना पासवान की। ये 22 जून 2026 से सुबह 10 बजे से ये 59 सेक्टर नोएडा से लापता हुई हैं। इनकी उम्र 20 वर्ष है, ये महिला हैं। इनका शरीर मजबूत है और इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है, रंग गेहुआ है। ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना प्रभारी, थाना फेस 1 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में इत्तला कर सकते हैं। और अगली सूचना है दुर्गा की, जो वाइफ ऑफ शांति हैं। ये 12 जून से लापता है, मस्कन C96 के पास सेक्टर 8 नोएडा से। ये 20 वर्ष की हैं, महिला हैं और इकहरा मजबूत बदन है, 5 फुट 2 इंच इनका कद है, रंग सांवला है और ये घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप उपनिरीक्षक थाना फेज 1 नोएडा में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना राकेश की है, जो पुत्र ऑफ जयप्रकाश हैं। ये 13 जून 2026 से लापता हैं, आम्रपाली सेक्टर 45 नोएडा से। ये 37 वर्ष के पुरुष हैं, इकहरा बदन है, 5 फीट ऊंचाई है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना 39 नोएडा में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदा व्यक्तियों से जुड़ी सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4:15 हुए हैं। लीजिए पेश है युवा श्रोता साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: दोस्तों, आज ऑफिस में आते हुए मैं यही नोटिस कर रही थी कि जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है, पूरे माहौल में एक अलग सी रौनक छा जाती है। रास्तों पर तिरंगे झंडे दिखने लगते हैं, स्कूल और कॉलेजों में तो जैसे तैयारियां सी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे हर तरफ देशभक्ति का रंग और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरा देश आज़ादी के इस पर्व का इंतजार कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट निखिल।
1: शुक्रिया मानसी, हमारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब बात देशभक्ति की होती है तो संगीत का जिक्र अपने आप ही होता है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में संगीत ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी?
0: बिल्कुल निखिल, हम अक्सर आज़ादी की लड़ाई को नेताओं और आंदोलनों से तो जोड़ते ही हैं, लेकिन उस दौर में गीत भी लोगों की ताकत बने थे। जब हजारों लोग एक साथ देशभक्ति के गीत गाते थे तो उनमें से ऊर्जा का संचार होता था और एकता का भाव भी तो पैदा होता था। क्यों निखिल?
1: बिल्कुल मानसी, जैसा कि आप जानती हैं, इंडिपेंडेंस डे इज़ अराउंड द कॉर्नर, और स्पेशली स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो उसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। उस समय लोगों ने सिर्फ विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट ही नहीं किया, बल्कि इंडियन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को अपनाने का संकल्प भी लिया था। इस विचार को जन जन तक कैसे पहुंचाया गया? सॉन्ग्स, मॉर्निंग प्रोसेशंस, स्ट्रीट गैदरिंग्स और कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा।
0: बिल्कुल, उस दौर में देशभक्ति के गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे।

0: बल्कि एक संदेश थे अपनी मिट्टी पर गर्व करने के, अपनी संस्कृति को अपनाने के और एक्चुअली इंडिपेंडेंट बनने के। लोग इन गीतों को गाते हुए एक दूसरे से जुड़ा करते थे और यही जुड़ाव आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी में बदला।
1: बिल्कुल, शायद यही संगीत की सबसे बड़ी ताकत है। कभी वही सुर लोगों को आजादी के लिए एकजुट करते थे और आज वही संगीत हमारी यादों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से जोड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन संगीत की वो शक्ति वो आज भी वैसी ही है।
0: सही कह रहे हैं आपने खिल, क्योंकि आज हमारा सफर होगा म्यूजिक, मेमोरीज और उन कहानियों का जिन्होंने हर दौर में अपनी अलग ही पहचान बनाई। कभी किसी धुन को सुन के हमें पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, तो कभी वही धुन किसी पुराने दौर की तस्वीर हमारे सामने लाकर रख देती है। दोस्तों, पहले सेगमेंट में यानी आज की बात में करेंगे उन बातों, उन सॉन्ग्स पर बात जिन्हें सुनते ही हमारे किसी और दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर मन से माइक्रोफोन में जानेंगे लेजेंडरी सिंगर जुबीन गर्ग की इंस्पायरिंग स्टोरी।
1: जी, और इसके बाद क्विक बज में बात करेंगे विनिल रिकॉर्ड्स की वापसी की, और आखिर में हमारे वीकली सेगमेंट में जानेंगे इंडिया की तेजी से उभरते इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन के बारे में। साथ ही आपको देंगे जानकारी देशभक्ति से जुड़े इवेंट्स के बारे में टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में। बात एक ऐसे ऐतिहासिक घटना की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहस और बलिदान की एक नई मिसाल पेश की, काकोरी कांड। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी के लिए जिसमें होंगे नॉस्टैल्जिया के रंग, म्यूजिक की बातें और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हल्की सी देशभक्ति की खुशबू।
0: निखिल, इस सफर की शुरुआत तो अभी कुछ देर पहले ही हुई। पता है, जब मैं स्टूडियो में आ रही थी तो किसी को पुराने गाने गुनगुनाते हुए सुना और पता नहीं क्यों वो लाइन सुनते ही मैं सीधे उस एरा में पहुंच गई।
1: जी,
0: क्या वाइब थी उन गानों की, क्योंकि मुझे तो फोमो सा हो गया, यू नो, आई फेल्ट लाइक जॉइनिंग इन।
1: बिल्कुल मानसी जी, आज का शो मुझे लगता है ऑफिशियली नॉस्टैल्जिया जोन में एंटर कर चुका है, यू नो, विद अ टच ऑफ पेट्रियोटिक वाइब, है ना?
0: बिल्कुल, इसी के साथ सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत।

0: दोस्तों, भारत में टैलेंट की कमी तो नहीं है। नाम गिनाने बैठ जाऊं तो दोस्तों शाम कम पड़ जाएगी। लेकिन निखिल, आज की तारीख भी कुछ खास रेलेवेंस की है। जानते हैं, 7 अगस्त को पूरा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। ये दिन सिर्फ हमारे बुनकरों की मेहनत को सलाम करने का नहीं, बल्कि उन स्वदेशी आंदोलन की याद भी दिलाता है जिसने भारत को अपनी मिट्टी से, अपनी कला से और अपने हुनर पर गर्व करना सिखाया।
1: बिल्कुल मानसी, 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, इसने लोगों को विदेशी वस्तुओं को बॉयकॉट और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को अपनाने के लिए इनिशिएट किया था। हाथ से बुने भारतीय वस्त्र उस आंदोलन की पहचान बन गए थे और आज नेशनल हैंडलूम डे उसी विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है।
0: क्यों नहीं, और शायद यही भारत की सबसे खूबसूरत बात भी है। यहाँ हर राज्य की अपनी कला है, अपनी भाषा है और अपना संगीत है, लेकिन पहचान सिर्फ एक, भारत। इसी विविधता की बात करें तो एक ऐसी आवाज जिसने अपने क्षेत्र में संस्कृति और संगीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। नाम गिनाने बैठ जाऊं दोस्तों तो सचमुच शाम तो निकल जाए। लेकिन जिस आर्टिस्ट की हम बात आज कर रहे हैं और जिन्हें हम कल्चरल आइकॉन के रूप में जानते हैं, उनकी कहानी शुरू होती है मेघालय के एक छोटे से हिल टाउन तुरा से। कुछ समझे निखिल, किनकी बात कर रही हूँ मैं?
1: समझा नहीं।
0: क्यों ना मैं गुनगुनाऊं, याली रहम वाली।
1: ओ जुबिंदा।
0: बिल्कुल,
1: जुबिंदा। जी हाँ, आज बात करते हैं लेजेंडरी जुबिन गर्ग के बारे में। तो 18 नवंबर 1972 को तुरा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जीबोन बोर्तुकार। जीबोन का मतलब लाइफ, जीवन। बाद में उनके पिताजी मोहिनी

0: उन बोर्तुकार ने, जो खुद एक पोएट थे, लेजेंडरी कंडक्टर जुबिन मेहता से इंस्पायर्ड होकर उनका नाम जुबिन रखा और सरनेम गर्ग, उनके गोत्र से आया। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग है ना, नाम में भी एक तरफ ग्लोबल इंस्पिरेशन और दूसरी तरफ अपनी रूट्स।
1: बिल्कुल, इनफैक्ट निखिल, ये कॉम्बिनेशन उनकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छे से दिखता है। फादर की गवर्नमेंट पोस्टिंग की वजह से उनका बचपन नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग टाउन्स में गुजरा। हर जगह के नए लोग, नए डायलेक्ट्स, फोक ट्रेडिशंस और साउंड्स मिले होंगे उन्हें। जो मूवमेंट किसी बच्चे के लिए निखिल एक डिस्ट्रप्शन हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, जुबिन दा ने उसे अपॉर्चुनिटी बनाया और वो एक कल्चरल एजुकेशन उनके लिए बन गया। वो अलग अलग कल्चर्स को सिर्फ देख नहीं रहे थे, उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे थे। पर कुछ तो जेनेटिक ब्लेसिंग भी रही होगी, ये तो मेरा मानना है निखिल।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने मानसी, क्योंकि मेरा मानना है म्यूजिक का सबसे पहला कनेक्शन उन्हें अपने घर से ही मिला, उनकी मदर इलाय बोर्तुकार। वो घर का काम करते हुए अक्सर गुनगुनाया करती थी, तो ऐसा कह सकते हैं म्यूजिक उनके रोजाना जिंदगी का पार्ट ही था। और ताजुब की बात यह है, छोटे जुबिन ने सिर्फ 3 साल की एज में उनके गाने इमिटेट करना भी शुरू कर दिया था।
1: क्या बात?
0: फिर फैमिली ने भी उनकी आवाज में एक अनयूजुअल इमोशनल क्वालिटी नोटिस करी।
1: लेकिन मैं अपने लिसनर्स को ये बता दूं कि जुबिन दा का टैलेंट सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं था। पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स उनके तो फैमिली डिस्कशंस थे, तो वर्ड्स, आइडियाज और म्यूजिक उनके दोस्त बन गए और उनकी पर्सनालिटी में निखर से आए। और शायद इसी वजह से उनका म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं रहा, बल्कि उनकी आइडेंटिटी, उनका इमोशन और उनके कल्चर के साथ ब्लेंड होकर उभरने लगा। तो निखिल, जुबिन गर्ग का जिक्र हो और उनके सॉन्ग्स की बात ना हो, कुछ सुना जाए।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये जो गाना आपने सुना, क्या आप जानते हैं जुबिन गर्ग सिर्फ सिंगर नहीं, कंपोजर भी हैं। तो फर्ज से आप ये कह सकते हैं वन मैन आर्मी। इसलिए मानसी, जुबिन गर्ग को सिर्फ सिंगर कहना शायद उनकी जर्नी को छोटा कर देना है। तुरा के एक बच्चे से लेकर नॉर्थ ईस्ट की कल्चरल आइडेंटिटी की एक पावरफुल वॉइस बनने तक, उनकी स्टोरी ये बताती है कि हम जहाँ से भी आएँ, वो हमारी क्रिएटिविटी को कितना डीपली शेप कर सकता है।
1: सही कहा आपने, और शायद जुबिन गर्ग की कहानी का सबसे ब्यूटीफुल टेक अवे यही है कि दुनिया से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन अपनी रूट से कभी दूर मत जाइए, क्योंकि जब दुनिया के इन्फ्लुएंसेस आपकी अपनी मिट्टी से मिलते हैं, तब एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो बन जाती है पहचान।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने मानसी। लेकिन क्या आप जानती हैं जुबिन गर्ग की सबसे खूबसूरत बातों में से एक क्या थी? वो थी उनकी इंसानियत। ना सिर्फ वो अपने फेम से, बल्कि अपनी सादगी, अपनी सौम्यता और डाउन टू अर्थ अप्रोच से लोगों के करीब आते थे। फ्रॉम तुरा टू अ लेजेंड, जहाँ एक बच्चे के लिए म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं था, इट वॉज ऑलरेडी बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गाना जुबिन गर्ग का, दिल तू ही बता।

0: इनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही मनमुक्त हो जाता है मन।
1: बिल्कुल
0: मानसी, आज की तारीख इतिहास के पन्नों में भी एक बहुत अहम जगह रखती है। 8 अगस्त, मैं बताता हूँ, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। उनका संदेश साफ था, करो या मरो। इस आंदोलन ने पूरे देश में आज़ादी की एक नई लहर पैदा की और लाखों भारतीयों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट कर दिया।
1: और यही बात तो म्यूजिक पर भी लागू होती है। चाहे आज़ादी का दौर हो या आज का डिजिटल ज़माना, संगीत हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है निखिल। कभी वो संघर्ष की आवाज़ बन जाता है तो कभी यादों का हिस्सा।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बात जब यादों की हो तो एक दिलचस्प ट्रेंड आज फिर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दोस्तों, जब हम म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं तो शायद हमारा दिमाग सबसे पहले Spotify प्लेलिस्ट, YouTube और Instagram रील्स के ख्याल कर आते हैं। आज एक गाना रिलीज होता है और कुछ ही मिनटों में वो दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसी डिजिटल दौर में एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे फिर से लोगों के घरों और दिलों में जगह बना रही है, और वो है विनिल रिकॉर्ड्स। सच कहूँ मानसी, तो मेरे लिए तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि आज के समय में भी जब हमारे पास गाने अपने फ़ोन पे अवेलेबल हैं तो लोग 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।
1: सोचने वाली बात तो मेरे लिए भी है, क्योंकि शायद इसी खूबसूरती, इसी में मैं कहूँगी कि खूबसूरती छुपी हुई है हमारे म्यूज़िक सिस्टम की। क्योंकि निखिल, जो कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक सिर्फ एक प्लेलिस्ट है या बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कुछ लोगों के लिए ये पूरा एक्सपीरियंस है।
0: बिल्कुल, तो इसी एक्सपीरियंस को जीते हुए अब चलते हैं अपने गाने की तरफ।
1: जी बिल्कुल,
0: रिम झिम गिरे सावन।

0: तो दोस्तों, सावन का महीना है और रिमझिम सावन घिर आया है। तो किशोर दा की आवाज में ये गाना सुन के निखिल, मुझे तो नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ रही हैं।
1: डिटो।
0: तो इमेजिन, एक शेल्फ पर सजे हुए रिकॉर्ड्स, एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर,
1: जी
0: एल्बम कवर को हाथ में पकड़कर उसे आर्ट वर्क को दिखाना
1: आहा
0: और फिर धीरे धीरे नीडल को रिकॉर्ड पर रखना।
1: उफ।
0: आज की जनरेशन के लिए ये सब किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है,
1: बिल्कुल ठीक
0: लेकिन
1: आपने।
0: दुनिया भर में हजारों लोग आज भी इसी तरह से म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं।
1: ये
0: तो

0: के स्पेशल विनिल एडिशंस भी निकालते हैं, जिससे फैंस को म्यूजिक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है।
1: अग्री करूंगी मैं आपके साथ निखिल, और साथ ही ये भी कहूंगी कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2024 में अमेरिका में लगभग 44 मिलियन विनिल रिकॉर्ड्स बिके
0: जी,
1: और लगातार तीसरे साल विनिल रिकॉर्ड्स की बिक्री सीडीज से कहीं ज्यादा रही। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन लोग म्यूजिक को महसूस करने के लिए पुराने तरीके ढूंढ ही निकालते हैं।
0: बिल्कुल ठीक बोला आपने। शायद इसलिए कहा जाता है ना कि म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता, सिर्फ उसे सुनने का तरीका बदल जाता है। इस खूबसूरत वाइफ के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिक ब्रीदर, हम अभी लौटते हैं।

0: जैसा कि मैं कह रही थी, अगस्त का महीना आते ही पूरा देश आजादी के रंग में रंग जाता है। लेकिन आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, किसी इसके पीछे कई अनगिनत कहानियां हैं, कई बलिदान हैं, संघर्ष हैं और साहस की ऐसी ऐसी कहानियां हैं निखिल, जिन्होंने हमें अंदर तक हिला दिया। और एक ऐसी ही घटना है काकोरी कांड।
1: बिल्कुल मानसी, एक के बाद एक मेजर और नोटेबल इवेंट्स, जैसे कि 9 अगस्त 1925 उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास स्थित काकोरी नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के निकट घटी एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा के रख दी थी। इसे सिर्फ एक ट्रेन डकैती कहना सही नहीं होगा, यह भारतीय क्रांतिकारियों की एक सुनियोजित कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था।
0: बिल्कुल, और उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों को अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी। उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेजी सरकार का खजाना जो ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा

0: उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए।
1: और फिर आया 9 अगस्त 1925। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी खजाने का संदूक उतारा गया। इस पूरी कार्रवाई में लगभग 10 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया।
0: क्या जानते हैं आप उन क्रांतिकारियों के नाम निखिल? मैं बताती हूँ। इनमें प्रमुख नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचेंद्र नाथ बख्शी, मनमनाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदलाल, मुरारी लाल और बनवारी लाल। सबसे प्रेरणादायक बात ये थी कि इन क्रांतिकारियों में अलग अलग धर्म, प्रदेश और भाषाओं के लोग थे, लेकिन उनका उद्देश्य अलग नहीं था, वो सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी।
1: दोस्तों, हालांकि इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं, कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और उनके खिलाफ लंबा मुकदमा चला, जिसे इतिहास में काकोरी
0: षड्यंत्र के नाम से जाना
1: जी
0: जाता।
1: शुक्रिया, काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।
0: और इस मुकदमे का फैसला बेहद कठोर था। जानते हैं कैसे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, और इनमें से कई साथी ऐसे भी थे जिनको आजीवन कारावास और लंबी जेल की सजाएं भी सुनाई गईं। लेकिन अंग्रेजों की ये सजा उनके विचारों को रोक नहीं पाई निखिल, वो उतनी ही मजबूती से बढ़ते गए।
1: जी बिल्कुल, काकोरी कांड ने पूरे देश, सरकार, युवाओं के भीतर आज़ादी की एक नई चेतना जगा दी। इस घटना ने यह संदेश दिया कि भारत के युवा अब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं।
0: और शायद काकोरी कांड की सबसे बड़ी सीख यह भी है निखिल कि साहस सिर्फ हथियार उठाने में नहीं होता, बल्कि अपने उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहने में होता है।
1: बिल्कुल,
0: राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की दोस्ती के तो क्या ही कहने। ये हमें ये सिखाती है कि जब बात देश की हो तो धर्म और जाति के ऊपर उठकर एकता सबसे बड़ी ताकत बनती है। क्या कहते हैं निखिल?
1: बिल्कुल मानसी, आज लगभग एक सदी बाद भी काकोरी कांड सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी का हर सांस उन अनगिनत बलिदानों की देन है जिन्होंने अपने आज के हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया।
0: तो आइए इस अगस्त हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहराएंगे, बल्कि उन वीर क्रांतिकारियों के साहस, एकता और देशभक्ति को भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे।
1: इसी प्रेरणादायक विचार के साथ लेते हैं एक छोटा सा संगीत विराम। सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की भावना को और भी प्रगाढ़ कर देता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: देखिए वीनस बहन, सावन के त्यौहार चल रहा है। सावन अपने आप में एक त्यौहार है और सावन में आते भी बहुत सारे त्यौहार हैं। तीज का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और जब सावन आता है तो सबसे अच्छा होता है कि सुहावना मौसम हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में भी हम सुनवाएंगे सावन गीत, और सबसे पहले शुरू करते हैं राज रानी वर्मा की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये सावन का गीत राज रानी वर्मा की आवाज़ में। और क्योंकि बात हम कर रहे हैं सावन की यानी कि बरसात की फुहारों की, और इतना खुशी का माहौल हो जाता है, सहेलियां बहनें सब तीज त्यौहार पे मिलने के लिए आती हैं, और जी बगीचे में जो झूला डालते हैं तो फिर तो कहाँ रुकने वाली है हमारी
1: बिल्कुल सहेलियां। झूला झूलने की परंपरा एक परंपरा ही नहीं है बल्कि आपस में मिलके अठखेलियां करना, सखियों का मिलना, हंसना, खिलखिलाना, एक बार
0: और
1: फिर
0: नाचना गाना,
1: बिल्कुल बचपन जिंदा हो जाता है।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा, सावन का आ गया तो मतलब अंदर से ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो हम सुनते हैं अगला एक और गीत, बहुत ही सुंदर सा सावन से जुड़ा।

अभी आप सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज़ में ये सावन गीत, और झूला पे भीले भीगे चुनरी, और आज तो सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। वही विनस बहन, मेरी भी चुनरी भीग गई थी जब मैं आई थी, और तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। और अब सुनते हैं यमुना देवी की आवाज़ में अगला लोकगीत, जिसमें कि वो मेहंदी की फरमाइश कर रही हैं।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं सावन के गीत, और सावन के गीत आया है तो साथ में झूले भी आ गए, फिर हमने मेहंदी भी लगा ली, और इसी तरह से हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। सावन का एक और गीत सुनाते हैं आपको, कलाकार रहेंगे तेजवीर विदुड़ी से, सुनिए ये गीत।

0: तेजवीर बुजुर्ग के गाए हुए इस सावन गीत के साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। 5:30 होने को हैं, लीजिए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
3: सिमरन सारवान।
2: और आज क्या है खास, सबसे पहले वो जान लेते हैं। और चेस की बात करें तो सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब भारत के नाम हो गया है, और ये एक शानदार उपलब्धि है। इसके अलावा कोरियन मास्टर्स में भी आज के मुकाबलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, महिला एकल के मुकाबलों में। और इसके अलावा बात करें तो वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट के फिक्स्चर्स की घोषणा हो चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अंडर 20 एथलेटिक्स में दूसरे दिन और आज तीसरे दिन के मुकाबलों की अपडेट आज कार्यक्रम के दौरान आपको दी जाएगी। साथ ही साथ भारत और सिंगापुर के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबलों पर रिपोर्ट आपको सुनाई जाएगी, और डूरंड कप में कौन से मुकाबले खेले जा रहे हैं और कौन से कल खेले जा चुके हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। और DPL में कल के मुकाबले और आज के मुकाबलों की रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे, और साथ ही साथ FIH जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय जूनियर वुमेन्स टीम की घोषणा हो चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेस में, जो किताब जो भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने अपने नाम किया है उस पर ये खास रिपोर्ट।
3: भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुई में खेले गए ग्रैंड चेस टूर के सेंट लुई रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। महज 20 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और शुरुआत से ही अंक तालिका में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। खिताब जीतने के लिए प्रज्ञानंदा को आखिरी राउंड तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। टूर्नामेंट के दूसरे अंतिम राउंड में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के जोवखेश सिंदारोव से हुआ, दोनों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। इस नतीजे के बाद प्रज्ञानंदा ने एक राउंड बाकी रहते ही टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रज्ञानंदा ने पूरे टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहने वाले सिंदारोव से 1.5 अंक की बढ़त के साथ वो चैंपियन बने। शुरुआत से ही प्रज्ञानंदा शानदार लय में नजर आए। रैपिड और ब्लिट्ज दोनों फॉर्मेट में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी बढ़त को कायम रखा। टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा उनकी स्थिति और मजबूत होती गई। यही वजह रही कि आखिरी राउंड से पहले ही उनका खिताब पक्का हो गया था और अंतिम मुकाबले का नतीजा उनके चैंपियन बनने पर कोई असर नहीं डाल सका। और अगर प्रज्ञानंदा के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो ये उनकी इस साल की एक और बड़ी सफलता है। इससे पहले जून 2026 में उन्होंने नॉर्वे चेस का खिताब भी अपने नाम किया था। तो चेस की दुनिया में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हो चुकी है। इस खिताबी जीत के बाद आर प्रज्ञानंदा ने क्या कुछ कहा अपनी जीत को लेकर, आइए सुनते हैं।
4: It's extremely special because I've never won like a Rapid or Blitz event. So this is my first like victory in Rapid and Blitz. Like I can't even think of anything, even in like age category events or something. So this is definitely huge. And also to get it in such a important stage, because taking into account the GCT finals is also important. So yeah, it came at the right moment. Till the last game, it was not clear because Javakir was playing really well. He was chasing me like crazy, and I was trying to run away, but he was also winning games.

0: demand, and yeah, the crucial one was with him at the end when some of the spawn game ended up to be a draw and managed to get through. But I mean, till the end, it was not all clear. No, I think it's great to have someone with you during tournaments, and especially if it's someone from the family, it's great. Like I usually have my mother here, but this time she had some work, so my sister was here. She's also going to play the Kainz Cup, so it's made sense. And yeah, it's good to have someone that also understands chess. Yeah, like you, when you make some mistakes, you can also like go back and basically like it's much easier to talk about the game. So it's great to have her here, and you know, the next tournament is coming. I think we will start thinking about it soon already. It's so much stressful to win these rapid and blitz events because you have to be focused throughout, and each of these games have so much of emotion. So yeah, I'm just super tired. So I just want to, you know, just rest and see.
1: और अब बात करते हैं कोरिया मास्टर्स की, जिसमें आज के मुकाबलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भारत की अश्मिता चलिया और रक्षिता रामराज ने आज आसन यी सुन यिन जिम्नेजियम में खेले गए कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सुनिश्चित कर दिया कि इस स्पर्धा में महिला एकल फाइनल में भारत की एक खिलाड़ी ज़रूर पहुंचेगी। और विश्व रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज अश्मिता चलिहा ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की विश्व नंबर 22 हिना अकेची को 1 घंटे 3 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 20-22 से 21-15 21-19 से हराया। वहीं विश्व रैंकिंग में 49वें स्थान पर मौजूद रश्मिता रामराज ने एक गेम के पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए अपने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त विश्व नंबर 30 तन्वी शर्मा को 18-21 21-19 21-18 से मात दी। यह मुकाबला 61 मिनट तक चला। इन दोनों जीतों के साथ अब कल होने वाले सेमीफाइनल में अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज आमने सामने होंगी। इससे यह तय होता है कि कोरिया मास्टर 2026 में महिला एकल फाइनल में भारत की एक खिलाड़ी जरूर खेलेगी। अश्मिता चलिहा इससे पहले हिना अकेची के खिलाफ अपना एकमात्र मुकाबला पिछले वर्ष मलेशिया सुपर 100 में हार चुकी थी और क्वार्टर फाइनल में भी शुरुआती गेम 20-22 से गंवाने के बाद उन पर हार का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि दूसरे गेम में अश्मिता ने लगातार 8 अंक जीतते हुए शानदार वापसी की और 21-15 से गेम अपने नाम पर निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे और अंतिम गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन निर्णायक क्षणों में अस्मिता ने संयम बनाए रखा और तीसरे मैच पॉइंट 21-19 से जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया। दूसरी ओर रक्षिता नामराज ने तन्वी शर्मा के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखा और उन्होंने लगातार चौथी बार तन्वी को हराया। 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने पहला गेम 21-18 से जीत लिया था और उन्होंने लगातार 6 अंक लेकर बढ़त बनाई थी, लेकिन रक्षिता ने दूसरे गेम में 21-19 से जीत दर्ज कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में बेहद रोमांचक रहा और अंत में रक्षिता ने बेहतर खेल दिखाते हुए 21-18 से जीत हासिल की और तीसरे मैच पॉइंट पर मुकाबला अपने नाम पर शानदार वापसी पूरी की। और रक्षिता की यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि तन्वी शर्मा शानदार फॉर्म में थी। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पिछले सप्ताह ताइपे ओपन का खिताब जीतकर अपने करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब हासिल करने के बाद कोरिया पहुंची थी। और बात करें अगर पुरुष युगल वर्ग की तो पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्ण प्रसाद गार्गा का कोरिया मास्टर्स 2026 में क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है और उनका यह मुकाबला मलेशिया की जोड़ी मैन वेई चोंग और सोई वुई यिक से होगा और यह दिन के बाद के सत्र में निर्धारित है। और अगर ये जोड़ी ये मुकाबला जीती है तो 8 तारीख को यानी कि शनिवार को सेमीफाइनल और 9 अगस्त को फाइनल खेला जाएगा।
2: महिला क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने महिला T20 एशिया कप 2026 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 28 अगस्त से 23 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पूरे एशिया की 8 टीमें इस खिताब के लिए मुकाबला करेंगी और एक बार फिर सभी की निगाहें भारतीय महिला टीम पर होंगी। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रहा है। टीम ने अब तक सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में इस बार भी भारतीय टीम चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर भारत के मैचों की बात करें तो टीम अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को थाईलैंड

के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 3 सितंबर को भारत का सामना हांगकांग से होगा। वहीं जिस मुकाबले का सभी क्रिकेट प्रेमियों को सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा वो होगा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला। दोनों टीमें 5 सितंबर को आमने सामने होंगी। भारत पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा रोमांच से भरपूर होता है और इस बार भी फैंस को एक कड़े मुकाबले की उम्मीद रहेगी। इस बार भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग शामिल है। वहीं ग्रुप बी में मौजूदा चैंपियन श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई की टीम है। इस ग्रुप में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि श्रीलंका अपने खिताब का बचाव करने उतरेगा, जबकि बांग्लादेश भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 8 टीमों को 2 मुकाबलों में बांटा गया है। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहला सेमीफाइनल 10 सितंबर को खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल 11 सितंबर को होगा। इसके बाद 13 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जहां नई चैंपियन टीम का फैसला होगा। अगर दूसरे देशों पर नजर डाले तो टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 28 अगस्त को थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को यूएई के खिलाफ करेगा। वहीं बांग्लादेश 31 अगस्त को इंडोनेशिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान टीम भारत के अलावा 1 सितंबर को थाईलैंड और 7 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ भी खेलेगी। दूसरी ओर श्रीलंका 2 सितंबर को इंडोनेशिया और 6 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस टूर्नामेंट की एक खास बात ये भी है कि सभी 15 मुकाबले जिनमें दोनों सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यानी किसी भी टीम को एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इससे खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी का समय मिलेगा और सभी मुकाबले एक ही मैदान पर होने से परिस्थितियों का भी लगभग अंदाजा सबको रहेगा। भारतीय टीम की बात करें तो भारत के सामने भी चुनौती आसान नहीं होगी। मौजूदा चैंपियन श्रीलंका पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करता रहा है। वहीं बांग्लादेश और थाईलैंड जैसी टीमें भी पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत दिखाई दी हैं। ऐसे में हर मुकाबला अहम होगा। देखना दिलचस्प है कि भारतीय महिला टीम एक बार फिर एशिया कप का ताज अपने नाम करके अपना दबदबा कायम रख पाती है या फिर इस बार कोई नई टीम इतिहास रचती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में दूसरे दिन की सबसे बड़ी खबर रही मोहम्मद अशफाक की, जिन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अपना ही अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाइनल में जगह बना ली है। भारत के 19 वर्षीय धावक ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन किया। हीट 5 में अशफाक ने 45.81 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अपना ही अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। अशफाक का पिछला रिकॉर्ड 46.05 सेकंड था जो उन्होंने इसी साल अप्रैल में बेंगलुरु में आयोजित अंडर 20 फेडरेशन कप में बनाया था। यानी इस मंच पर अशफाक ने अपने पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 400 मीटर में एक नई उपलब्धि हासिल की। इसके बाद सेमीफाइनल में भी अशफाक ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखी। सेमीफाइनल हीट 3 में उन्होंने 46.0 सेकंड का समय निकाला और तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस हीट में अमेरिका के क्विंसी विल्सन 45.02 सेकंड के समय के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका के किर्न रोमिजन 45.87 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अशफाक तीसरे स्थान पर रहे और फाइनल में पहुंचने में सफल हुए। यानी अशफाक के लिए ये दिन दो वजहों से खास रहा। पहला, उन्होंने अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और फिर सेमीफाइनल में प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। वहीं भारत के दूसरे धावक पीयूष राज पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्होंने हीट 6 में 47.78 सेकंड का समय निकाला और पांचवें स्थान पर रहे। अब बात करें पुरुषों की हाई जंप की तो भारत के बसंत ने फाइनल में जगह बनाकर भारत की उम्मीदें कायम रखी हैं। उन्होंने 2.14 मीटर की ऊंचाई पार की और ग्रुप ए के पांचवें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन का स्तर
2.21 मीटर था, लेकिन दोनों ग्रुप में कोई भी खिलाड़ी इस ऊंचाई को पार नहीं कर सका। वसंत अपने प्रदर्शन के आधार पर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। हालांकि ग्रुप के अम्बरीश फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्होंने ग्रुप बी में 2.05 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। अब बात करते हैं महिला डिस्कस थ्रो की, जहां भारत की

0: अमानत कम्बोज ने फाइनल में छठा स्थान हासिल किया। अमानत ने 53.24 मीटर का थ्रो किया जो उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो रहा। पदक भले ही उनके हाथ नहीं आया लेकिन विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना उनके लिए एक सकारात्मक नतीजा रहा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन की सू यिशिन ने जीता। उन्होंने 61.06 मीटर का थ्रो किया जो अंडर 20 स्तर पर उस समय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बात करते हैं महिला शॉटपुट की। भारत की अंशु फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 15.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। वो ग्रुप ए में 9वें और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर रही। अंशु फाइनल के कट ऑफ से सिर्फ 21 सेंटीमीटर पीछे रह गई। फाइनल में जगह बनाने वाली आखिरी खिलाड़ी पोलैंड की किंगा जाकोवस्का थी जिन्होंने 15.45 मीटर का थ्रो किया। बात करें महिला वर्ग में 400 मीटर बाधा दौड़ की तो भारत की तनु चौधरी ने अपनी हीट में 1:00.03 का समय निकाला और 5वें स्थान पर रही। वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। उनसे आगे ब्राजील की लुआना सिबेले सूसा रही जिन्होंने 59.50 का समय दर्ज किया और क्वालिफाई किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत के अमित कुमार भी आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने हीट में 54.01 का समय निकाला और अपनी हीट में आखिरी स्थान पर रहे। वहीं पुरुषों की ट्रिपल जंप में भारत के धनुष राज और पी रोयशन फाइनल में जगह नहीं बना सके। धनुष राज ने 14.71 मीटर और पी रोयशन ने 15.20 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। अब नजर डालते हैं प्रतियोगिता के दूसरे दिन की मेडल टेबल पर। मेडल टेबल में अमेरिका 3 स्वर्ण 1 रजत और कुल 4 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। केन्या 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि फ्रांस 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद ब्राजील, फिनलैंड, नाइजीरिया, चीन और युगांडा के खाते में 1-1 स्वर्ण पदक है। जमैका के पास 2 रजत पदक हैं, जबकि इथियोपिया के पास 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। चेकिया, इक्वाडोर, एस्टोनिया, ग्रीस और कोरिया के खाते में 1-1 रजत पदक है। दक्षिण अफ्रीका ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के खाते में 1-1 कांस्य पदक है। दूसरे दिन के बाद भारत के खाते में अभी कोई पदक नहीं है। हालांकि मोहम्मद अशफाक के 400 मीटर फाइनल में पहुंचने और बसंत के हाई जंप फाइनल में जगह बनाने के बाद भारत की पदक की उम्मीदें बनी हुई है।
1: और अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की, जहां कल 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। दिन का पहला मुकाबला गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में बोडोलैंड एफसी और एफसी 1 के बीच खेला गया और शुरुआती मैच में हार झेलने के बाद बोडोलैंड एफसी ने इस बार शानदार वापसी करते हुए एक तरफा अंदाज में 3-0 से जीत दर्ज की। टीम ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 3 बेहतरीन गोल दागे और इस जीत के साथ बोडोलैंड एफसी ने न केवल पूरे 3 अंक हासिल किए बल्कि क्वार्टर फाइनल की अपनी उम्मीदों को भी मजबूत कर लिया है। दूसरी ओर एफसी 1 की टीम पूरे मुकाबले में लय हासिल नहीं कर सकी और उसे लगातार दूसरे मैच में निराशा हाथ लगी। दिन का दूसरा मुकाबला शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थानीय प्रतिद्वंद्वी नोंगसे एसएस एंड सीसी और लांगसिंग एफसी के बीच खेला गया। शिलोंग डर्बी में दर्शकों को भरपूर रोमांच देखने को मिला। नोंगसे ने पहले हाफ में 2 गोल कर मजबूत बढ़त बना ली लेकिन लांगसिंग ने हार नहीं मानी और दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए लगातार 2 गोल दाग कर मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर समाप्त कर दिया। दोनों टीमों ने 1-1 अंक साझा किया और मुकाबले ने स्थानीय फुटबॉल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन भी किया। इन परिणामों के बाद बोडोलैंड एफसी ने अपने ग्रुप में क्वालिफिकेशन की दौड़ को और रोचक बना दिया है, जबकि शिलोंग डर्बी के ड्रॉ से दोनों टीमों की नॉकआउट की राह अब और चुनौतीपूर्ण हो गई है। डूरंड कप 2026 में हर मुकाबले के साथ प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जा रही है और आज खेले जा रहे अगर मुकाबलों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक मुकाबला जो अब इस वक्त खेला जा रहा है और इस मुकाबले में सपोर्टिंग क्लब दिल्ली और डिफेंडर्स एफसी के बीच ये मुकाबला है, जिसमें एससी दिल्ली 5 गोल दागकर आगे है और डिफेंडर्स एफसी ने अभी

एक्सीलेंस में खेले गए इस दूसरे फ्रेंडली मुकाबले में भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की। भारत की जीत के नायक रहे सुमित शर्मा ब्रह्मचारी मायूम, जिन्होंने मुकाबले के 5वें मिनट में गोल दागकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी बढ़त को अंत तक बनाए रखा और मुकाबला 1-0 से अपने नाम कर लिया। ये जीत भारतीय टीम के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दोनों फ्रेंडली मुकाबले आने वाले एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी का हिस्सा हैं। भारत की अंडर 20 टीम AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर्स की तैयारी कर रही है। ये क्वालिफायर मुकाबले 31 अगस्त से 6 सितंबर तक उज़्बेकिस्तान में खेले जाएंगे। सिंगापुर के खिलाफ भारत का ये दूसरा मुकाबला था। इससे पहले सोमवार को खेले गए पहले फ्रेंडली मैच में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की थी। पहले मुकाबले में भारत की ओर से ऋषि सिंह निंगथोकोंग जाम ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में गोल किया था। इसके बाद सिंगा मायूम शमी ने 63वें मिनट में भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया था। मैच के 83वें मिनट में सिंगापुर की टीम से एक ऑन गोल हुआ और भारत ने मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर लिया था। यानी दोनों मुकाबलों में भारत ने सिंगापुर के खिलाफ कुल 4 गोल किए और एक भी गोल नहीं खाया। ये टीम की तैयारी और डिफेंस दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। इन 15 खिलाड़ियों में पंजाब FC के 8, बेंगलुरु FC के 6 और FC गोवा का 1 खिलाड़ी शामिल है। जापान टूर पूरा होने के बाद ये खिलाड़ी अगले सप्ताह राष्ट्रीय टीम के कैंप में वापस जुड़ जाएंगे। इसके बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन का एक बार फिर मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के आधार पर AFC अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए भारत की प्रारंभिक टीम को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल सिंगापुर के खिलाफ लगातार 2 जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। पहले मुकाबले में 3 गोल और दूसरे मुकाबले में 1-0 की जीत के साथ टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर दूसरे मैच में शुरुआती 5वें मिनट में गोल करने के बाद भारतीय टीम ने अपनी बढ़त को बनाए रखा, जो दबाव में भी टीम के संयम को दिखाता है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सितंबर के अंत में शुरू होने वाले पहले फीफा आसियान कप और 3 अक्टूबर को कोलकाता में ब्राजील के खिलाफ होने वाले मैत्री मैच के लिए 2 अलग टीमें उतारेगा। महासंघ ने गुरुवार को कार्यकारी समिति की बैठक के बाद यह ऐलान किया। फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विंडो में 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आसियान कप शुरू किया है। इसकी तारीखें ब्राजील के खिलाफ मैत्री मैच से टकरा रही हैं और महासंघ ने यह भी कहा है कि भारत ब्राजील से मैत्री मैच खेलेगा और आसियान कप में भाग लेगा। महासंघ औपचारिक रूप से फीफा को सूचित करेगा कि वो दोनों अलग अलग मैच अलग अलग टीम उतारें।

अब रुख करते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का, जहां रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। कल की बात करें, कल के मुकाबलों की बात करें, तो दिन के पहले मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 39 रन से हराया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और निर्धारित ओवरों में लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी। इस जीत के साथ आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दिन के दूसरे मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 के न्यू दिल्ली टाइगर्स को 27 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पुरानी दिल्ली 6 के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से खेलते हुए प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यू दिल्ली टाइगर्स की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मध्यक्रम दबाव में बिखर गया और टीम जीत से दूर रह गई। पुरानी दिल्ली 6 के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में सटीक गेंदबाजी कर मैच अपने नाम कर लिया और इसी के साथ 6 अगस्त के मुकाबलों में आउटर दिल्ली वॉरियर्स और पुरानी दिल्ली 6 ने जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया है। अब सभी की नज़र अगले मुकाबलों पर होंगी और अगले यानी कि आज खेले जाने वाले अगर मुकाबलों पर नज़र डालते हैं तो आज का मुकाबला ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी और ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम इस समय

0: संतुलित नजर आ रही है और इसके बल्लेबाज अच्छी लय में हैं और गेंदबाजों ने भी अच्छे शुरुआती मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। टीम चाहेगी कि वह जीत की लय को बरकरार रखते हुए अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करे। दूसरी ओर वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा और टीम को अपने बल्लेबाजों से बड़ी साझेदारियों और गेंदबाजों से अनुशासित प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यदि लायंस शुरुआती विकेट निकालने में सफल रहती है तो मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है और आज के मैच पर खासा निगाहें रहेंगी दर्शकों की और बल्लेबाजी और गेंदबाजी का लुत्फ तो दर्शक उठाना चाहेंगे, लेकिन दिल्ली का मौसम थोड़ा सा आज मिजाज जो है तो आज मौसम का मतलब कि बरसात का दिन है, तो देखने वाली बात यह है कि आज के मुकाबलों का क्या हाल रहता है और आज के मुकाबलों का किस तरीके से उन मुकाबलों को या तो आगे किया जाता है या फिर मुकाबलों को ड्रॉ किया जाता है, वो देखने वाली बात रहेगी। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की।
1: बात करें अगर हॉकी की तो हॉकी इंडिया ने गुरुवार को AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है, जो 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक चीन के मौकी में आयोजित होने वाला है। इस टीम में 18 खिलाड़ी और 2 वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल हैं और इसका नेतृत्व मिडफील्डर खेदयम शिलेमा चानू करेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में टीम का कार्यभार संभालने वाले नवनियुक्त कोच टिम वाइट के मार्गदर्शन में तैयारी की और एक लंबी अवधि पूरी की है। महाद्वीपीय टूर्नामेंट की इस तैयारी के तहत एक विस्तारित टीम हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के सफल एक्सपोजर टूर से लौटी है। इस टूर ने खिलाड़ियों को बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय मैच का अनुभव और महत्वपूर्ण सीख भी दी है, जिससे जूनियर एशिया कप से पहले उनकी तैयारियों को मजबूती मिलेगी। ये टूर्नामेंट महाद्वीप की अग्रणी जूनियर टीमों को एक साथ लाएगा और एशियाई हॉकी प्रतिभाओं की अगली पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। मैचों का कार्यक्रम और पूल की संरचना टूर्नामेंट शुरू होने के करीब घोषित की जाएगी। अगर उनके दस्ते की बात करें तो साथ गोलकीपर के रूप में है निधि एंगल हर्षारानी मेंस, डिफेंडर के रूप में है पूजा साहू, सुप्रिया, पूजा मलिक, पार्वती टोपनो और मधु, मिडफील्डर में खेदयम शिलोमा चानू जो कि कैप्टन है, तनुजा टोपो, बिनीमा धाम, रोशनी आइंद, गीता यादव हैं, और वहीं फॉरवर्ड में लाल रिनपुई, पूर्णिमा यादव, सुखवीर कौर, कृष्णा शर्मा, सोनिका चंद्रकांत माने और मधु सिदार हैं, और वैकल्पिक खिलाड़ी के तौर पर एफ लाल बियास यिकसामी और तनुश्री दिनेश कड्डू के रूप में खिलाड़ी भारत के पास मौजूद हैं।
0: जैसे कि वुमेन्स एशिया कप के फिक्स्चर्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं और साथ ही साथ टीम की घोषणा भी पहले की ही जा चुकी थी। और अगर वुमेन्स एशिया कप के शुरुआती दौर की बात करें तो 2004 में शुरुआत हुई थी और पहले चरण 4 चरण वनडे प्रारूप में खेले गए थे जिन्हें भारत ने जीता था, और 2012 से यह प्रतियोगिता T20 प्रारूप में आयोजित की जा रही है और भारत ने 2012 और 16 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जबकि 2018 में बांग्लादेश ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की और 2022 में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार वुमेन्स एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2024 में दोनों टीमें फिर से आमने सामने थी, लेकिन इस बार श्रीलंका ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। और क्रिकेट की ही बात हम कर रहे हैं तो फिर बात कर लेते हैं एशिया कप के बाद नजरें रहेंगी ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी की और उसकी तैयारी को लेकर साउथ अफ्रीका का दौरा जो है वो तय किया गया है और इस दौरे में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस दौरे में 3 अतिरिक्त T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को शामिल किया है। अब दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर 3 प्रारूपों में 7 मुकाबले होंगे। इस दौरे में 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य अगले वर्ष होने वाली पहली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करना है और यह टूर्नामेंट फरवरी 2027 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और साउथ अफ्रीका अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना चाहेगी। और भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका दौरा जो है 9 दिसंबर को एकमात्र टेस्ट मैच से प्रारंभ होगा और यह मैच गकेरबहा में खेला जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर से 3 वनडे मैचों की श्रृंखला शुरू होगी। वनडे मैच की श्रृंखला के बाद 26 दिसंबर से T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा और इस प्रकार दौरे का अंतिम मैच 30 दिसंबर को होगा।
1: साथ ही साथ एक और भारत के लिए खुशखबरी की बात आपको बता देते हैं। भारत के सूरज कुमार चंद ने 2026 FISU विश्व यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन कर लिया है और इस रोमांचक खेल में उन्होंने हंगरी के बेनेडिक ताकाच को 2-3, 2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। तो ये भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि भारत के लिए दर्ज हो चुकी है।
0: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
1: और सिमरन सारवान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
3: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
4: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
5: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6:20 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26 पारितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीयावासे एनडीए संयुतौ नव सम्मिलितैः विविध सदस्यैः सह मिलितवान्। अनेन संसदि अनुक्षणं जायमानेषु व्यवधानेषु गहनचिन्ता प्रकटीकृता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने 25th राष्ट्रीय हस्त निर्मित तंतुकला पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अद्य भारतस्य उत्तर पश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतस्य ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानन्दः अमेरिका देशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च आसन नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकल वर्गे उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अलभिताम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26 पारितम्। अद्य लोकसभया एतद् विधेयकम् अनुमोदितम्। राज्यसभया एतद् गत सोमवासरे एव पारितम् आसीत्।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयकस्य पारणानन्तरं पीठासीनाधिकारी दिलीप सैकिया विरोधं कुर्वद्भ्यः सदस्येभ्यः सदनस्य कार्याचरणं सुचारुरूपेण संचालने सहयोगं कर्तुम् आह्वानम् अकरोत्। व्यवधानानां विषये असौ असन्तोषं प्रकटयन् अवदत् यत् एतादृशः विरोधः देशस्य लोकतान्त्रिकव्यवस्थायै न शोभते। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अपि विपक्षस्य आचरण विषये चिन्तां प्रकटयन् अवदत् यत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः संसदीय सत्रस्य अवधौ नियमित रूपेण संसदि उपस्थितः भवति तथा चिररात्रिं यावत् सदने एव तिष्ठति। नैरन्तर्येण कोलाहल कारणेन पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः 11 स्थगितम्। ततः पूर्वं प्रातः 11 सदनस्य कार्यारम्भे सति लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः भारत छोड़ो आन्दोलन इत्येतस्य स्वतंत्रता सेनानिभ्यः अत दिवंगतेभ्यः च श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। महात्मनः गान्धिनः ऐतिहासिकं करो या मरो इत्याह्वानं स्मरन् असौ तम् आन्दोलनं राष्ट्रियैक्यस्य साहसस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च चिरस्थायि प्रतीकम् इति प्रतिपादितवान्। तदनन्तरं लोकसभाध्यक्षः प्रश्नकालम् आरब्धुं प्रयत्नम् अकरोत् किन्तु विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षककृतकार्यस्य विषयः उत्थापितः। विपक्षसदस्याः अस्मिन् विषये केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यं प्रार्थयन्तः आसन्। छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षकैः कृतकार्याणि नीट सम्बद्ध विभिन्न विषयं च समधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलात् राज्यसभायाः कार्याचरणम् अपि आदिवसं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे 12 प्रथमस्थगनानन्तरं सदनस्य कार्याचरणं पुनः समारब्धं। तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् विपक्षस्य कोलाहलमध्ये प्रश्नकालम् आरब्धवान्। अस्मिन् समये केन्द्रीयरेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम,
0: राम। देखिए वीनस बहन, ग्राम संसार कार्यक्रम में हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास से ही जुड़ा है, क्योंकि कृषि के बाद यह क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध क्षेत्रीय क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार देने वाला है, जो लाखों बुनकरों और श्रमिकों की जीविका का आधार है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें महिलाएँ भी जुड़ी हैं और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वावलंबी बन पाई हैं इसी के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज ये खास दिन हमारे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हम समर्पित करते हैं। भारत की हथकरघा परंपरा की जड़ें जो इतिहास से दूर तक फैली हुई हैं, कताई बुनाई और इसका उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत में, जो कि हमारे बहुत ही हमारे सबके प्रचलित ग्रंथ हैं, उनमें भी मिलता है। इसमें जितना ज़्यादा साहित्य के बारे में और कपास, खास करके कपास और रेशम की जो गुणवत्ता है और उससे बनी हुई जितनी भी हाथ की बनी चीज़ें, उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान किया हुआ है प्रियंका बहन। और सदियों से ये बुनाई जो है कला और तकनीकी तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अभी तक चली आ रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, और सरकार का भी यही नारा है कि विकास के साथ साथ हम विरासत को भी संभाल के रखें। ये जो हमारे परंपरा से जुड़े हुए जो हमारे कारीगर हैं, उनको कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए सरस मेले लगाए जाते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से राष्ट्रीय बाज़ार भी उपलब्ध कराया जाता है। और अब तो हमारे जो लोकल फॉर वोकल जैसी जो स्कीमें चल रही हैं, उनका भी मुख्य ध्येय यही है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनसे बनी हुई हाथ की जो चीज़ें, उनकी डिमांड इतनी अधिक है क्योंकि बहुत ही टिकाऊ होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, उन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाया जा सके।
1: और साथ में ये भी है कि इस दिवस के साथ ये भी है कि जिसने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए ना दिया जाए, और जितने भी हमारी जो हमारे हाथ की बनी चीज़ें, हमारी स्वदेशी चीज़ों को आत्मनिर्भरता बनाया जाए और उनको उतना प्रोत्साहित किया जाए कि अवसर भारत की बुनाई परंपराओं को उत्सव के रूप में हर साल मनाया जाए।
0: बिल्कुल, और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि भाई तीज त्योहारों पे हम जो है हाथ से बनी हुई चीज़ों को खरीदें, ताकि हमारे जो कारीगर हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। इसमें खूबसूरत चीज़ों की अगर बात करें तो बनारसी साड़ी है, कांजीवरम है, पैठनी साड़ियां हैं, खादी के कुर्ते हैं, चादरें हैं, ऊनी वस्त्र हैं, सजावटी दरियां हैं, बहुत सारे ऐसे हाथ से बने हुए सामान हैं जो कि कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। तो अधिक से अधिक आप ये सामान खरीदें और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और अगर बात करें मौसम की, तो भाई सुबह से ही झमाझम हो रखी है, सावन की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसी अवसर को देखते हुए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक सावन गीत, और कलाकार होंगी राज रानी वर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे राजरानी वर्मा की आवाज़ में ये सावन गीत। और भाई बात करें सावन का महीना, बरसात का मौसम, जहाँ एक तरफ सुहावना मौसम हो जाता है वहीं दूसरी तरफ जगह जगह जल भराव हो जाता है। और कई बार तो इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होता है और त्वचा से संबंधित रोग इस मौसम में अधिकतर देखे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ख़ास बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, एक है बहुत ही काम की बातचीत लेके आए हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार हम कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। तो विषय है मानसून में त्वचा रोग और उसके बचाव, और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे आज की जो जानकारी देंगे डॉक्टर सीमा, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं।
2: नमस्कार। वर्षा ऋतु जहां हरियाली और ठंडक लाती है, वहीं नमी, पसीना और भीगने की परेशानियां भी साथ लाती है। ऐसे में दाद, खुजली, फंगल संक्रमण, एलर्जी और बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी से इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और बारिश के मौसम में आने वाली इन्हीं समस्याओं के निदान और उनके समाधान पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा रानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सीमा, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल तो यही है डॉक्टर कि बारिश के मौसम में त्वचा रोग आखिर बढ़ते क्यों हैं और सबसे आम समस्याएं कौन सी होती हैं जो हम देख सकते हैं?
3: सबसे पहले बारिश के समय जो वातावरण में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कुछ फंगल है, कुछ वायरल है, इनके होने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली स्किन में, क्योंकि इनको ग्रोथ होने के चांसेस मिल जाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनसे आपको त्वचा में फोड़े फुंसी होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को है ना ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है, तो इस वजह से ये सब परेशानी बारिश में देखी जाती है।
2: तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये समस्याएं तो हैं जो हमें दिखती हैं, इसमें कौन से लक्षण हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको वो दिखे अपने स्किन के किसी भी हिस्से पर, अपनी त्वचा के किसी भी हिस्से पर, तो उसे अनदेखा ना करें, तुरंत उसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह लें, या फिर जो आप बताएंगे कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको आप घर पर ही किसी रेमेडी से ठीक कर सकते हैं?
3: पहली तो ये है कि कुछ समस्याएं जो होती है जो गंभीर नहीं होती हैं, जैसे जो गर्मी में आमतौर पे देखा जाता है जिसको प्रिकली हीट कहते हैं, है ना, जिसमें रैशेस हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तेज गर्मी और पसीने की वजह से, तो उस वजह से जो हीट रैशेस होते हैं जो बच्चों में ज्यादा होते हैं या बुजुर्गों में, हाँ, तो उसको आप घर पे भी मैनेज कर सकते हो। आप थोड़े कूल वाले, जैसे एसी है अगर, कूलर है तो वहां रह सकते हो, नहीं तो ठंडे पानी की सेकाई कर सकते हो, बर्फ की सेकाई हम बोलते हैं। और अगर ज्यादा खुजली वगैरह होती है तो हम बोलते हैं कि आपको अगर एंटी एलर्जिक टैबलेट है या सिरप है बच्चों के लिए तो आप वो ले सकते हो।
2: और जो टैल्कम इस्तेमाल करते हैं,
3: टैल्कम से ब्लॉकेज होने के ज्यादा हो चांसेस होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट डक्ट्स होते हैं। बट जब आपको लगे कि हीट रैसेस के साथ साथ जो मवाद वाले फोड़े फुंसी भी आ रहे हैं, फिर आपको तो डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन शो कर रहा है। अच्छा। है ना, तो उस कंडीशन में आपको जो भी आपके कंसल्टेंट, जो भी फिजिशियन है, उससे आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ठीक है। लेकिन मामूली सा जो हीट रैश होता है या फिर जैसे होता है ना बच्चों में खुजली वगैरह, तो उसमें आपको घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि जैसे फंगल इन्फेक्शन मैंने बताया, तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे बॉडी का जो फोल्ड है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है, तो उसमें होता है कि इचिंग से स्टार्ट होती है। तो अगर मामूली सी इचिंग है, कोई रैश नहीं है, जैसे होता है ना कई बार टैल्कम पाउडर वगैरह स्प्रे कर लेते हैं ताकि पसीना कम आए, लेकिन जब आपको रैश दिखने लगे तो आप चार करते हो खुद से, या फिर जाकर के आप केमिस्ट से दवाई लेते हो, वो नहीं करना है। क्योंकि कई बार होता है ना कि फंगल इन्फेक्शन अगर इनिशियल स्टेज पे आप रोक दोगे उसको, तो एक तो बॉडी के दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड नहीं करेगा, प्लस ये भी है कि आप दूसरों को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो।
2: जी, अगला सवाल मेरा यही था कि कई बार देखा गया है और ऐसा अक्सर हमारे घरों में हम देखते हैं कि कोई स्किन का कुछ भी इन्फेक्शन है या किसी तरह की समस्या दिख रही है, तो हम एक कोई ऑइंटमेंट या ओवर द काउंटर कुछ एक दवा लेकर, पर बाद में पता चलता है कि उसमें स्टेरॉइड्स थे जो उसने सप्रेस तो कर दिया पर उसको क्योर नहीं किया, तो उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे?
3: जैसे मैंने भी बताया कि जो फोल्ड होते हैं बॉडी के फोल्ड पे आमतौर पे गर्मी में या बरसात में, जैसे रेनी सीजन में, तो उसमें इचिंग वाली टेंडेंसी बढ़ जाती है, बट इस इचिंग का कॉज केवल फंगल नहीं हो सकता, हो सकता बैक्टीरिया, बिकॉज हमारी बॉडी पे सरफेस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि केवल इचिंग हो रही है और थोड़ी सी रेडनेस है या स्किन में दिक्कत आ रही है, स्किन में कोई ऐसे लीजन्स आ रहे हैं जैसे स्केलिंग हो रही है, छिलका निकल रहा है, रेडनेस है, कुछ दाने आ गए हैं, तो आप कंसल्ट जरूर कर लो, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स है उसमें एक तो बहुत सारे हैं जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, जैसे आपने बताया स्टीरॉयड, तो उसमें बहुत सारे एंटीफंगल भी रहते हैं, स्टीरॉयड भी रहते हैं, एंटीबायोटिक भी रहते हैं, आई डोंट नो उसका रैशनल क्या है, बट वो यूजुअली दे देते हैं पेशेंट को, उससे क्या होता है टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाती है क्योंकि इचिंग को वो दबा देता है, बट जो मेन ऑर्गेनिज्म में उसको तो आप नहीं क्योर कर पा रहे हो, तो वो धीरे धीरे करके स्प्रेड होता रहेगा, पेशेंट क्या है यूज्ड टू हो जाएंगे, जब भी इचिंग होगी वो उसको लगा लेगा, उसे लगेगा नहीं इसे ठीक हो गया, इस तरह से एक दो महीने ऐसे निकल जाते हैं, कई बार तो पेशेंट उसको लगाते लगाते 6 महीने बाद भी आते हैं, और उससे जो दिक्कत होती है वो दूसरी समस्या हो जाती है, जैसे उनमें स्ट्राइया हो जाते हैं क्योंकि स्किन बहुत थिन होती है वहां पे, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है स्टीरॉयड अब्यूज जो होते हैं ना बहुत सारी स्किन के चेंजेस हो जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किन जो होती है बहुत पतली हो जाती है, जो नसें होती है वो दिखने लगेगी, कुछ लोगों को होता है रेडनेस काफी बढ़ जाती है, छोटे छोटे दाने जो पस्टुल्स होते हैं ना पस वाले दाने वो आ जाते हैं, तो अगर आप जैसे स्किन जो डेलिकेट है जैसे फेस पे आप लगा रहे हो ग्रॉइन में लगा रहे हो, तो वो जो होता है स्टीरॉयड इंड्यूस जो भी आपकी ट्रोफी हो रही है जो स्किन चेंजेस है वो और वर्सन हो जाती है, जो आपका इन्फेक्शन था वो तो आपका वहीं रह गया लेकिन उस दवाई की वजह से दूसरे आपके साइड इफेक्ट आ गए, तो वो चीज ना करें और लंबे टाइम के लिए तो बिल्कुल ही ना करें, जो कि अभी का कंसेप्ट है कि नहीं इचिंग हो रही है मामूली सी इचिंग है हम दवाई लेते हैं ठीक हो,

0: जाता है,
1: जी
0: कुछ है नहीं, हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, बट वो आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना उस चीज़ को।
1: ये किसी से जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल अभी दिमाग में आ रहा है, कई बार हमने देखा है घरेलू महिलाएं या फिर कोई भी महिला जिसमें जैसे ग्रोइन एरिया की अभी आपने बात की, तो पसीने के साथ साथ एक पर्टिकुलर तरह की कुछ इचिंग शुरू हुई, और उस इचिंग को ट्रीट करने के लिए कभी वो टैल्कम का इस्तेमाल करती हैं, कभी डिटॉल का या कुछ इस तरह के एंटी एलर्जिक एंटीसेप्टिक लिक्विड का, तो आपकी नज़र में कितना सही या गलत है और इसका सही तरीका क्या है, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए?
0: पहले तो आपने बताया जो स्टीरॉयड इंड्यूस जो भी आपके चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपने बताया डिटॉल या कुछ और है, बीटाडीन या कुछ और भी सॉल्वेंट है लोग यूज़ करते हैं कि चलो उस एरिया को हाइजीन हमारा मेंटेन रहेगा, लेकिन उसके यूज़ से क्या होता है कि वो इरिटेंट हो जाती है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है जो स्किन को रेडनेस या फिर इन्फ्लेम्ड इचिंग वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपकी स्किन की कंडीशन है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, आपकी त्वचा में जलन हो सकता है, इचिंग के साथ साथ पेन काफ़ी होगा, तो वो कंडीशन होती है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट के यूज से ज़्यादा होता है। और फोल्ड ऐसा एरिया है कि कुछ भी आप लगाओगे तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिटेंट हो जाता है, क्योंकि वो फोल्ड का एरिया, इसलिए हम मना करते हैं कि आप जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करते हो उसको ना करो, सिंपल पानी से आप धो लो और उसको ड्राई रखो। उस एरिया को आपने लगातार पानी से भी लगातार धोते रहे या सॉल्वेंट से, तो उस एरिया में धीरे धीरे करके जो स्किन बैरियर है उसका डिसरप्शन होने लगेगा, नॉर्मल जो बैरियर है वो ठीक नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा, तो फिर आपकी इरिटेंट की पोटेंसी बढ़ जाती है, कुछ भी आपका एलर्जेंस रहेगा वो पेनिट्रेट होगा, फिर वहां जाकर के वो इन्फ्लेमेशन देगा, तो वो इन्फ्लेमेटरी स्किन जो कंडीशन हो उसको और एग्रेवेट करेगा, क्योंकि आप बस उसको क्लीन रखो, नॉर्मल पानी नॉर्मल साबुन जो हम यूज करते हैं उससे आप क्लीन रखो,
1: और उसको ड्राई रखना भी,
0: ड्राई रखना है। अगर पसीना ज्यादा आता है तो हम ड्राई रखने बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी को होता है कि पसीना बहुत ज्यादा उसकी वजह से उनको इचिंग होती है, कहते हैं उस कंडीशन में कि तब हम एडवाइस करते हैं कि कुछ एंटीफंगल पाउडर आते हैं तब यूज कर सकते हो आप, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं यूज कर सकते हो।
1: इसी से जुड़ा सवाल है अगला कि अभी हमने महिलाओं की बात की, ऐसे ही बच्चे और बुजुर्गों दोनों में कुछ पर्टिकुलर तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स कॉमन जनरली देखी जाती हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में, तो उन समस्याओं के बारे में एक जनरल एक अवेयरनेस के लिए आप अगर कुछ बताना चाहें।
0: देखो बच्चों की स्किन डेलिकेट होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या न्यूबॉर्न हो इन्फेंट हो, है ना, उनकी स्किन डेलिकेट होती है, छोटे बच्चों में कई बार होती है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे उनको फ्रंकल हो रखा है, पस वाले दाने हो रहे हैं, वो ज़्यादा देखा गया इस मौसम में। और दूसरी चीज़ होती है कि चूंकि इस मौसम में इंसेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी ब्रीडिंग टाइम होता है इनका, तो उस वजह से जो मॉस्किटोज का ब्रीडिंग टाइम होता है तो एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, तो पैपुलर रेटिकेरिया बोलते हैं, छोटे छोटे दाने होंगे और यूजली एक्सेसिबल साइट पे होगा, यूजली जो एक्सपोज्ड एरिया बॉडी का हाथ पैर है, जैसे बच्चे खेलने जाते हैं तो हाफ पैंट पहन लिया हाफ टी शर्ट पहन लिया, तो जो एक्सेसिबल पार्ट होते हैं बॉडी के उसमें ज्यादा देखा गया, तो ये भी एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होती है जो मॉस्किटो बाइट या जो भी इंसेक्ट बाइट की वजह से होती है। एक चीज और होती है, जैसे आपने कहा देखा होगा कई बार लोगों को कि नहीं हमने सुबह उठा तो मेरे स्किन में देखा रेडनेस हो गई है और थोड़े से बीच में येलो हो गई है स्किन, चारों तरफ से रेड हो गई है, तो ये भी एक टाइप का इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो इंसेक्ट के काटने की वजह से होती है। तो यूजुअली हम इसलिए बोलते हैं कि आप मच्छरदानी लगाइए और जो लाइट है लाइट के अंडर मत सोइए, क्योंकि ये लाइट से कीड़े जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। एक चीज और परेशानी होती है जिसको बोलते हैं स्वेट डर्मेटाइटिस, स्वेट की वजह से डर्मेटाइटिस होता है, तो उसमें जो स्किन होती है वो जैसे लगती है आपकी बर्न हो गई है, वो भी एक कंडीशन है जो इस मौसम में देखा जाता है गर्मी और खासकर रेनी सीजन में।
1: और अभी आपने मॉस्किटोज का जिक्र किया बच्चों में खासकर, तो आजकल आप देखिए एक प्रचलन में है जो हम स्किन पे मॉस्किटो रिपेलेंट का एप्लीकेशन करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो आपकी नज़र में वो कितना सही या गलत है और क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है?
0: देखो एफिकेसी सबकी धीरे धीरे कम हो जाती है, बहुत बड़े वाइड एरिया पे नहीं लगा सकते हो, कुछ एरिया जैसे जो आपका एक्सपोज रहते हैं तो हम बोलते हैं कि आप लगा सकते हो, बट वो ये है कि वो लंबे टाइम के लिए वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। और कई बार होता है कि बच्चों की स्किन भी सेंसिटिव होती
1: जी,
0: है
1: वही पूछना
0: तो उसकी वजह से भी कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्दर उनको इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो, तो ये भी आपको देखना है, ऐसा नहीं हो कि आपने लिया रेपेलेंट पूरे पैर में लगा दिया, पर्टिकुलर थोड़े एरिया में आप लगा के देखो जो एक्सपोज पार्ट है, अगर बच्चे को सूट कर रहा लगाओ, लेकिन वही है कि वो पूरे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करता है इफेक्ट। आप सबसे अच्छा है कि उनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दीजिए, है ना, फुल स्लीव्स की जो आते हैं कपड़े वो आप डाल के भेजो, और अगर रात में अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो हम तो यही कहते हैं आप मॉस्किटो नेट जो सबसे सस्ता भी है और अच्छा उपाय
1: मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और एक सवाल आता है दिमाग में कि बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर अलग अलग तरह की कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, जैसे कुछ निशान पड़ गए, कुछ मान लीजिए चकत्ते से दिख रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ मिथक या कुछ भ्रांतियां हैं, तो आपकी नजर में जो सबसे मिस सिम्टम्स हैं या जो जिसको

0: कंडीशंस में तो आपको जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है उसके पास आपको जाना है कि
1: जी
0: एटलीस्ट पता तो चले कि किस वजह से हो रहा है,
1: जी
0: क्योंकि वो बॉडी के कई एरिया में आ जाते हैं, पूरे स्प्रेड भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वायरल एग्जिम्स भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है जो आपको मैंने बताया, जैसे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, बहुत सारे फोड़े फुंसी जो
1: जो
0: होते हैं,
1: पस
0: हाँ
1: वाले
0: पस वाले होते
1: जी
0: हैं कि यहाँ यहाँ हो रहे हैं, तो कई बार होते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता मुझे क्यों हो रहा है फोड़े फुंसी।
1: जी
0: तो ऐसे कंडीशन में कई बार जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनकी
1: यस
0: भी डिटेक्ट होती है कि शुगर इसी समय आता है कि हाँ मुझे हो रहा है, तो हो सकता है कई बार होता है कि उनको इस सिम्टम्स की वजह से डिटेक्ट होता है कि हाँ आपका शुगर लेवल हाई है
1: ज्यादा है
0: इस वजह से, या फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि बार बार रिपीटेड जैसे पानी में गीले होने की वजह से भी नाखूनों की भी परेशानी होती है, तो जो नेल फोल्ड होता है उसकी स्वेलिंग होती है जिसको पेरोनिकिया कहते
1: और एक
0: हैं।
1: एक्जिमा जैसी कंडीशन जो
0: हाँ
1: होती है
0: वो
1: वो भी
0: एक्जिमा इज डिफरेंट,
1: ओके
0: एक्जिमा तो जो कंडीशंस है वो एक एलर्जिक की कंडीशंस होती
1: मतलब
0: है,
1: उसका मानसून से कोई लेना देना
0: नहीं
1: नहीं
0: मानसून में बढ़ जाते
1: बढ़
0: हैं,
1: जाते हैं
0: बढ़ जाते हैं
1: जी
0: डेफिनेटली। मानसून में कुछ स्किन कंडीशंस है जो एग्रेवेट होती है, जैसे एक्जिमा है, एक्ने है, मुहासे जो होते
1: जी
0: हैं वो एग्रेवेट होते हैं,
1: जी
0: ठीक है, पसीने की वजह से, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन से उसकी वजह से बढ़ सकते हैं। और कुछ कंडीशंस होती है जो कि आपकी इसी मौसम में देखे जाए, जैसे बोला मैंने हीट रैश, तो ये नहीं है कि आपका फंगल इन्फेक्शन केवल इसी मौसम में दिखाया जाए, इस मौसम में बढ़ जाते हैं। अब ऐसा सिनेरियो आ गया कि फंगल इन्फेक्शन तो हर मौसम में हमें देखने को मिलता है,
1: बिल्कुल
0: बट
1: बिल्कुल।
0: इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
1: तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर कि अगर इन जनरल हम बारिश के मौसम की बात करें तो स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो हम इन त्वचा की समस्याओं को थोड़ा दूर रख सकते हैं।
0: कि सबसे पहली बात है कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको रखना है, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। आप खान पान अच्छा रखोगे तो स्किन की हाइड्रेशन भी चाहिए, पानी उचित मात्रा में ले। और दूसरी चीज़ ये है कि कपड़ों का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इस मौसम में पसीने की ज़्यादा समस्या होती है, तो क्लोथिंग वैसा पहने जो एब्जॉर्ब करे, या फिर जैसे कॉटन है लूज फिटिंग बोलते हैं हम,
1: जी
0: लूज फिटिंग पहने, बहुत ज़्यादा टाइट या जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी जो है कपड़ों की वजह से भी कई बार आती है, ऐसा नहीं है, तो आपको उस कंडीशन, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जैसे बहुत
1: जी
0: टाइट कपड़े पहने हैं, तो उस कंडीशन में हम ये एडवाइस करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको लूज क्लोथिंग होनी चाहिए, या किसी को पैर में एथलीट फुट जिसको बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम बोलते हैं कुछ टाइम के लिए आप शूज को एक्सक्यूज कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना,
1: जी
0: बहुत लंबे टाइम के लिए उसको पहनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब आपका मन भी ठीक रहेगा, तो आपका मन भी ठीक होना चाहिए, आप अच्छे से अपना ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर दवाई लेने की बजाय आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या जो भी डॉक्टर है नियर बाय उनको जरूर दिखा लें।
1: तो श्रोताओं, बारिश के मौसम का आनंद तभी पूरा है जब हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी त्वचा को साफ रखें, सूखा रखें, पानी पीने का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गीला होने से बार बार अगर बच सकते हैं तो बचें, भीगने के बाद कपड़े तुरंत बदलें, स्वच्छता बनाए रखें अपनी, और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी क्रीम या दवा ना लगाएं, ऐसा अभी अभी हमारी डॉक्टर ने भी बताया आपको। तो ध्यान रखिए और बारिश के मौसम का मजा लीजिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत जिसका विषय था मानसून में त्वचा रोग एवं बचाव। जानकारी दे रही थी डॉक्टर सीमा, त्वचा रोग विशेषज्ञ। और देखिए ये तो थी जानकारी, और अगर हम बात करें योजनाओं की तो समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना है जो कि स्कूली शिक्षा से जुड़ी है। ये एक एकीकृत योजना है जिसमें तीन पुरानी योजनाएं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई है। इन तीनों को मिलाकर बनी है समग्र शिक्षा अभियान योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, सिलेबस में सुधार करना, लिंग और सामाजिक अंतराल को कम करके सभी के लिए समान अवसर पैदा करना और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। सिर्फ किताबी शिक्षक तक बच्चे ना रह जाएं बल्कि कौशल विकास के द्वारा वो व्यावसायिक शिक्षक की ओर जाएं ताकि वो अपना रोजगार सृजन कर पाएं और अच्छी नौकरी भी पा पाएं, और उनको जो भी ज्ञान हो वो व्यावहारिक ज्ञान हो, ना कि सिर्फ किताबी।
3: और साथ में ये भी है कि अगर इसमें कुछ चीज़ों को और अच्छे तरीके अच्छे रूप से बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कुछ अच्छे व्यवस्थाएं की जाएं, और प्रारंभिक बाल व्यवस्था जो कि मतलब बहुत ही छोटे बच्चे जो प्री स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं उनके लिए खास जो न्यूट्रिशन होता है देखभाल और उनको किस तरह से वहाँ पे व्यवहार रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी देने का जिसके प्री बेसिक्स नॉलेज होती है वो दी जाए, और बुनियादी साक्षरता को

0: और किस तरीके से अंकगणित पर बहुत जोर दिया जाए।
1: बिल्कुल, तो ये तो थी समग्र शिक्षा अभियान की बात, और अब करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना की आवाज़ में ये रागनी किस्सा रहेगा महाभारत का, और महाभारत में भी कीचक वध से जुड़ा है ये किस्सा।
2: तेरा भूलू ना एहसान बहन

0: तो भाइयों, ऋषिपाल खदाना के गाए हुए इस रागनी के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, हमारा जैसे कि मौसम बदलता है, उसी हिसाब से हम अपना खान पान भी बदलते हैं, और बरसात के मौसम में तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये साथ साथ बात करें अगर वायु प्रदूषण की, तो जिस तरीके से वायु प्रदूषण का हमारे पर्यावरण पे गलत असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से हमारे खेतों में, हमारी खेत की मिट्टी में और हमारी फसलों पर, हमारे पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक खास बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव। और इसमें बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ हवा केवल स्वास्थ्य के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि हमारी कृषि के लिए भी आवश्यक है, हमारे खान पान के लिए भी आवश्यक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर स्वच्छ हवा होगा तो कृषि भी अच्छी होगी, और जब कृषि अच्छी होगी तो खाद्यान्न पर भी उसका अच्छा असर होगा। और खाद्यान्न हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और उसका भी स्वस्थ होना यानी कि सेहत के लिए भी स्वस्थ होना सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता उसमें कुछ गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से कृषि पर प्रभाव पड़ने लगा है। और जब कृषि पर प्रभाव पड़ता है तो किसानों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। बातचीत का जो विषय है वो है वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक को, और आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में पर्यावरण विज्ञान संभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर संदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कृषि की अगर बात करें, कृषि को लेकर के, कृषि के संदर्भ में अगर हम बात करें, वायु के गुणवत्ता में गिरावट का क्या मतलब है, इसे आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे?
3: वायु में की गुणवत्ता में गिरावट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हमारी वायु की जो गुणवत्ता वो खराब हो जाती है, और उसके खराब होने के कई रीजन होते हैं, जिनमें जो पहला रीजन है कि जो वायु का जो हमारा उसका गठन होता है, संगठन, उसमें जो गैसेज होती हैं, उसमें कुछ गैसेज जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेज होती हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं, या हमारी जो वायु होती है उसके अंदर जो कणीय पदार्थ हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिनको बोला जाता है, वो आ जाते हैं। तो इन सब की वजह से जो वायु होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर हम कृषि की बात करते हैं तो फसलों के लिए, एनिमल्स के लिए, और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसके लिए वो हानिकारक हो जाती है।
2: जी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक कृषि के लिए बहुत बड़ी गंभीर एक चुनौती भी है।
3: हाँ, आप मान सकते हैं ये हमारे सभी तंत्र के लिए हानिकारक है, जिसमें कृषि भी एक इसका भाग है।
2: जी, तो वायु प्रदूषण का फसलों पर किस प्रकार असर होता है, हमें किस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं?
3: वायु प्रदूषण, अगर हम खेती की बात करते हैं तो खेती में किसी भी फसल पे अगर हम लक्षण देखते हैं तो लक्षण कई प्रकार से लक्षण आते हैं, उसमें केवल वायु प्रदूषण का ही रोल नहीं होता। जैसे कई बार हमारे खेत में कुछ जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, कई बार हमारे खेत में है वो कुछ बाहरी जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो लग जाने से भी फसल में कई प्रकार के लक्षण आते हैं। वो इसी के साथ में जो वायु प्रदूषण जब अधिक होता है तो उसकी वजह से भी फसलों में कई प्रकार के जो है सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब की पहचान करना, जनरली एक किसान है वो इनकी पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए जो लोग या जो भी रिसर्चर हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो लंबे टाइम तक काम करते हैं, वो इस चीज़ों को इजीली पहचान सकते हैं और अपने जो संबंधित किसान होते हैं उनको बता सकते हैं।
2: जी,
3: तो जैसे इसमें मुख्य अगर हम बात करें तो इनमें भी वही लक्षण होते हैं जो बाकी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, इसके साथ साथ में पत्तियों पे भूरे जो निशान हो जाते हैं, प्लांट की पत्तियां छोटी हो जाती हैं साइज में, और प्लांट है वो जल्दी

0: उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो छोटा हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं।
1: जी, तो इसका असर मिट्टी पर भी नेचुरली देखा जाए तो असर होता ही है।
0: हाँ, मिट्टी पे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उन पे भी इसका असर होता है वायु प्रदूषण का। साथ
1: जी
0: में अगर हमारे वायु में अगर अधिक मात्रा में ओजोन है जो काफ़ी टॉक्सिक होता है हमारे फसलों के लिए, वो जितनी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है सोयल में उनको भी वो काफ़ी नेगेटिवली या बहुत मतलब हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ अगर हमारे वायुमंडल में जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से जो रेन आती है वो उसकी पीएच में चेंज आता है, जिसको हम
1: जी
0: जनरली एसिड रेन कहते हैं,
1: जी हाँ
0: अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो हमारे जो मिट्टी की अम्ल पीएच होता है, लेवल होता है, उसको चेंज कर देता है, तो
1: जी
0: जिसे भी है वो सोयल के अंदर काफ़ी चेंजेज आते हैं।
1: सॉइल के अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो नेचुरली पौधों की पत्तियों में भी, उनके फलों में भी असर होता है।
0: हाँ जी ज़रूर।
1: जी, और कई बार देखा जाता है कि कई बार धूल भरी आंधी, जैसे कि राजस्थान के इलाकों में और खासकर गर्मियों में देखा जाता है कि धूल भरी आंधी चलती है, तो वो सब भी पत्तों पर जम जाते हैं, तो उसका असर भी पौधों पर होता है।
0: हाँ,
1: वो किस प्रकार असर करता है?
0: अगर आप धूल भरी आंधी है या आप कोई खेत देखते हो जो जिसके पास से रोड निकल रही होती है, या आप कोई खेत देखते हो कि जिसके पास में ईंट बनाने का कोई भट्टा वगैरह है, तो वहाँ पे देखो कि जितनी फसल होती है उनकी जो लीफ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर एक मिट्टी की एक लेयर चढ़ जाती है,
1: जी,
0: परत चढ़ जाती है। आप
1: परत।
0: अंगुली से अगर उठाओ तो मोटी मोटी मोटी परत चढ़ जाती है।
1: जी
0: इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो इससे वो फोटोसिंथेसिस है और उनमें जो गैसेस का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा वो अफेक्ट होता है।
1: जी
0: जब फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अफेक्ट होती है तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाते हैं ढंग से, जिसकी वजह से है वो पौधों में कई चीज़ों की कमी आ जाती है, जैसे उनके एंजाइम्स होते हैं पौधे में वो अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट विटामिन्स प्रोटीन हैं उन सब की क्वालिटी ख़राब हो जाती है।
1: जी डॉक्टर संदीप जी, अभी आपने शुरुआत में कुछ गैसेस की बात की थी
0: हाँ
1: और
0: जी
1: उसमें एक ओजोन गैस भी है, तो ओजोन गैस का हमारी कृषि पर किस प्रकार का प्रभाव होता है?
0: अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ओजोन है वो एक सेकेंड कैटेगरी का पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी जिसको द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं, मतलब इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में। अगर देखा जाए तो कोई भी डायरेक्ट, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका सीधा सोर्स होता है,
1: जी
0: लेकिन ओजोन का कोई सीधा सोर्स नहीं होता है। जब हमारे जितनी भी ये गैसेज वातावरण में जाती हैं तो ये गैसेज मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन को एटमॉस्फेयर में बनाती हैं।
1: जी
0: तो जैसे हम कुछ गैसेज की बात करें, जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं,
1: जी
0: नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब रिएक्शन करके हैं वो ओजोन को बनाते हैं, और ओजोन जब तक सनलाइट होती है तब तक ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन है वो, अगर ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये क्या, ओजोन से हमारे पौधों में क्या होता है कि जो हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो किसी भी पादप की या पौधे की सेल में जब फ्री रेडिकल बनते हैं तो वो पौधा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, ख़त्म
1: जी
0: हो जाता है,
1: जी
0: मतलब तो उसमें पैदावार नहीं हो पाती है,
1: जी
0: पौधे से पैदावार नहीं हो जाती है, पैदावार नहीं होती है, साथ में उसकी जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही पुअर होती है। तो
1: जी
0: इससे हमारे खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है, और खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है तो आप उसको बोल सकते हो कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, देश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है।
1: जी डॉक्टर संदीप जी, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे एसिड रेन के विषय में, आपने जानकारी दी, तो ये एसिड रेन वास्तव में किस प्रकार हमारे पौधों को प्रभावित करता है और मिट्टी को प्रभावित करता है, और जब मिट्टी को प्रभावित करता है तो खाद्यान्न पर भी असर होता है, ये किस प्रकार होता है?
0: अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः है जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो मेनली थर्मल पावर प्लांट वगैरह से जिनका इमिशन होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो जितना भी ये डीजल पेट्रोल इनके बर्निंग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये हमारे वातावरण में जाते हैं, जो वातावरण में विद्यमान जो भी वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं,
1: जी
0: और वो बारिश के साथ हमारी मिट्टी
1: मिट्टी
0: पे
1: में।
0: या मृदा पे या फसलों पे जो भी है जिस भी सतह पे आके जहाँ जहाँ बारिश गिरती है, तो इससे बारिश की जो पीएच होती है वो जनरली 5.6 से कम हो जाती है, उससे कम होती है किसी भी बारिश की, अगर वो पीएच 5.6 से कम होती है तो उसको अम्लीय वर्षा हम मानते हैं।
1: मानते।
0: अब ये है, वो अम्लीय का नाम ही बता रहा है कि हमारी जो पीएच है वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है बारिश।
1: जी
0: जब बारिश एसिडिक हो जाती है तो हमारी सोयल में, अगर पहले हम सोयल की बात करते हैं, वैसे तो अम्लीय वर्षा जहाँ गिरती है हर चीज़ को प्रभावित करती है, चाहे आप हमारी बिल्डिंग पे भी गिरती है तो भी प्रभाव करती है। उसका एक एग्जाम्पल ताजमहल है
1: जी
0: कि ताजमहल का जो मार्बल है वो ख़राब हो रहा है, वो अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, हमारे जो जानवर वगैरह है या जो मानव स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य को ये डायरेक्ट प्रभावित करती है, मृदा के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हमारी मृदा की जो पीएच है वो चेंज हो जाती है
1: जी
0: जिससे जो माइक्रोब्स हैं उनकी पॉपुलेशन है वो घट जाती है, चेंज हो जाती है।
1: जी
0: साथ ही अगर पीएच चेंज होती है तो इससे जो हमारी मृदा

0: के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपलब्धता कम हो जाती है,
1: जी
0: और जब सोइल की जो पीएच होती है तो इसकी वजह से कई बार टॉक्सिक मेटल हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है।
1: जी जी
0: तो इसलिए मृदा के ऊपर ये काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों पे भी डायरेक्ट इसका इम्पेक्ट होता है, इसकी जो पत्तियां वगैरह हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई विजिबल सिम्टम्स आता है। जनरली बारिश में जो हमारी पहली बारिश होती है वो बारिश की सीज़न में, उसको जनरली हम बोलते हैं कि इसमें इसकी पीएच थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर रेगुलर बारिश आ रही है तो उसकी पीएच पे कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं होता है, वो अम्लीय वर्षा जनरली नहीं कंसिडर की जाती है। प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा वगैरह से क्या होता है कि इंटर करके हमारी जो सेल्स होते हैं प्लांट्स की उनको ये प्रभावित करता है। कुल मिला के जो हमारे प्लांट की उत्पादकता है वो डायरेक्टली इससे प्रभावित होती है।
1: जी डॉक्टर संदीप जी, अभी आपने ये अम्लीय वर्षा और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के विषय में चर्चा की है, तो क्या ये अलग अलग मौसम में अलग अलग इसकी मात्रा होती है, अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है फसलों पे
0: प्रभाव तो एक ही जैसा होता है, ये
1: किसी भी
0: डिपेंड
1: मौसम में हो?
0: किसी भी मौसम में इसका प्रभाव एक ही होता है, फसल के हिसाब से इसका प्रभाव होता है किस टाइप की फसल है। दूसरी है कि अगर हम जितने भी जो वायु प्रदूषक होते हैं,
1: जी
0: अगर आप इनकी जो सांद्रता होती है हमारे वातावरण में वो हर सेकंड चेंज होती रहती है,
1: जी हाँ
0: अगर आप एक ही जगह इनको मापोगे तो इनको बार बार इनकी अलग अलग रीडिंग आएगी, क्योंकि हवा चलती रहती है तो इनका जो भी कंसंट्रेशन होती है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। लेकिन इनका अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। जैसे ये अल्टीमेटली प्लांट पे कैसे भी इफेक्ट डाले लेकिन उसकी उत्पादकता वो कम कर देते हैं, उनका जो जीवन चक्र वो छोटा कर देते हैं, उनमें जो क्वालिटी होती है वो ख़त्म कर देते हैं।
1: जी
0: क्वालिटी का
1: जी
0: मतलब है कि जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाता है, या कोई पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। अगर ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो प्लांट के अंदर से विटामिन सी है, अगर हम आंवला का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आंवला के आसपास ज़्यादा है तो विटामिन सी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट के काम करता है और ये फ्री रेडिकल बनाते हैं तो कंजप्शन हो जाता है उसका।
1: जी डॉक्टर संदीप जी, प्रदूषण का जो असर होता है वो ऐसे कौन कौन से पौधे खास तौर पर जिन पर बहुत ज्यादा असर होता है, संवेदनशील कह सकते हैं, सेंसिटिव कह सकते हैं
0: हाँ,
1: इसे?
0: इसमें इनका अलग अलग प्रदूषण जो होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रदूषण, जैसे आपको मैं नाम बताता हूँ, जैसे एक तो ओजोन हो गया, नाइट्रोजन होते हैं उसके ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
1: कार्बन
0: इसके
1: डाइऑक्साइड,
0: कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके साथ साथ में जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, कणीय पदार्थ होते हैं, जैसे PM 2.5, PM 10 होते हैं, इन सब के लिए अलग अलग टाइप के प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। प्लांट किन इनके लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ प्लांट इनके लिए टॉलरेंट होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के प्लांट होते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ प्लांट्स हैं कुछ, या वेजिटेबल्स आप देखोगे ओजोन के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो कुछ वेजिटेबल है वो टॉलरेंट होते हैं, इनकी एक अपने आप में एक बड़ी लिस्ट है।
1: फसल के अनुसार, मौसम के अनुसार कह सकते हैं,
0: हाँ, मौसम के
1: और साथ
0: अनुसार
1: साथ इसमें आप क्लासिफिकेशन करेंगे मिट्टी को लेकर के भी, कि मिट्टी भी उसी के अनुसार भी प्रभावित होते हैं?
0: नहीं, मिट्टी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जनरली अम्लीय वर्षा के आधार के ऊपर। मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से ही क्लासिफाइड होती है,
1: जी
0: कुछ मिट्टी साउथर्न इंडिया की है या अपन ईस्टर्न पार्ट की है, ऑलरेडी उनकी पीएच कमी है।
1: डॉक्टर संदीप जी, वैसे वायु प्रदूषण यानी कि वायु की जो गुणवत्ता देखा गया है समय समय पर बदलता रहता है और उसमें गिरावट होती रहती है, लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद इस दिशा में किस प्रकार का काम कर रही है? क्या कोई ऐसे बीज की किस्म या पौधे ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि किसानों को कुछ सहायता हो सके?
0: हाँ ज़रूर, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी काफ़ी काम कर रहे हैं, जो आजकल जो जलवायु परिवर्तन की वजह से भी जो चेंजेज आ रहे हैं उनके लिए भी हैं, वो काफ़ी वेराइटीज़ पे काम चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में देखोगे तो कई वैज्ञानिक हैं जो वेराइटीज़ पे काम कर रहे हैं और ये पता करें कि जो ऑलरेडी हमारे पास जो वेराइटीज़ है उनमें कौन सी वेराइटी है वो जो सस्टेन कर सकती है, प्रजेंट कंडीशन में कौन सी ज़्यादा है, तो हम किसानों को ये भी बता सकते हैं कि आप इस एरिया में ये वेराइटी उगाओ तो आपके लिए वो ज़्यादा पैदावार करेगी या पैदावार इससे प्रभावित नहीं होगी। तो इसके दिशा में काफ़ी काम चल रहा है और आने वाले कुछ समय में इस प्रकार की वेराइटियाँ देखने को मिल जाएगी।
1: तो जो किसान हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जब इस प्रकार की गुणवत्ता की बात होती है, वायु गुणवत्ता में गिरावट की बात होती है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से बचाव करें?
0: इसके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए किसानों को जैसे क्या होता है कि हमारे मिट्टी पानी उनका तो हम पता भी लग जाता है चीज़ों में क्या चल रहा है, लेकिन जो वायु प्रदूषण की वजह से है जनरली किसानों को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, उसका भी हम कई बार ये सोचते हैं कि मिट्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो क्या रहा है। तो इसके लिए है कि जो भी किसान हैं के रिगार्डिंग कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि वो इन चीज़ों के बारे में जान पाएँ किसानों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, समय समय पर उनको अवेयर, कुल मिला के है कि हम किसानों को अवेयर करके इसके बारे में बता सकते हो और उसी के बाद में किसान है वो कुछ अपने लेवल पे कुछ थाम के उपाय कर सकते हैं।
1: जब
0: जैसे कोई वेराइटी का, कोई जो अच्छी वेराइटी है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या उस एरिया में ओजोन का पोल्यूशन ज़्यादा है।

0: तो उस एरिया में हम वो फसलें ले सकते हैं जहाँ पे ओजोन का इफेक्ट उन पे नहीं होता है, तो ऐसे करके वो इनसे बचाव कर सकते हैं।
1: यानी हम ये कह सकते हैं कि किसानों को इसके विषय में अलर्ट रहना होगा और इसकी जानकारी लेनी
0: जानकारी
1: पड़ेगी,
0: लेनी
1: और
0: होगी,
1: जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे लगातार संपर्क में रहें तो काफी हद तक जानकारियां मिल सकती
0: मिल
1: हैं, और
0: सकती।
1: कृषि की जो फसलें हैं उनपे काफी हद तक एक प्रकार से रिसर्च किया जा सकता है और उनको ध्यान में रख करके आगे की जो प्लानिंग है कृषि करने की उसी अनुसार चल सकते। तो अभी देखा जा रहा है कि चारों तरफ क्लाइमेट चेंज की बात होती है, जब वायु प्रदूषण की बात होती है, गुणवत्ता में बात होती है, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते
0: वैसे तो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण
1: हैं?
0: दोनों ही अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें लगभग हम सारी गैसेज जो एटमॉस्फेयर में होती है उनको मान के चलते हैं कि इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी गैसेज जैसे मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुए, इन सब गैसेज को हम जनरली ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। लेकिन जो बाकी गैसेज हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो एयर की जो गुणवत्ता होता है उसको घटाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए जितनी भी जो गैसेज होती हैं,
1: जी
0: चाहे जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें, इनका प्रभाव हमारी खेती पे वो डायरेक्ट होता है। चाहे हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें,
1: जी
0: ये हमारी फसलों की अल्टीमेटली हमारे जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करता
1: सर,
0: है।
1: एक दूसरे से लेकिन जुड़े तो हुए
0: ये
1: हैं।
0: एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे लगभग हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने वायु प्रदूषक हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं,
1: नहीं जी,
0: लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार हैं वो वायु प्रदूषक हो सकते हैं।
1: डॉक्टर संदीप जी, हमारे जो श्रोता हैं, जो किसान भाई हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आज के विषय को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को ये एक नया सब्जेक्ट है उनके लिए, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाएं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, ताकि वो एक स्वस्थ पैदावार कर सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और अधिक उत्पादन लेंगे तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर और मजबूत होगी।
1: यानी कि आय का स्रोत भी बढ़ सकता है और
0: हाँ,
1: ज़्यादा आय हो सकती है, ज़्यादा
0: ज़्यादा आय
1: इनकम
0: हो
1: हो सकती
0: सकती
1: है।
0: है।
1: जी डॉक्टर संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और जो वायु की गुणवत्ता में गिरावट और कृषि पर जो प्रभाव है इसके विषय में आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत जिसका विषय था वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव, और इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। और देखिए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं वो कृषि विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके, उनके साथ संपर्क में रहकर, जानकारी लेकर सही वैरायटियों का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, और फिर उससे वो जिससे ऐसी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जिसका प्रभाव अधिक क्लाइमेट चेंज होते हुए भी अधिक प्रभावित न हो और अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकें। और अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मनोज कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: तो भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सावन गीत और कलाकार थे मनोज कुमार कीरतपुर। तो भाई, बात हम कर रहे सावन की, बारिश की, और साथ साथ खूब मज़े से झूलों में झूलने की और सखी सहेलियों की। तो बात हम खाने पीने की भी करेंगे कि खाना पीना भी इस मौसम में आपको बहुत ही सोच समझ के खाना है, ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने झूमने और नाचने गाने में और बारिश का मज़ा लेने में आप अपनी सेहत को भूल जाएं, जो कि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा कभी न कभी खांसी ज़ुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप भीग जाएँ तो ठंडी का ज़रा सा भी एहसास हो और लगे आपको कि खांसी जुकाम होना हो सकता है, तो आपको हल्दी दूध का गरम गरम दूध पीना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है दूध में और तुलसी का सेवन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तुलसी भी डाल सकते हैं। अगर चाय पी रहे हैं तो तुलसी और अदरक मिलाकर, ऐसे कुछ घर की जो ये नुस्खे होते हैं, इनको अपनाकर आप अपने आप को सही रख सकते हैं। इस मौसम का भी मज़ा भी ले सकते हैं और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल लॉरी, इसके साथ साथ वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें। दलहनी फसलों तथा सब्जी नर्सरियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें हमारे किसान भाई, क्योंकि अधिक जल भराव से जो हमारे सब्जियां होती हैं अक्सर देखा जाता है कि उनके ख़राब होने की भी संभावना रहती है। तो बरसात के मौसम में जहां एक तरफ कीट पतंगों का भी अधिक खतरा रहता है, तो निगरानी करते रहें अपनी फसल की और उचित देखभाल के ज़रिए अपनी फसल को आप बचा कर रखें। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।
1: और इसके साथ ही कुछ जानकारी जो कि इस मौसम में आपको खास ध्यान रखनी है। इस मौसम में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की भी बुआई आप कर सकते हैं, जल निकासी का प्रबंधन भी कर सकते हैं, खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी और चूसक कीटों का नियमित रूप से निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। टमाटर, मिर्च, बैंगन की पौध अगर तैयार है तो मेड़ बनाकर उसकी रुपाई भी करें,
0: क्योंकि मेड़ बनाकर रुपाई करना इसलिए ज़रूरी है कि बरसात का मौसम है, अगर आप मेड़ बनाएंगे तो उससे आपके जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहेंगी और सड़ल और गलन की समस्या जो अक्सर देखी जाती है बरसात के मौसम में, तो ऐसे में ज़रूरी है कि मेड़ पर या फिर बेड बना के अगर हम अपने पौधों को लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छी बढ़वार भी ले पाएंगे और उससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो ये बरसात का मौसम है जिसमें आपको जल निकासी के साथ साथ जो मक्खी हैं और चूसक कीट हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी फसल को बेहतर बनाए रहें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक है शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:30 हुए हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बीड़े में शामिल किया और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, इनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
4: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
2: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: समारोह में 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। अत्यधिक सुविधा से संस्थान की AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतः विषयक अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के विभिन्न बाजार और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई, बेहतर शहरी नियोजन और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। श्री द्विवेदी ने पदभार संभालने के बाद

0: 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान निरसन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा के आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र से पहले दिन विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत और आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार दिल्ली की लाखों महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है।
1: ये दिल्ली की बहनों का विश्वास है और इस विश्वास पे खरा उतरना हमारा धर्म है। हमने 2500 रुपए की योजना लागू की है और बहनों को उनका सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले, ये हमारा काम।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बहनें खुश हैं और उनकी सरकार ने महिलाओं से किया अपना वादा पूरा किया है।
2: 2015 तक की डेट थी जिसमें कि किसी झुग्गी को सरकार मकान दे सके, जिसे हमने 1 जनवरी 2025 किया है और इसके अंतर्गत आने के बाद में दिल्ली की 99% झुग्गियों को मकान मिल जाएगा। कोई भी झुग्गी मुझे लगता है छूटेगी नहीं। एक विस्तृत योजना जिसका लाभ सब तक पहुंचे, ये काम करना कोई आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के सानिध्य में ये योजना पूरी हो पा रही है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बहनों से किया गया वादा पूरा किया गया है।
3: इतिहास रचा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कहा वो किया। ये वादा किया था दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की बहनों से, दिल्ली की माताओं से, और उस दिल्ली लक्ष्मी योजना का वो वादा पूरा किया गया है। लाखों बहनें इसके फॉर्म भर रही हैं और जो उत्साह है बहनों में वो यहाँ दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद के लिए भी बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन है।
0: सत्र के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए की सहायता उपलब्ध होगी। वहीं इस योजना पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ी योजना है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
4: एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपया महीना दिया जा रहा है, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी योजना है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, दिल्ली के लोगों से वादा किया था, आज हम उसकी बधाई जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं। ये एक वो सोच है जो हमारी बहन बेटियों को मजबूत करती है, उनके भविष्य में उनके बच्चों को मजबूती देती है, और ये एक वो सोच है जो औरत को आत्मनिर्भर बनाने का बहनों को काम करती है।
0: इस योजना के लिए अब तक 4,57,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। वहीं लगभग 1,73,000 महिलाओं ने अपने आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा ने भाषणी को सदन की कार्यवाही के दौरान अपने AI आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य विधायी कामकाज को उचित समय में ट्रांसक्राइब और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की तकनीक की क्षमता का आकलन करना है। ये पहल दिल्ली विधानसभा की उन नई तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाती है जो विधायी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाने में सहायक हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार किए गए हैं। वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में एक सम्मेलन के दौरान इन सर्किट को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सर्किट के माध्यम से पर्यटक दिल्ली की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कम समय में बेहतर तरीके से देख सकेंगे तथा अधिक दिनों तक ठहरने के लिए प्रेरित होंगे। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संयुक्त देखरेख में होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
5: यह आयोजन भारतीय उत्पादों, सेवाओं, एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ने का मंच बनेगा, जहां वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में 1000 से अधिक प्रदर्शकों, 40 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और लगभग 10 लाख आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि

0: नए भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का उत्सव है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव भारतीय कारोबार को नए बाजार, निवेश और वैश्विक साझेदारियां उपलब्ध कराने के साथ मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन भी जब्त किया है। और अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। साथ ही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु हरिकिशन बादशाह के प्रकाश पर्व पर बधाई दी। श्री गुप्ता ने सदन की शुरुआत में कहा कि दिल्ली विधानसभा के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी AI संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विधायी प्रबंधन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का आकलन करना है। इसके बाद शून्यकाल में विधायकों ने जनहित के मामले विशेष उल्लेख के साथ उठाए। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सदन को गंभीरता से नहीं लेती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022, 2023 और 2024 में प्रश्नकाल नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष से लोक लेखा समिति उन CAG रिपोर्ट की जांच में लगातार कार्य कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दवा घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके कारण आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा कार्यवाही की सुचारू रूप से शुरू हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन पर पटल पर प्रस्तुत की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में जारी अधिसूचना और दिल्ली विद्यालय शिक्षा कठिनाइयों का निवारण आदेश 2026 के संदर्भ में जारी अधिसूचना सदन में रखी। इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन की अनुमति से दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट निरसन विधेयक 2026 को सदन में प्रस्तुत किया। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। राजधानी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में आज सवेरे से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़े में शामिल किया। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत के इस खास प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम जहाँ। इस भीगे मौसम में और कहें कि दिल के जज्बात दिल में ऐसे याद बनकर उमड़ उठते हैं कि आपको हमेशा हर किसी का चेहरा उस बारिश की बूंद में नज़र आने लगेगा। कुछ ऐसा ही होगा जब आप इन गीतों को सुनेंगे। तो लीजिए सुनिए ये पहला गीत।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, बारिश का मौसम जो है सिर्फ एक मौसम ही नहीं, ये एक जज्बात है, या यूं कह लीजिए कि जज्बातों का पूरा समुंदर है जो बरसात बनकर बस बरस पड़ता है। कभी यादों की छतरी खोल देता है तो कभी उस गर्म की चाय के प्याले में उस खूबसूरत एहसास को समेटे होता है। और कहते हैं कि जब बारिश की बूंद पड़ती है तो इस मौसम में ऐसा एहसास होता है कि बस पहली जो बूंद गिरी है वो कहीं ना कहीं दिल पर दस्तक देकर निकली है, यादों की दस्तक देकर निकली है। और जब इस झमाझम बरसात में जहाँ

कोई बारिश ही बारिश हो, हर तरफ पानी ही पानी हो, और ऐसे में अगर कहीं ठिठक कर कहीं दो पल के लिए आप बैठकर संगीत का मज़ा लें, इन गीतों का मज़ा लें जो कहीं ना कहीं आपको उन यादों में खोने में मजबूर भी कर देता है, उन प्यारे एहसास को महसूस करने के लिए मजबूर कर देता है ना। आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में ये अगला गीत।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत मालिका।

और इसी खूबसूरत और अंतिम गीत के साथ तरन्नुम जहां को इस कार्यक्रम यानी गीतमाली का कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: के लिए नमस्ते।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
1: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फॉन्ड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर

0: उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
3: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill,

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाज़रानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपये मालियत से तजावुज़ कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज़्बेकिस्तान में ख़वातीन के 45 किलोग्राम के ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग़,

0: तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अरकान के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज़ इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजबित करते हैं।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल रबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइंस फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइंस पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैन अवी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाज़ों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़श्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मग़रबी एशिया में जारी सूरतेहाल और बदलते हुए हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये फ़ोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ ख़ुसूसी जामे शराकतदारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरतेहाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलों पर करीबी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूद तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्दी हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद सिंध आबी माहदे को मुलतवी करने, अटारी चेकपोस्ट बंद करने, वीज़ा महदूद करने और मुतालिका मिशनों में सिफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। भारत और श्रीलंका ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान बिजली के शोबे में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय वफद की क्यादत बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने की, जबकि श्रीलंका के वफद की क्यादत बंदरगाहों, शहरी आवाबाजी और तवानाई के वजीर अनुरा करुणा तिलक ने की। बिजली की वजारत के मुताबिक दोनों वजीरों ने मुजवजा श्रीलंका भारत HVDC इंटरकनेक्शन और सम्पुर शमसी बिजली प्रोजेक्ट समेत जारी दो तरफा पहलों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों वजीरों ने सरहद पार बिजली की फरोख्त, काबिल तजदीद तवानाई, तरसील के बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। भारत ने टैरिफ पर मबनी मुसाबिकती नीलामी के फ्रेमवर्क के जरिए तरसील के निज़ाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तौर पर तैयार करने का अपना तजुर्बा मुश्तरक किया। ब्रिक्स वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग आज भुवनेश्वर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान इत्तेफाक राय से एलामिया को अपनाया गया। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये एलामिया मजबूत इदारा जाती इश्तराक, सलाहियत साजी और मालूमात के इश्तराक के जरिए शमूलियाती, लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार तालीमी निज़ाम की तश्कील के लिए ब्रिक्स ममालिक की अहद बस्तगी की तौसीक करता है। वजीर तालीम ने कहा कि इस मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए तालीम ने शिरकत की। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स और इसके हलीफ ममालिक मिलकर आलमी GDP के तकरीबन 40% हिस्से और तकरीबन दुनिया की निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 587 PhD स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा समेत IIT दिल्ली से फारिग होने वाले 3000 से ज़्यादा तलबा से खिताब करेंगे। इस बारे में आज नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी ने कहा कि जनाब मोदी होनहार तलबा में सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इदारे के सबसे बावकार इनामात तफवीज़ करेंगे। जनाब बैनर्जी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से चलने वाले हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञ का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। भारत के कौमी सरकारी खरीदारी के प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM ने गुज़िश्ता 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मालियत की जामे मजमू तिजारत का निशाना हासिल कर लिया है। GEM के का आगाज़ 9 अगस्त 2016 को किया गया था। इसका मकसद टेक्नोलॉजी, शफाफियत, कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी के जरिए सरकारी खरीदारी के निज़ाम की काया पलट करना था। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए GEM के CEO मिहिर कुमार ने कहा कि GEM का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कॉरपोरेट पेशेवर अफराद और माली शोबे के पेशेवर अफराद को बॉस स्कैम या खुद को CEO जाहिर करने वाले धोखे से खबरदार किया है। एक बयान में वजारत दाखिले ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों के जरिए पेशेवर और कारोबारी अफराद के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने से मुतालिक वाकयात की शिकायतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। भारत ने महज 3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हासिल कर लिया है, जो कि मुकर्रर वक्त से काफ़ी पहले हासिल कर ली गई पेशरफ्त की अक्कासी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक समेत शुमाल मशरक़ी भारत में कल के लिए शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तुंध हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फरआबाद, तेलंगाना, गुजरात

0: वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ साथ शदीद बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बारिश की वजह से मामूल की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा और बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। मज़ीद बरां, भारत के महकमे मौसमियात ने कल के लिए हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अभी।
0: इस दौरान केरलम के 4 जिलों में बहुत शदीद बारिश के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: शिमाली केरलम के अजला कसारागोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर 4 अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया 6 अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। सनीचर के रोज़ के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेट लिफ्टर तितली माझी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने 4th मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने MSME तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाज़रानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई ख़रीदारी 20 लाख करोड़ रुपये मालियत से तजावज़ कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज़्बेकिस्तान में ख़वातीन के 45 किलोग्राम के ज़ुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जैम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित मधुप मुद्गल का गायन राग भोपाली।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे पंडित मधुप मुद्गल का गायन राग भोपाली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और

0: निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee issue. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favored nation or MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi today, adding that Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
2: Question about the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region, they are in constant contact

0: फिल्म खलनायक का एक गीत सुना आपने अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, गीत बहुत ही खूबसूरत। और अगर बात की जाए इस फिल्म की नायिका की तो वो भी बहुत ही खूबसूरत और नृत्य उससे भी लाजवाब।
1: बिल्कुल। और सविता, हमारे फरमाइश करने वाले भी कम नहीं हैं, कितनी खूबसूरती से हमें मैसेज करते हैं, प्यार से मैसेज करते हैं। उनके नाम लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है
0: बिल्कुल
1: हमारे इस
0: सही
1: कार्यक्रम में।
0: जी।
1: तो हमारे पास मैसेज आया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का, और इसके साथ ही किशन सबकाल
0: आशा सबकाल और
1: और
0: साथ में
1: सोनिया
0: सोनिया
1: सबकाल,
0: विशाल
1: विशाल सबकाल
0: सबकाल।
1: का भी मैसेज हमारे पास आया है। और अगला मैसेज है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से। लिखने वाले हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। और इनकी फरमाइश थी कि भाई कोई भी गाना आप सुनवा दें तो हम इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। हमारा अगला मैसेज है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल का। और इन्होंने लिखा है जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से। ताश मोहम्मद हमें लिखते हैं और इनके साथ हैं गुलाम साबिर, रही मिराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। जसपुर उत्तराखंड से लिखते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। कास्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमें मैसेज किया है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरुशब्द सिंह राहुल।
0: जी हाँ, और ये जितनी भी संदेश हमें मिल रहे हैं ना, ये इस बात का हमें जाहिर करते हैं इस बात को कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे जो हैं रेगुलर लिसनर हैं हमारे, जो कि सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेशा भेजते हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। साथ ही हैं कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास दूर दूर से संदेश आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमें निराश और नज़रअंदाज मत कीजिएगा भाई, हम तो कोशिश करते हैं कि आपको कभी भी नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि आपका यही अंदाज़ हमें बहुत भाता है कि आप हमारे साथ हर बार जुड़ जाते हैं। फिलहाल छोटी बलिया से ये हमें संदेशा भेज रहे हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, यानी पूरा फूलवाले परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कापस हेड़िया बॉर्डर नई दिल्ली से भी हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं। ये हैं बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशू, अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले।

फैमिली, जैसे कि हमने कहा था कि तरन्नुम हमारे साथ है, पूरा परिवार जब कार्यक्रम को सुनता है तो हमें लगता है कि हमारे जो कार्यक्रम है वो वाकई अपने सही उद्देश्य की तरफ जा रहा है। फिलहाल तो अपना उद्देश्य हमारा ये भी रहा है कि हम आप के लिए गीत लेकर आ रहे हैं, तो उन गीतों को भी आप तक पहुँचा दें। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत को सुनते हैं।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, कोई माने या ना माने, लेकिन प्यार इंसान की ज़रूरत होता है और हर इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसा ही गीत आपने सुना अभी फिल्म खुद्दार से, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। और आवाज़ तो आपके संदेशों को भी लगातार आ रही है और कह रहे हैं संदेश के तरन्नुम हम उसे कार्यक्रम में शामिल कर लें।
1: बिल्कुल, और यही सविता इनका प्यार भी है कि वो फरमाइश कम लेकिन हमें अपना प्यार ज़रूर भेजते हैं। वडिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा का हमें मैसेज आया है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जाजोरिया और साथ हैं गुट्टू। और एक और मैसेज हमारे पास है।
0: जी हाँ, ये मैसेज हमें मिला है छोटी बलिया से और लिखकर भेज रहे हैं नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद बागबान, आसमा और आमना, साथ है राबिया परी, आशु जूही सदफ, आरजू बागबान और समस्त बागबान परिवार हमें सुन रहा है। संदेश के साथ ये हमारे साथी जुड़े हैं जो कि पहले भी हम इनका संदेशा ले चुके हैं, तरन्नुम, SM जावेद, शगुफ्ता और अंजुम हमारे साथ जुड़े हैं गुमला झारखंड से। संदेशा हमें मिलता जा रहा है आपका और आपके सभी संदेश हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। संबलपुर कांकेर से हमारे पास संदेशा है फागुराम यादव, ज्योति यादव का, और ये छत्रपति संभाजी नगर से संदेशा मिला है राजेश तामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। और इसके साथ ही साथ अब कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ भी रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक संदेश।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: जरूर सुनता है, चाहे वो
1: जी
0: आज
1: बिल्कुल।
0: के युवा पीढ़ी के लोग हों या पुराने लोग हैं,
1: और
0: लेकिन
1: तरन्नुम अब
0: पसंद
1: तो
0: की बात करें
1: होने
0: तो 90 के
1: ये
0: दशक
1: बिल्कुल, और अब तो होने ये लग गया है कि 90 के दशक के गीतों को एक बार फिर से जीवित किया जा रहा है और उन गीतों को ही लेकर नई धुनें बनाई जा रही हैं। फिलहाल
0: बिल्कुल
1: तो धुन बन रही है आपकी और हमारी, क्योंकि बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और संदेशा अगला हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल
1: जी, इनका संदेशा
0: राजेश
1: तरन्नो हमने एक बार पहले ले लिया
0: जी
1: था, तो अब अगले संदेशे की तरफ क्यों ना बढ़े। ये चंडीगढ़ सिटी से आया है संदेशा, विमला अनेजा और सतीश अनेजा जी का। ये हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और अगले संदेशे की तरफ जाएं तो अगला संदेशा, कई ऐसे संदेश हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने दोबारा दोबारा हमें संदेशा भेज दिया है। तो संदेश आया है खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हैं प्रवीण चौहान। और भी कोई संदेशा है एक बार हम जरा देख लेते हैं कि अगर कोई संदेशा हुआ तो उसे और कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। बघेरा दुर्ग से आया है संदेशा संतोष नामदेव सार्थक और समर्थ नामदेव का। और इसी के साथ अब कार्यक्रम जो है तरन्नुम अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। हमारे सभी दोस्तों को हम एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता और मेरे साथ
0: तरन्नुम जहां को दीजिए इजाज़त।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय मध्य रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म जागृति से। गायक थे मोहम्मद रफ़ी और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कवि प्रदीप पर। कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इनका जन्म 8 फरवरी 1915 को उज्जैन के निकट बड़नगर शहर में हुआ था और ये शहर वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद है। ये एक मध्यम वर्गीय औदिच्य ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और ये एक इन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो मध्य प्रदेश से और कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही इन्हें लिखने का शौक़ पैदा हो गया था और इसी दौरान इन्होंने हिंदी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। ये अपना गुरु गिरिजा शंकर दीक्षित को मानते थे और जो कि मशहूर कवि बाई भद्र प्रसाद दीक्षित के बड़े बेटे थे। उन्होंने ही इनको कविता लिखने के हुनर को सिखाया और उसके बाद कवि प्रदीप कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगे। कवि सम्मेलनों में भाग लेने के दौरान ही ये अपनी कविताओं से जैसे लोगों को अपने जादू से बांधने से लगे। उसी दौरान इन्होंने अपना नाम कवि प्रदीप रखा और लोग इन्हें इसी नाम से जानने लगे। 1939 में जैसे ही इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की तब इन्होंने स्कूल टीचर बनने का निर्णय लिया और शायद यही वजह है कि कुछ गीत उन्होंने उसी पर लिखे। आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगला गीत कवि प्रदीप का लिखा हुआ।

0: श्रोताओं, कवि प्रदीप के फिल्मी कैरियर की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। 1939 में इन्हें बॉम्बे में एक कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी दौरान इन्हें अपनी पहली फिल्म कंगन के गीत के लिखने का मौका मिला और इस फिल्म में लीला चिटनेस और अशोक कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कवि प्रदीप बॉम्बे आ चुके थे, उन्होंने इस फिल्म के लिए 4 गीत लिखे। इनके लिखे हुए सभी गीत बहुत हिट रहे और इस प्रकार ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। सुनते हैं कंगन फिल्म से इनका लिखा हुआ एक गीत।
1: झुके जो तेरे नैना

श्रोताओं, अपनी पहली फिल्म कंगन के हे गीत हिट हो जाने के बाद 1940 में कवि प्रदीप को फिल्म बंधन के गीत लिखने का अवसर मिला और इस फिल्म के निर्माता एस मुखर्जी थे और निर्देशक थे ज्ञान मुखर्जी। संगीत दिया था सरस्वती देवी ने। इस फिल्म में लिखे हुए सभी गीत बहुत हिट हुए और ख़ास तौर पर एक गीत ने तो बहुत ही चल चल रहे नौजवान ने तो हर तरफ धूम ही मचा दी थी। फिलहाल हमारे पास ये गीत नहीं है श्रोताओं, लेकिन इसकी जगह हम आपको कवि प्रदीप का लिखा हुआ एक और गीत सुनाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म बंधन के गीत हिट हो जाने के बाद कवि प्रदीप को पांच और फिल्मों के गीत लिखने का अवसर मिला, और ये पांच फिल्में थी पुनर्मिलन, झूला, नया संसार, अनजान और किस्मत। आइए सुनते हैं फिल्म किस्मत से ये गीत मुकेश साहब की आवाज़ में।

श्रोताओं, कवि प्रदीप को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। हकीकत फिल्म में लिखे हुए गीत इन्होंने ही लिखे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का गाया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, इन्होंने ही लिखा था। इस गीत को आज भी जब लोग सुनते हैं तो मन ही मन भावुक हो जाते हैं। आइए सुनवाते हैं आपको हकीकत फिल्म से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत।

श्रोताओं कवि प्रदीप ने अपने जीवन काल में 1700 के आसपास गीत लिखे थे, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने सारे गीत लिखना किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती है। श्रोताओं, इन्होंने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक दिल छू लेने वाले गीत लिखे थे। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नास्तिक से प्रदीप की आवाज़ में, और ये गीत आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि उस समय था। आइए सुनते हैं इनका लिखा हुआ ये गीत।

श्रोताओं, 60 के दशक में कवि प्रदीप की लोकप्रियता हालांकि पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इनकी कुछ फिल्मों में लिखे इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। फिल्म पैगाम में लिखा इनके गीत बहुत अच्छे खासे लोकप्रिय हुए थे। आइए सुनते हैं फिल्म पैगाम से इनका लिखा हुआ ये गीत आशा भोसले की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, कवि प्रदीप ने कुछ धार्मिक फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे, जिसमें जय संतोषी माँ फिल्म ने अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की थी। और इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म के गीतों ने भी बहुत धूम मचाई थी। 1975 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। आइए सुनते हैं जय संतोषी माँ फिल्म से कवि प्रदीप और साथियों की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत।

0: श्रोताओं, कवि प्रदीप को 1997 में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष की आयु में विले पार्ले स्थित उनके घर में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी और दो बेटियों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की थी। हालांकि कवि प्रदीप आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। चलते चलते आइए सुनते हैं उनका लिखा हुआ ये गीत फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस से।
1: दुश्मनों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज दो दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह की 12वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस की ओर से उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री अलेक्सी गुरुजदेव ने की। बैठक में दोनों देशों ने उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, अंतरिक्ष, रेलवे, खनिज खनन, उर्वरक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रूस के SJ-100 विमान के निर्माण और विमान इंजन तकनीक में सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत की। बैठक में लिथियम, दुर्लभ खनिज, एल्युमिनियम, खनन उपकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारतीय

0: Over you know, the alleged irregularities in the JPSC, JSSC, and other competitive examinations in Jharkhand continue to dominate both the assembly and the streets yesterday. On the second day of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, the opposition raised the issue and demanded cancellation of the examinations and a CBI inquiry under the supervision of the court. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है पुरानी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि आपको पुराने दौर के एक से बढ़कर एक अच्छे गीत सुनाएं और जो कि आपके दिल को भी भाएं और आपके दिल को सुकून भी दें। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं खुर्शीद की आवाज़ में।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म भक्त सूरदास से खुर्शीद की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म किस्मत से अरुण कुमार और अमीर बाई की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के अंडमान और निकोबार दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सहकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाज़ों नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया है। इस समूह की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण से नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुख्य सचिव समय समय पर नदी सफाई और सुधार कार्यों की समीक्षा करेंगे और सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का निर्देश दिया जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्दी कार्रवाई हो सके। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। ये प्रतियोगिता 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित

0: उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन 16 और 17 सितंबर को न्यू टाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बंगाली भाषा में विज्ञान को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य से बाहर गए प्रतिभाशाली छात्रों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में योगदान दे सकें। भारत और श्रीलंका ने वित्त क्षेत्र में सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया, जबकि श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुराग करुण थिलाके ने किया। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश में ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha has passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said, India withdrew most favored nation, MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this thing during media briefing in New Delhi yesterday, adding that Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said, India continues to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
1: Question about the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region, they are in constant contact with the Ministry of Shipping so that as and when any support is required to be provided to our seafarers or Indian flagged ships, they can do that. In fact, they have been running 24/7 helplines so that any person who needs support.
2: Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduates and postgraduate students and 587 PhD scholars. In a social media post, the Prime Minister said, IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institution. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Director IIT Delhi Rangan Banerjee said that Mr. Modi will present the institute's most prestigious awards, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal, and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Mr. Banerjee said that the Prime Minister will remotely inaugurate Parampragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at IIT Delhi's Sonipat campus. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing, and interdisciplinary research. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC, JSSC, and other competitive examinations in Jharkhand continued to dominate both the assembly and the streets yesterday. On the second day of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, the opposition raised the issue and demanded cancellation of the examinations and a CBI inquiry under the supervision of the court. Parliamentary Affairs Minister said the matter had already been discussed in the Business Advisory Committee and that the government was prepared to respond to all issues raised in the House. And that is the end of this news bulletin.

AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गज़ल गीत।

गज़ल गीत के इस प्रोग्राम में मैं तरन्नुम जहां आप सभी का इस्तकबाल करती हूं, उन सुनहरी यादों को जीने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं।

हेलो भैया, करे ऐसे आना चाहिए, तो बंद कर रहे थे। मक्ता पेश कर रहा हूं, ये एक ऐसे शायर हैं जो वैसे अरब हैं, कुवैती हैं, लेकिन उनकी तालीम अलीगढ़ में हुई है। उर्दू शायरी का काफी शौक है उनको। खालिद उनका तखल्लुस है। खालिद ये हकीकत है,

घर से हम निकले थे मस्जिद की तरफ जाने को।

प्यास के छुरी चलती है, जीवा करने मुझे आया।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गजल गीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार थे सुधा रघुनाथन, नुकला चिन्ना सत्यनारायण और नेदू नूरी कृष्णमूर्ति।

AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे S. गोपाल कृष्णन का बांसुरी वादन राग आभेरी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आपने सुना एस गोपाल कृष्णन का बांसुरी वादन राग आभेरी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026। सुबह के 4:53:44 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय है, सुबह 6:10। इसके बाद आप सुनेंगे एक चिंतन और रामचरित मानस की अगली कड़ी, कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक के गाए कुछ भजन। गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी सुबह 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। 9:15 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरती आकाश मिट्टी दी महक, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। इसके बाद हम आपके लिए प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह 10:10 पर। सबरस, इस कार्यक्रम का समय है 11:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी का समय है 11:30। 12:10 पर आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन, कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोपहर 1:10 पर आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको फिल्म हकीकत के कुछ गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम एक ही कलाकार 2:30 पर आप सुन सकेंगे और आज के कलाकार हैं असित सेन, दिनेश ठाकुर, ब्रज माधुरी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:00। 3:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे नाटक पार्वती गिरी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का समय रहेगा 4:20 पर। कार्यक्रम परिक्रमा का समय रहेगा 4:30 पर। 5:10 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। इसके बाद 5:30 पर दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की प्रस्तुति रहेगी। पर सुनिए कार्यक्रम चहल पहल और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार। के अलावा भी कई कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अवयोग करें, इसमें आज जानकारी लीजिए अर्ध मत्स्येंद्रासन की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने कहा कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में

0: शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच राज्य सरकार और 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल देर शाम औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई और कहा कि जब तक लिखित में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर मिजोरम में छात्र संगठन मिजो ज़िरलाई पॉल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि वो सोमवार को मिजोरम लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देगा। उसकी मांग है कि आयोग में जरूरी सुधार किए जाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बन सके। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका के सेंट लुई में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने 23.5 अंक हासिल कर ये जीत एक राउंड पहले ही पक्की कर ली। उज्बेकिस्तान के जोवकिर सिंदराव दूसरे और अमेरिका के वेस्ली सो तीसरे स्थान पर रहे। और कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर एक खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said, India withdrew most favored nation MFN status to Pakistan and hiked customs duties on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the pulver

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें,

0: दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ: इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येन्द्र आसन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: कार्यक्रम आओ योग करें में अभी आप जानकारी ले रहे थे योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राधिका मोहन मोइत्रा का सरोद वादन, राग हमीरी, बिलावल।